0: को सुप्रभात। आज शनिवार 20 जून 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5 बज रहे हैं।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: with Radio Musty.
1: A very good evening, a very good morning. सवेरे स्लिप ऑफ टोंग हो गया. गुड मॉर्निंग सभी को. सुप्रभात. सैटरडे की ये खूबसूरत सुबह. 20 आज तारीख है 20. जी हाँ, 20th June 2026. और आप सुन रहे हैं चिलैक्स ऑन रेडियो मस्ती. आज सुबह मौसम ने भी अपना एक अलग ही मूड बना रखा है. ठंडी सी हवा चल रही है, हवा में एक ताजगी सी है और लगता है कि विंटर अब ऑफिशियली दरवाजे पर दस्तक देने लगा है. और ऐसे मौसम में अगर साथ हो सदाबहार गानों का तो बात ही कुछ और हो जाती है. आज के सफर की शुरुआत हुई है इस गाने के साथ जो हमने अभी अभी चलाया. जानी छमर शोला बदन गुमनाम मूवी से है ये गाना, रफी साहब और शारदा जी की आवाज़ में. तो चाहे आप गर्म चाय के साथ सुबह का मज़ा ले रहे हो या वीकेंड के रिलैक्स्ड शुरुआत कर रहे हो, अगले कुछ घंटों तक हम और आप मिलकर पुराने सुनहरे दौर के गीतों का मज़े उठाएंगे. जी हाँ, दिस फर्स्ट आवर वी गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स यहाँ पर सदाबहार गानों का साथ हम आप लोगों के नाम लेकर आए हैं. एंड आई होप आपका ये सैटरडे बहुत ही अच्छा जाए. सैटरडे का दिन है, वीकेंड टाइम है, इसे अच्छा ज़रूर बनाएंगे, क्यों नहीं. और शुरुआत ही हम करेंगे इन खूबसूरत गानों के साथ. सो यस, दैट्स मी, आपके लिए, आपके साथ. और सभी को विश करती हूँ जो आप ग्रेट ग्रेट ग्रेट सैटरडे. और हमेशा आप मुस्कुराते रहिए. एंड यहाँ पर अगर हम आपकी मुस्कुराहट का कारण बन जाए खूबसूरत गानों के साथ तो बात ही अलग हो जाएगी.
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।
1: Chillax with Radio Masti.
2: जी हाँ, कल हम सब मनाएंगे वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस 21 जून को। लेकिन रेडियो मस्ती पर सेलिब्रेशंस का इंतजार थोड़ी न किया जाता है। जब बात म्यूजिक की हो तो खुशियाँ एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। म्यूजिक एक ऐसी जबान है जो हर इंसान समझता है, ना उसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है ना किसी डिक्शनरी की। खुशी हो, गम हो, मोहब्बत हो या उम्मीद, हर एहसास के लिए एक गाना तो ज़रूर मिल ही जाता है। सोचिए जिंदगी कितनी खामोश लगती अगर उसमें म्यूजिक ना होता। रोड ट्रिप्स थोड़ी अधूरी लगती, शादियां इतने रंगीन ना होती और कई यादें शायद इतनी खूबसूरत भी ना लगती। कल म्यूजिक डे है, लेकिन आज से ही हम सलाम करते हैं उन सुरों को, उन कलाकारों को और उन गीतों को जो हर रोज हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देते हैं। रेडियो मस्ती पर तो हर म्यूजिक डे होता ही है, लेकिन कल इसका जश्न थोड़ा और खास होगा। कुछ स्पेशल मेहमान होंगे जो हम आपको जरूर बताएंगे, कुछ अपडेट्स शेयर करते रहेंगे थोड़ी देर में। बट लेट मी टेल यू दैट म्यूजिक यहाँ पर एज यूजुअल जबरदस्त होता ही है, लेकिन रेडियो मस्ती पर मस्ती के साथ हम म्यूजिक भी सेलिब्रेट हमेशा हम करते हैं। एज यू कैन सी, जो लोग फेसबुक पर है आपने शायद देख ही लिया होगा दैट यहाँ पर सेलिब्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड धमाकेदार सेलिब्रेशंस हो रही है। सो हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारी इस खुशियों में, इन खुशियों में शामिल हो, और आपके बिना तो म्यूज़िक अधूरा ही रहेगा। आप हो तो हम हैं, हमारे लिसनर्स के कारण ही तो हम यहाँ पर जादू क्रिएट कर पाते हैं। सो यस, लेट्स हेड टू द नेक्स्ट ट्रैक। दिस आवर ओनली सुना बाहर गाँधी, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सारे बाहर गाने, नॉट ओनली रोमांटिक बट हर रॉकी गाने हैं यहाँ पर। सो आपके नाम हम चलाते रहेंगे और साथ आप भी ऐसे ही निभाते रहिए। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर, थोड़ी देर में लेकर आते हैं आपके मैसेजेस।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: Chillax with Radio Musty. चलिए जी, आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं. क्या है कि बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर है, तो हम इनके ओर जरूर बढ़ेंगे. वी हैव व्हाट्सएप पर, पहले हम देखते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीबक से बहुत सारे लोग, और ऑल फॉर ऑल सीनियर सिटीजन और सभी दोस्तों के नाम जो मीबक से है, आपके नाम हम ज़रूर गाना डेडिकेट करेंगे. वैसे मैसेज आया है फ्रॉम आनी. आनी, आपके नाम भी एक ब्यूटीफुल ट्रैक नेक्स्ट जाएगा. जयशन जी, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आपको. आपके नाम और आपके दोस्तों के नाम जो अभी अस्पताल में काम कर रहे हैं, तीन बार जयबन, उमरन, अंगुठिया, आकाश, अरविंद, रामदेव और पीविंद, सभी को विश करते हैं टू हैव अ वंडरफुल डे. आपको भी हम यही विश करते हैं. हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी. पूनम है बीटों से और एंजॉय कर रही है रेडियो मस्ती की बहुत ही खूबसूरत गाने इन द कोल्ड वेदर. वैसे बहुत ही ठंड है, स्पेशली सवेरे सवेरे जब आप उठते हो ना तो ठंड महसूस हो ही जाती है. एंड आप अपने लिए और अपने हबी जय सिंह के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना डेडिकेट करना चाहते हैं. क्या है कि आज 16th वेडिंग एनिवर्सरी भी है, सो शादी की सालगिरह पर ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको. आपका दिन बहुत अच्छा जाए, यही हम विश करते हैं. एंड कुछ मॉर्निंग मैसेजेस यहाँ पर. गुड मॉर्निंग सभी को जो हमने मॉर्निंग मैसेजेस यहाँ पर भेजे हैं. वेल, कईयों ने नाम नहीं लिखे, कोई बात नहीं, आप तक हमारा जो संदेश है पहुँच गया है. विश यू अ वंडरफुल सैटरडे, शनिवार बढ़िया जाएगा. अगर हम ऐसा ही मानते हैं तो ऐसा ही होगा. क्या कि मैनिफेस्टेशन का रोल अप्लाई हो ही जाता है. अब्दुल और सारा बानो जी के नाम नेक्स्ट ट्रैक. एंड यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बर्थडे मैसेज है. हैप्पी बर्थडे टू आवर लवली स्वीट कोच मिस रेशमा, जो हमें बहुत हेल्प करती है इन गुड हेल्थ. एंड यस, ये मैसेज आया है फ्रॉम द लेडीज ऑफ लाहौजा मुफेतिल एंड लाफलोगा ग्रुप. बहुत सारे गुड विशेज फ्रॉम प्रीति एंड विनीता. That's a lovely message. यहाँ पर आपके सभी दोस्तों के नाम कोच के नाम नेक्स्ट गाना जाता है. एंड बॉम्बे से धनेश्वर जी, आपकी प्यारी पत्नी है सुनीता, संजय के साथ में निशा रेखा और दावे दोस्त परिवार के नाम नेक्स्ट गाना जाता है. वेल, जो नेक्स्ट हम चलाने वाले हैं बहुत ही खास गाना है और हमें पता है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा. हैप्पी बर्थडे टू मनीष कुबलाल, अव्या जो वापस से है. जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएँ आपको. एंड यहाँ पर ऑल्सो एक मैसेज वी हैव श्रद्धा नागर से आशनी रेखा सुरेखा और हमारे परिवार और हमारे लिए भी नेक्स्ट गाना. थैंक यू सो मच ज्योति जी, दैट्स अ लवली मैसेज. सवेरे सवेरे आपने हमारा दिन भी बना दिया है. आई होप कि नेक्स्ट ट्रैक के साथ आपका दिन भी बन जाए. जीना चांगाडू का जन्मदिन है आज. जीना का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे आपको. जीना, लगता है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो जन्मदिन मना रहे हैं. हैप्पी हैप्पी बर्थडे सभी को जो आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. वेल, बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम सचिन, क्रिश, आनंद, चांद एंड आपके पूरे परिवार, सभापति परिवार की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे, और आरएम टू रेडियो मस्ती परिवार की ओर से भी आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे.
1: Chillax, chillax, chillax with Radio Musty. Your number one.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: घड़ी मिलाते चलिए 5:46 और आज हम आपको बताएंगे कि आज आपका दिन कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि।
1: आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय या अनुकूल है। परिवार के साथ मधुर समय का भी बिता सकते हैं और अपनी बात शांति से रखिए, फायदा होगा। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज धैर्य और समझदारी आपकी ताकत बनेगी। पुरानी काम पूरे होने के योग है। घर के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। दिन को हल्का और खुशनुमा बनाए रखें। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज मन में नए विचार आ सकते हैं। किसी दोस्त से बहुत ही अच्छी सलाह आपको मिल सकती है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने का दिन है। अपने समय का सही उपयोग करें। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज घर और परिवार पर अधिक ध्यान रहेगा। अपनों का साथ मन को सुकून देगा। किसी पुरानी बात का हल मिल सकता है और दिन सकारात्मक सोच के साथ बिताए। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। काम में प्रगति के संकेत है। मुस्कुराहट के साथ हर काम आसान लगेगा। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज व्यवस्था और योजना पर ध्यान देने का दिन है। अधूरे काम पूरे करने का अच्छा समय है। किसी अपने से मिलकर मन प्रसन्न होगा। दिन शांत और सुखद रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 7।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। परिवार और काम दोनों में अच्छा समय आप दे पाएंगे। किसी से मधुर बातचीत दिन को और भी सुंदर बना सकती है। लकी नंबर है आज आपका 8।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे। मेहनत का फल धीरे धीरे मिलता नजर आएगा। मन में नई ऊर्जा महसूस होगी और दिन को भरपूर उत्साह के साथ है जी। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज का दिन नए अनुभव लेकर आ सकता है। किसी यात्रा या योजना पर विचार हो सकता है। परिवार का सहयोग बना रहेगा। खुले मन से दिन का स्वागत आप करें। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज मेहनत और लगन से काम करने पर सफलता की योग है। किसी पुरानी चिंता का समाधान मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दिन सुखद रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 12।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज रचनात्मक सोच आपको अलग पहचान दे सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। किसी नए विचार पर काम करने की प्रेरणा आपको मिलेगी। लकी नंबर है आज आपका 11।
2: मीन राशि।
1: आज मन शांत और प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर आपको मिलेगा। किसी की मदद करने से संतोष मिलेगा और दिन में कई छोटी खुशियां मिल सकती है। लकी नंबर है आज आपका 10। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। आज शनिवार का दिन है, वीकेंड टाइम, दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to Radio Masti.
1: और इसी खूबसूरत गाने के साथ आप सुन पाएंगे समाचार, संक्षिप्त समाचार, स्टे राइट कनेक्टेड। और इसके बाद हम लेकर आएंगे और भी खूबसूरत गाने, कुछ बदलाव होंगे बट गाने आज यूजुअल बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. घड़ी में लाते चलिए सुबह की ठीक है 6 बज रही है. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आगे इसे हम टीना के साथ सुनते हैं. नमस्कार आपको टीना.
6: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. बजट 2026-2027 के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन BRP के पात्र होंगे और उसे प्राप्त कर रहे होंगे, वे नए स्टेट एज पेंशन SAP के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे. SAP का भुगतान सरकार द्वारा घोषित

0: मीन्स टेस्ट यानी आय परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। एसएपी की राशि एक तय मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें बाद में मीन्स टेस्ट लागू किया जाएगा। और सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान बीओपी लाभार्थियों की पेंशन 1 जनवरी 2027 से एसएपी लागू होने पर अपने आप बंद नहीं होगी। Budget 2026-2027 के बाद Confédération des travailleurs du secteur privé, CTSP, ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। CTSP का कहना है कि ये बजट आम लोगों की वास्तविक जरूरतों से दूर है। यूनियन ने खास तौर पर पेंशन रिफॉर्म और मीन्स टेस्टिंग पर आपत्ति जताई है। इसी क्रम में बजट 2026-2027 के बाद सरकार के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषित फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अलियाना वोमारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। डिप्टी प्रधानमंत्री और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के अनुसार बजट ने कई प्राथमिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जिनमें डोमेस्टिक अब्यूज बिल शामिल है। साथ ही अडॉप्शन से जुड़े नए प्रावधान भी जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने रखे जाएंगे। और ऊर्जा मंत्री ने भी ऊर्जा ने कहा कि ऊर्जा भी इस बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है। घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, हर परिवार को अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट का मुख्य ध्यान समावेशन पर है। घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्कूल को और मजबूत करना शामिल है। साथ ही स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है। इस बात का ऐलान शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने किया। और आसिम के अध्यक्ष जयंत चेलम ने कहा कि कुछ कदमों से उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सकता है, हालांकि उनका मानना है कि अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। विदेश में शुक्रवार 19 जून को ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करते हुए शांति समझौते पर आखिरी मुहर लग गई। इसी के साथ इसराइल और हिजबुल्ला को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। प्राप्त खबरों के अनुसार एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी ने बताया कि शाम 4 बजे इसराइल और हिजबुल्ला भी युद्ध विराम के लिए सहमत हो गई है। और अंत में मौसम का हाल। मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे सक्रिय बादलों के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर बाद के समय देश के पूर्वी इलाकों और सेंट्रल बातों पर बादल घिरे रहेंगे। रह रहकर वर्षा भी होगी और अन्य जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे। और रात के समय भी देश के दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा हो सकती है और कुछ जगहों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी और जो जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में। दो समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी जाती है, क्योंकि लहरें और भी ऊंची हो सकती है। सूर्योदय आज 6:44 पर और सूर्यास्त शाम के 5:38 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti।
0: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. RM2, Radio Masti.
3: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम, ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। Happy Music Day from MBC Radio.

0: Chillax with Radio Musty.
1: रातन तो नहीं बल्कि दिन शुरू हो गया है. वेलकम बैक, सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर. वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. सैटरडे की इस ठंडी और सुकून भरी सुबह में आप सुन रहे हैं चिलैक्स का सेकंड आवर ऑन रेडियो मस्ती. अब हम पहुंच गए हैं शो के सेकंड आवर में और इस घंटे का रंग होगा थोड़ा और नरम, थोड़ा और दिल के करीब, और ऐसे गाने जो बस सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बने हैं. और क्योंकि कल है वर्ल्ड म्यूजिक डे, रेडियो मस्ती पर जश्न अभी से शुरू हो चुका है. आखिर म्यूजिक का इंतजार क्यों किया जाए, ये तो हर पल हमारे साथ ही रहता है. तो इस घंटे में तैयार हो जाए कुछ सुकून भरे, दिल को छूट जाने वाले नगमों के लिए. चाहे कि चुस्की हो ठंडी हवा, सुबह की ठंडी हवा हो, या वीकेंड की आराम भरी शुरुआत, म्यूजिक सबको और खूबसूरत बना ही देता है. एंड आई होप यू हैविंग अ गुड टाइम. हमने रॉ म्यूजिक रॉ यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है. कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा परिवर्तन हम लेकर आते हैं. एंड होप यू लव द ट्रैक्स ऑफ दिस आवर, दैट्स अ ब्यूटीफुल जो हम चलाने वाले हैं नेक्स्ट. वेल, हमने सोचा कि क्यों ना कुछ सॉफ्ट सूदिंग गाने चला दें सवेरे सवेरे सैटरडे मॉर्निंग. क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग ऐसे एनर्जेटिक मूड में तो आप उठते नहीं है, क्योंकि बस आराम है और खुश है आप, चेहरे पर एक मुस्कान है कि आज ऑफिस नहीं. लेकिन कई लोग जाते हैं ना काम पर, उनको हम वो कुछ कहते हैं, स्पेशली लोग सब्जी मंडी काम करते हैं, वो तो मुंह अंधेरे ही उठ जाते हैं. और ऐसी ठंड के मौसम में आई नो बहुत ही कठिन सा लगता है, लेकिन पोको हार्श टू यू. हमारे गाने आपके नाम हम जरूर डेडिकेट करके जाएंगे. एंड 7 बजे को तो हम चले जाएंगे, बट वी हैव सम टाइम लेफ्ट. यहाँ पर शेष है लगभग 15 मिनट, सो वी गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके नाम चलाते रहेंगे. विश यू अ वंडरफुल सैटरडे मॉर्निंग. शनिवार आपके लिए बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही खूबसूरत रहे, और आप हमारे साथ ऐसे ही हमेशा कनेक्टेड रही. वी आर सेलिब्रेटिंग म्यूजिक डे ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती. कल है म्यूजिक डे, लेकिन जश्न तो यहाँ पर ऑलरेडी से स्टार्ट हो ही गई है. सो लेट्स सेलिब्रेट म्यूजिक डे टुगेदर.
2: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ. संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात. हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो.
0: Chillax with Radio Musty,
3: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: कल 21 जून को रेडियो मस्ती पर होगा म्यूजिक डे का खास जश्न और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत कुछ ही खास मेहमान। दिन भर हमारे स्टूडियो में होंगे टैलेंटेड गेस्ट आर्टिस्ट जो ना सिर्फ अपने संगीत का सफर हमसे बांटेंगे बल्कि लाइव परफॉर्मेंसेस और दिलचस्प बातचीत के साथ म्यूजिक डे को और भी यादगार बना देंगे। कल तो ज़रूर जुड़े रहिए रेडियो मस्ती के साथ क्योंकि शुरू का ये जश्न होगा और भी खास सिर्फ रेडियो मस्ती पर। वेल जश्न तो ऑलरेडी शुरू हो ही गया है और हम हमेशा लेकर आते हैं आपके लिए गुड म्यूजिक, बट दिस वीकेंड थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आई एम श्योर कि आप जिज्ञासु है और जानना चाहते हैं कि क्या होगा बट बहुत ही कुछ मनोरंजन होने वाला है एंड आपको बहुत पसंद आएगा। सो दिस वीकेंड इज गोना बी अ गुड वन, म्यूजिक के नाम और रेडियो के नाम। तो चलिए लेट्स हेड टू द नेक्स्ट गाना और इसी के बाद आप सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन। अगर टाइम रहेगा तो आप हमें फिर से सुन पाएंगे वरना तो हम चले जाएंगे और इसके बाद म्यूजिक का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। सो जाने से पहले हम बाय भी कहते हैं बट वी नेवर नो, हम लौट के आ भी सकते हैं। सो टेक केयर, हैव अ वंडरफुल सैटरडे।

0: 2026-2027 बजट में सरकार ने आर्थिक सुधार और सामाजिक मदद के बीच संतुलन रखने की बात की है, साथ ही गरीब और कमजोर लोगों की मदद पर जोर दिया गया है। बीओपी की जगह एसएपी लागू होगी और जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं वे आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन इसमें आय की जांच यानी मींस टेस्ट लागू होगी। सिटी एसपी ने बजट की आलोचना की है, जबकि आसिम ने कुछ कदमों का स्वागत किया है लेकिन और अध्ययन की बात कही है। विदेश में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हुआ है और इसराइल और हिजबुल्ला के बीच भी युद्ध विराम पर सहमति बनी है। और अब समाचार विस्तार से। 2026-2027 बजट की मूल भावना आर्थिक दक्षता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है। सरकार फिस्कल मैनेजमेंट के जरिए देश की सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत और स्थिर करने का प्रयास कर रही है। साथ ही ये बजट कमजोर वर्गों की सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर देता है। सरकार का उद्देश्य जिम्मेदारी, एकजुटता और सतत विकास के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और प्रगति को आगे बढ़ाना है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: मैडम स्पीकर, यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। दिस डज नॉट कम फ्रॉम मी मैडम स्पीकर, बट फ्रॉम क्लाइव लुईस, ए फेमस ब्रिटिश ऑथर एंड लिटरेरी स्कॉलर।
2: पीछे जाकर शुरुआत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जहां पर हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और एंडिंग यानी कि समापन को बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इन्हीं शब्दों का हवाला देकर शुरुआत की। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने कहा कि मूलभूत और कठिन चयन किए गए हैं देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और समाज तथा भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चुनौतीपूर्ण मार्ग चुना गया। इसके परिणाम स्वरूप 2025 से प्रत्यक्ष प्रगति देखी गई। बेरोजगारी की दर 6% से 5.7% तक घट गई। इन्फ्लेशन जो 2022 से 2024 की अवधि के लिए सालाना 7% थी और जो उच्चतम 11.3% रही, 3.7% तक घट गई। हमारी मूल विदेशी मुद्रा कोष 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, जो कि कई दशकों में सबसे ऊंचा है। जीडीपी में 3.2% का विस्तार देखा गया।
1: जीडीपी एक्सपांडेड बाय 3.2% विद मोस्ट मेजर सेक्टर्स रिकॉर्डिंग पॉजिटिव ग्रोथ एंड पर कैपिटा जीडीपी रोज बाय 3.3%। फर्दरमोर मैडम स्पीकर, व्हेन वी टुक ऑफिस, democracy as well as freedom of expression has been restored. Municipal elections have resumed after 10 years of tyranny.
2: प्रधानमंत्री ने कहा, जब से शासन संभाला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। पूर्ववर्ती सरकार से विरासत में प्राप्त कैटास्ट्रोफिक यानी कि बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आर्थिक स्थिति के बावजूद सुधार का प्रयास जारी है। ऊपर से बाहरी अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसा कि युद्ध और क्लाइमेट चेंज की भी चुनौती है जिसका सामना किया जा रहा है। सरकार अपने लक्ष्यों को भेदने के लिए 4 सिद्धांतों पर बल दे रही है: जिम्मेदारी, एकजुटता, आर्थिक दक्षता और सामाजिक न्याय। मॉरिशस को भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए। सरकार का सिद्धांत सुप्रशासन और उत्तरदायित्व पर टिका हुआ है।
1: मॉरिशस हैज रिगेन्ड इट्स राइटफुल प्लेस इन द इंटरनेशनल अरेना। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज वंस अगेन एट द कोर ऑफ आवर नेशनल स्ट्रेटजी। द इंडिपेंडेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशंस like the office of the DPP, the Bank of Mauritius and Statistics Mauritius have been restored.
0: बजट 2026-2027 में पेरेंटल लीव में बड़ा विस्तार किया गया है। मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है, जिसमें पहले 6 महीने फुल सैलरी के साथ और अगले 6 महीने ऑप्शनल होकर हाफ सैलरी पर दिए जाएंगे। वहीं पैटरनिटी लीव को 4 हफ्तों से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य परिवारों को अधिक सहयोग देना और काम तथा निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करना है। ये रिपोर्ट पेश है।
3: 263,200 पेंशन प्राप्त

लोगों का 90% हिस्सा अभी भी स्टेज एज पेंशन से लाभ उठा पाएगा। इनमें 75% लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा। कैरियर्स अलाउंस को 3,500 रुपये से 4,250 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। पंजीकृत पूर्व प्राथमिक स्कूलों में विकलांगता की अवस्था वाले बच्चों के लिए टैक्सी शुल्क का

0: देगी। स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर्स के बजट को 562 मिलियन से 619 मिलियन रुपए तक बढ़ाया गया है। अस्पतालों में डिस्लेक्सिया और ऐसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए 15 साइकोलॉजिस्ट की भर्ती की जाएगी। 90 साल से ज्यादा उम्र वालों को घर पर डॉक्टरों से कंसल्टेशन का लाभ दिया जाता था, अब इस उम्र को 85 साल का किया गया है। मैटरनिटी लीव 12 महीनों तक बढ़ाया जा रहा है। 6 महीने तक पूरा पगार यानी फुल पेड लीव और बाकी 6 महीने हाफ पे होगा। पैटर्निटी लीव 4 से 6 हफ्तों तक बढ़ाया जा रहा है। वोकेशनल स्ट्रीम के नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 अतिरिक्त स्कॉलरशिप्स जोड़े जा रहे हैं और यदि कोई पब्लिक हॉलिडे किसी रविवार को पड़ रहा हो तो उसके अगले दिन सोमवार का दिन पब्लिक हॉलिडे करार दिया जाएगा।
1: शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट का मुख्य ध्यान समावेशन पर है। घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन नीड स्कूल को और मजबूत करना शामिल है। साथ ही स्कूलों में उत्पीड़न यानी बुलिंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: शिक्षा को और ज्यादा कारगर बनाने और सबका एक्सेस बढ़ाने के लिए क्षेत्र के बजट को 2.6 बिलियन रुपए से बढ़ाया जा रहा है। एक भी बच्चा पीछे ना रहे इसके लिए किताबों और शैक्षिक सामानों में 133 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। 3 नए MITD सेंटर्स को कायम किया जाएगा ताकि ग्रेड 7 से ग्रेड 9 के बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सके। इसके अलावा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों के लिए एक बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रोग्राम की स्थापना की जाएगी। प्रधान एवं वित्त मंत्री ने ये भी ऐलान किया कि सैन स्कूलों के लिए एक खास इंटरवेंशन इकाई को कायम किया जाएगा। सरकार ग्रेड 10 और ग्रेड 11 के बच्चों के वास्ते एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत करने का मकसद रखती है और स्कूलों में बुलिंग के मसले से निपटने के लिए सरकार एंटी बुलिंग अभियानों में 10 मिलियन रुपए निवेश करेगी। उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सतह वाली तालीम का दर्जा देने के लिए एक नए ढांचे को विकसित किया जाएगा। बजट 2026-2027 में एक स्टडी इमर्सिव पोर्टल को लॉन्च करने का भी प्रावधान है जिसके जरिए मकामी और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिले की प्रक्रिया कर सकें। पूर्व प्राथमिक से तृतीय शिक्षा संस्थाओं के मूल ढांचों को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा 824 मिलियन रुपए निवेश करने का प्रावधान है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का भविष्य एक स्वस्थ जनता पर निर्भर करता है। इसके लिए सरकार स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश बढ़ाएगी ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। साथ ही सेक्टर में कार्य शर्तें बेहतर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी।
2: हर साल टैक्स से प्राप्त बिलियन रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किए जाते हैं। मरीजों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2,220 मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इनमें नर्सों की भर्ती भी शामिल होगी। 40 मिलियन रुपए निवेश करके सरकार विजिटिंग डॉक्टर स्कीम को लागू करने का मकसद रखती है। अब से हॉस्पिटल मैनेजर्स अस्पतालों की कार्यकुशलता का आश्वासन रखेंगे। मधुमेह की रोकथाम और इलाज के लिए बजट 2026-2027 में 40 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मूल ढांचों को आधुनिक बनाने के वास्ते 1.5 बिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। नए SSRN अस्पताल का निर्माण, आयुष केंद्र, एक आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, ENT अस्पताल में एक डायलिसिस केंद्र आदि का निर्माण शामिल है। मोटापे से निपटने के लिए एक कार्डियो मेटाबोलिक केयर एंड रिसर्च केंद्र की तामीर भी की जाएगी।
1: देश के छोटे खेतीहरों को खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आने वाले 3 सालों के लिए 100 मिलियन रुपये सालाना तौर पर उपलब्ध कराएगी। साथ ही कृषि सेक्टर के विकास के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
3: 2030 तक 2,50,000 टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीनी उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे और मध्यम किसानों की 500 हेक्टेयर भूमि के पुनर्वास के लिए अगले 3 वर्षों में सालाना 100 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे चाय उत्पादकों को 25,000 रुपए प्रति औपों की अधिकतम सीमा तक पुनर्रोपण लागत का 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वर्ष 2029 तक चाय के उत्पादन में 50% की वृद्धि होनी चाहिए। हमारे जंगलों के लिए जलवायु लचीलापन बनाते हुए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक फॉरेस्ट बिल पेश किया जाएगा। एक कृषि वानिकी परियोजना लागू की जाएगी। ये शोधकर्ताओं और किसानों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। साथ ही स्थानीय बाजार के लिए सुरक्षित

0: भोजन का उत्पादन करेगा और हमारी खाद्य सुरक्षा नीति को और मजबूत करेगा। हमारे कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए सरकार पशुधन उत्पादन बढ़ाने में निवेश कर रही है, जैसे कि फार्म भवनों, बकरी प्रजनन फार्मों के उन्नयन के लिए 45 मिलियन रुपए और प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मवेशी और भेड़ प्रजनन फार्मों को स्केल अप किया जाएगा। प्रजनकों द्वारा पशु आहार की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए 75 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। पशुओं की खरीद, उपकरणों और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए सहायता हेतु प्रोत्साहन के लिए पशुधन विकास योजना के तहत 27 मिलियन रुपए दिए जाएंगे और एक आधुनिक अत्याधुनिक पशु चिकित्सा अस्पताल के निर्माण के लिए 50 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे।
1: बजट 2026-2027 के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीओपी के पात्र होंगे और उसे प्राप्त कर रहे होंगे, वे नए स्टेट एज पेंशन एसएपी के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। एसएपी का भुगतान सरकार द्वारा घोषित मींस टेस्ट यानी आय परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। एसएपी की राशि एक तय मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें बाद में मींस टेस्ट लागू किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान बीओपी लाभार्थियों की पेंशन 1 जनवरी 2027 से एसएपी लागू होने पर अपने आप बंद नहीं होगी। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: पेंशन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि पेंशन प्राप्त करने वाले 2,63,200 लोगों में से 90% लोगों को स्टेट एज पेंशन एसएपी से लाभ होगा, जिनमें 75% लोगों को पूरा पेंशन प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री ने कई कदमों का ऐलान किया ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर रूप से सुरक्षित रखा जा सके। बेसिक रिटायरमेंट पेंशन को स्टेट एज पेंशन एसएपी का नाम दिया जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से ये 60 वर्ष की उम्र के सभी लोगों के लिए होगा। पेंशन की रकम को आय के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह जिन लोगों को मासिक तौर पर 0 से 14,000 रुपये प्राप्त होते हैं उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा। जिन लोगों को 0 से 50,000 रुपये मिलते हैं मासिक रूप से उन्हें आंशिक रूप से पेंशन प्राप्त होगा। राज्यसभा के सदस्यों को 65 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त होगा, न कि 2 मैंडेट के बाद जिस तरह वर्तमान में है। 1 जुलाई 2026 से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पेंशन पर टैक्स लागू होगा।
1: Budget 2026-2027 के बाद Confédération des travailleurs du secteur privé, CTSP, ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। CTSP का कहना है कि ये बजट आम लोगों की वास्तविक जरूरतों से दूर है। यूनियन ने खास तौर पर पेंशन रिफॉर्म और मींस टेस्टिंग पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति साबित करनी पड़ेगी, जो उनके अनुसार सही नहीं है। CTSP ने इसके बजाय यूनिवर्सल पेंशन को जारी रखने और उच्च आय वालों पर थोड़ा अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। सीटीएसपी के प्रवक्ता रियाज चतु को सुनते हैं।
3: CTSP qui propose, ça veut dire, ben, du monde, qui se prévenit faux, ils ont pas mérite bien sa pension-là. Mais, sous garde de pension universelle, et ça, du monde qui ne bénéficie pension-là, ou augmente son income tax par 0.5%, tout subside qu'il n'y a pas de pension, il gagne le diril, la farine, le tout, il rend nous lit, à travers son income tax. Mais là, je ne préférais, amène un système, qui risquait faire mal à nos sociétés. Finalement, fin dire qu'il pension pérétoune 60 ans, bien qu'il faisait des tailles ou là, mais de l'autre côté, il a annoncé qu'il, un député, faudrait que t'arrives à 65 ans pour que toujours de pension. Donc là, le mandat va venir nous trouver tableau là.
1: इसके अलावा सीटीएसपी मंगलवार को बजट पर और विस्तार से अपनी राय देगी। इसी क्रम में बजट 2026-2027 के बाद सरकार के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषित फैसलों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अरियान नवा मारी, ऊर्जा मंत्री पात्रिक कासिया वादेन और शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद मौजूद थे। अरियान नवा मारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के अनुसार बजट ने कई प्राथमिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जिनमें डोमेस्टिक अब्यूज बिल शामिल है। साथ ही अडॉप्शन से जुड़े नए प्रावधान भी जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक वर्ष किए जाने पर भी संतोष व्यक्त किया। उनको सुनते हैं।
4: Bien content qu'il permette un monitoring committee l'ONU domestic abuse bill.

0: nous pour aller très très vite avec la présentation de ce projet de loi-là dans le Parlement. Et il y a aussi également le Adoption Bill qui pouvine devant le Conseil des ministres très bientôt, qui nous finit demander depuis bien longtemps, et nous pouvine avec l'autorité qui pour moniteur l'adoption bans enfants dans Maurice et l'adoption au niveau international.
1: Shikshaki kshetra mees budget ka mukhya dhyan samaveshan par hai ghoshit pravdhano Roshit Pavdano में special education needs schools को और मजबूत करना शामिल है, साथ ही स्कूलों में उत्पीड़न यानी bullying के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 million रुपये की राशि रखी गई है. मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद को सुनते हैं.
2: Nous bons enfants du sein secteur et special needs, zot besoin, zot demande, zot attente, fin prend en considération et créer un specialized early intervention unit dans pré-primaire pour bons enfants 3 à 5 ans. Et augmente SEN Regional Development Centers aussi, qui permettent man sont plus près de man famille.
1: और जब भी इस बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हर परिवार को अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. मंत्री पैट्रिक आसियावादन को सुनते हैं.
3: Gouvernement pour donner 75 000 roupies là-dedans comme grant à travers la banque ou DBM. Et la différence, c'est un loan qui vous pouvez payer bout par bout. L'eau 5 ans, l'eau 6 ans, l'eau 7 ans.
1: मौजूद मंत्रियों के अनुसार ये बजट सामाजिक समावेशी और भविष्य की ओर केंद्रित है. अब चुनौती ये है कि घोषित कदमों को लागू किया जाए ताकि उनका सीधा लाभ जनता तक पहुंच सके. वैसे आसीमा के अध्यक्ष जयंत चिलम ने कहा कि कुछ कदमों से उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सकता है, हालांकि उनका मानना है कि अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. उनके अनुसार बजट दस्तावेज और विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है ताकि सभी घोषित कदमों और उनके उपभोक्ताओं पर वास्तविक प्रभाव को ठीक से समझा जा सके. उनको सुनते हैं.
4: Relire budget là, et aussi par les autres documents qui accompagnaient pour le cas comprend mieux. Mais à première vue, le côté consommateur, il annonce certaines baisses. Il annonce qu'il y a 2 milliards de roupies. Parti d'accord pour donner cette année-là.
1: GWF के अध्यक्ष ग्लेन सीबी का कहना है कि बजट 2026-2027 में कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण कदम शामिल है. उनके अनुसार इन क्षेत्रों में की गई घोषणाएं काफी सीमित है और उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए था.
5: Il n'y a pas grand-chose dans le budget. On avait proposé pour développer plus l'agriculture et aussi les énergies renouvelables. Il y a eu des annonces mais timides. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'on va donner jusqu'à foyer 275 000 roupies pour avoir panneaux solaires à une petite banque de 25%. Okay? Mais vous savez, panneaux solaires avec batterie. Seulement la batterie coûte autour de 200 000 à 300 000 roupies avec toute l'installation. Donc, c'est pas là pour... On avait fait comprendre au ministère, au ministre, que c'était pas à la portée de tout un chacun, ok? Donc c'est pas assez osé si on veut développer l'énergie solaire.
1: Or FPSO qui attire sur MTUC qui attire qui au pas FPSOU के अध्यक्ष और MTUC के उपाध्यक्ष विजय बंधन का कहना है कि ये बजट पिछले साल के बजट जैसा प्रतीत होता है. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बदलावों और उनके कामकाजी दुनिया पर प्रभाव को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है. उनके अनुसार आने वाले बदलावों के लिए श्रमिकों को तैयार करने के लिए और अधिक ठोस कदमों की आवश्यकता थी. उनको
6: L'année dernière, à répétition, je n'ai pas fait une grande chose dans le projet que je trouvais. Beaucoup de projets qui disaient, mais c'est moi qu'on nous disait le projet. Nous disons que nous devons qualifier quand même plus mal. Quel AI, quand nous disons AI. Mais AI, nous disons qu'on est, est-ce que AI n'est pas un fait aussi? Comme il y a une opportunité, il y a un fait aussi. Est-ce que nous avons tout ça à faire là? Un affaire positif, c'est bon. Le VAT n'est pas finalement. C'est une grande chose.
1: बजट 2026-2027 को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी है. एफएमपी की सदस्य ज्वाना बिहांशी ने घोषित कदमों पर निराशा जताई है. उन्होंने इसे बीजेपी बदबाती कहा है.

0: और कहा कि इसमें विजन की कमी है तथा ये बढ़ती जीवन यापन यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत से जूझ रही जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। उनके अनुसार कई घोषणाएं इस बजट अभ्यास से जुड़ी अपेक्षाओं से कम है।
1: Budget bad bafé. Beaucoup god sa expression là parce qu'il y en a beaucoup déception. Il y en a beaucoup affaires réchauffées aussi. Première affaire là qui vient dans mon tête, c'est congé parentalité disparaît. Il y a un an congé maternité et 46 semaines congé paternité. Mais moi, depuis longtemps, je milite pour un congé de parentalité parce que ça pour un game changer. L'accessibilité à l'emploi pour les femmes. Parce que si les femmes et les hommes gagnent même congé, c'est-à-dire un congé parentalité, ils sont capables de décider en deux qu'ils en ont pour prendre combien. Il y a là pour une discrimination à l'emploi.
0: पानी की कटौती, टंकियों में दबाव और कई क्षेत्रों में आपूर्ति की समस्या को देखते हुए बजट 2026-2027 में पानी को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। देश की पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए अगले तीन वर्षों में 6.4 बिलियन रुपये रखे गए हैं, जिसकी सराहना CWA के डायरेक्टर श्याम तानू ने की है। मुख्य कदमों में 11,000 परिवारों के लिए वाटर टैंक स्कीम है, जिसके तहत 175 मिलियन रुपये पानी की टंकियां और कनेक्शंस लगाए जाएंगे। पानी की बर्बादी रोकने के लिए नदियों पर 15 फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगाए जाएंगे और अंडरग्राउंड वाटर बढ़ाने के लिए 20 नए बोहोल्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा रिवर्सों की डैम का काम इस साल के अंत से पहले शुरू किया जाएगा, हालांकि पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। उनको सुनते हैं।
2: La situation économique de l'île Maurice qui est très difficile. Donc là, le gouvernement fait un effort considérable pour améliorer la vie des citoyens. Par exemple, là, je vois 11 000 foyers pour le Water Tanker Scheme, qui est extrêmement intéressant. Et au niveau de la CWA, à chaque fois, nous demandons à la population d'économiser de l'eau. Puis l'autre élément, je vois, il y a 24 nouveaux puits, c'est-à-dire des boreholes. Donc ça va aider considérablement pour le besoin d'eau potable. Comme vous savez, l'eau souterraine, aujourd'hui, c'est plus de 50% de la consommation. Et puis l'autre projet fort, éventuellement, c'est le barrage de Rivière des Anguilles qui va soulager considérablement le réservoir de Marovaco.
0: विदेश में शुक्रवार 19 जून को ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करते हुए शांति समझौते पर आखिरी मुहर लग गई। इसी के साथ इसराइल और हिजबुल्ला को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। प्राप्त खबरों के अनुसार एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी ने बताया कि कल शाम 4 बजे इसराइल और हिजबुल्ला भी युद्ध विराम के लिए सहमत हो गई है। और विश्व कप के बीते मुकाबले में कल रात मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पराजित किया। ब्राजील ने अभी हैटी को 3-0 से पराजित किया। और आज के अन्य निर्धारित मैचों में तुर्की वर्सेस पैराग्वे सुबह 7 बजे तथा नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन रात 9 बजे खेला जाएगा। और आज रात 12 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। मस्कारिन के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे सक्रिय बादलों के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर बाद के समय देश के पूर्वी इलाकों और सेंट्रल पार्टों पर बादल घिरे रहेंगे। रह रहकर वर्षा होगी। अन्य जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे। रात्रि के समय भी रह रहकर वर्षा होगी, खासकर दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर। कुछ जगहों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल पार्टों पर न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी और जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकते हैं, खासकर रात्रि के समय। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बाद में खासकर रात्रि के समय लहरें और ऊंची हो सकती है। सूर्योदय 6:44 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:38 पर होगा।

0: हाउस से मिली जानकारियों के बाद आई आज की प्रमुख खबरों को दोहराती है। 2026-2027 बजट में सरकार ने आर्थिक सुधार और सामाजिक मदद के बीच संतुलन रखने की बात की है, साथ ही गरीब और कमजोर लोगों की मदद पर जोर दिया गया है। बीओपी की जगह एसएपी लागू होगी और जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं वे आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन इसमें आय की जांच यानी मीन्स टेस्ट लागू होगी। सिटी एसपी ने बजट की आलोचना की है, जबकि यासीम ने कुछ कदमों का स्वागत किया है लेकिन और अध्ययन की बात कही है। विदेश में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हुआ है और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी युद्ध विराम पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर और कपिल का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Railroad Mont-Saint-André-Mé, 48 साल के 48 years old के श्री सुधीर कुमार जगदाऊ, जो चंदा तुल्य नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थ आज सुबह तीन बजे उनके घर फायर रोड मोसलमान सेंट आंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसलमान सेंट आंद्रे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM कम्युनिटी सेंटर लेन एमिताज फिनिक्स में। चौंसठ साल के 64 years old के श्री धनानंद सिंह सुनातन जो सुनील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थ आज दिन के दो बजे उनके घर कम्युनिटी सेंटर लेन एमिताज फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM मामबहार रोड बुआशेरी में 56 साल के 56 years old के श्री नन की सुन मांगा जो अनिल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ आज दिन के एक बजे उनकी माँ श्रीमती रेवती मांगो के घर मामबहार रोड बुआशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआशेरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM रॉय रोड प्लेन मान्यों में 45 years old के श्री राजा राम जापन जो बिग स्वाविन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी माँ श्रीमती नुएले रामजापन के घर रॉय रोड प्लेन मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मान्यों की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM नंबर चार अवेन्यू ला पेरूस बेल रोज में 78 साल के 78 years old के श्री विद्यानंद प्रभू जो प्रेम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के कृषि विभाग के पूर्व कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनकी पत्नी श्रीमती गीता प्रभु के घर नंबर 4 Avenue La Pérouse बेल रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौदगाव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 1:30 PM रॉय रोड मोंटाइलोंग में 71 साल के 71 years old के श्री तारा चंद गोपुल जो बीनेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनकी पत्नी श्रीमती उमा देवी मोलू गोपुल के घर रॉयल रोड मोंटाइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमाओशांग की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM सन ट्रॉपिकल पैराडाइज क्रिमेशन रोड बेलमोर में 64 साल के 64 years old के श्री सतीश मुहाबल जो मन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती गौमती मुहाबल के घर सन ट्रॉपिकल पैराडाइज क्रिमेशन रोड बेलमो से उठाकर दफनाने के लिए थोड़ा दूर से की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM मिक्वालेन शमेग्रनिये में 69 years old के श्री ईश्वंता देव

दान्या, श्री ईश्वंता देव दान्या, जो ईश्वन मालोरोम पैंट नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, मृत्यु हो गई उनके अर्थी। उनके अर्थी आज दिन के 1:15 बजे, आज इनके 1:15 बजे उनके घर मीक्वालेन शमैक वन्ये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपा शामुनी की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 PM। कम्युनिटी सेंटर लेन एमिताज फिनिक्स में, कम्युनिटी सेंटर लेन एमिताज फिनिक्स में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री धनानंद सिंह सनातन, जो सुनील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे, आज दिन के 2 बजे उनके घर कम्युनिटी सेंटर लेन एमिताज फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे 2 PM। रेमियोली माइबो में 96 साल के 96 ईयर्स ओल्ड के श्री सुपाया आमुगम, श्री सुपाया आमुगम, जो नादेस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे, आज दिन के 1 बजे उनके घर रेमियोली माइबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट फोकस रिवेरे क्रियोल की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। टेम्पल रोड बेल्वी मोरेल में मंदिरम के पास 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री भूषंत कादारू, जो प्रवीण कंट्रोलर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे, आज दिन के 2 बजे उनके घर टेम्पल रोड बेल्वी मोरेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रैंड पावे लावेंटियर की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। रिजर्वर रोड सोटीज कॉम्बे में 42 ईयर्स ओल्ड की 42 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमिता रामचंद, पैदाइशी नाम बंधु, और जो स्वेता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज इनके 10 बजे, आज इनके 10 बजे उनके पति श्री ऋषल रामचंद के घर रिजर्वर रोड सोटीज कॉम्बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉम्बे की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। सवान रोड नोवेल फ्रांस में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री गौकरण मंगा, जो कास्टेलो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके घर सवान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11:30 AM। ब्रांच रोड न्यू ग्रोव में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दाऊमत ओरी, जो कुमारी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री विशाल ओरी के घर ब्रांच रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोपियो की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। नंबर तेईस वेंकटासामी शिबेल बोबासामी 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री विनोद रामसामी, जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती चिंता रामसामी के घर नंबर 23 वेंकटासामी शिबेल बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। नंबर पाँच जॉन कैनेडी स्ट्रीट थॉन्गबो पोर्ट्री में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री रामगीत हरिमन सिंह जगदेव, जो रामगीत नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर नंबर 5 जॉन कैनेडी स्ट्रीट थॉन्गबो पोर्ट्री से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉन्गबो की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। कानपुर लेन नोवेल फ्रांस में कानपुर
Lane Nouvelle France mi pacha si sal ki 85 years old ki shri dindial rambanju shri dindial rambanju jo jagdish naam se zyada jani jate the ki mrityu ho gayi unki arthi aaj din ke 11:30 baje unki beti shmati babi tamandab ki ghar kanpur lane nouvelle france utha kar antim sanskar ke liye khamba shmashan bhumi le jayegi cremation today at 11:30 am shok mein rubin sabhi parivaron ke prati hamari

0: Seamless तड़का
1: RM2।
2: गुड मॉर्निंग। सैटरडे का दिन है, कुछ ना कहो गाना भी चल गया। वैसे बिना कहे ही हम समझ जाते हैं आपके दिल की बात। सो वेलकम टू योर टाइमलेस तड़का शो। मेरे पहले थी रिया, जिन्होंने आपको मीठी से जगाया। नाउ इट्स नलिनी, जो लेकर आ रही है 9 बजे तक आपके लिए टाइमलेस हिट्स आपकी ही टाइमलेस तड़का में। तो साथ निभाते चलिए, RM2 रेडियो मस्ती पर ही यूं ही कट जाएगा सफर, साथ चलते चलते।
0: Timeless Tadka
1: RM2
0: Timeless Tadka

0: 7:26 हुए हैं। गुड मॉर्निंग। वैसे क्या गाना है आपको जगाने के लिए ना? आशा है कि आप ठीक है। सफर हो चुका है शुरू आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती का ऑफ योर टाइम स्तर का। थोड़ी देर में दिस गोना बी योर स्पोर्ट्स न्यूज, तो यही पर स्टे कनेक्टेड ताकि आप मिस आउट ना करें लेटेस्ट अपडेट्स पर।
1: आरएमजू रेडियो मस्ती।
2: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés. Les 250 grammes de croquettes samoussa, spring rose, poulet ou poisson, Mariga Jack à 84 roupies 95 et toute la gamme de déodorants Axe 24 heures à 138 roupies 95 et à l'achat de 400 roupies de la gamme Axe, recevez un déo Axe FIFA en cadeau. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
3: On est tous winners!
4: Aujourd'hui, c'est jour du tirage du loto. Pour vous remettre de vos émotions, le jackpot du Loto Plus est à environ 15 000.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए अभी के लिए लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स सुनते हैं विकास जी से. गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग नीमनी एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. विश्व कप 2026 सर पर सवार है. हालांकि मॉरिशस में आर्थिक बजट है, किंतु वर्ल्ड कप में गोलों का कोई बजट नहीं है. गोल तराटर बरस रहे हैं. आज सुबह ही ब्राजील ने हेईटी को 3-0 से हराया और इसी समय पराग्वे 1-0 से आगे हैं टर्की के विरुद्ध. ये मैच ग्रुप डी में इसी समय खेला जा रहा है. टर्की 0 पराग्वे 1. खेल का ये 31वां मिनट चल रहा है ग्रुप डी का ये मैच. और कल रात यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से परास्त किया.

स्कॉटलैंड 0 मोरक्को 1। सो इतना सब कुछ वर्ल्ड कप को लेकर। आज भी दो अन्य मैच खेले जाएंगे, इसी समय एक मैच जारी है। सो सबसे पहले यूएसए 2 ऑस्ट्रेलिया 0। डोनाल्ड ट्रंप का देश यूएसए भी कमाल की मेज़बानी कर रहा है और घर में बुलाता भी है और खूब मारता भी है। पहले मैच में 2-0 की जीत, कल भी यूएसए की जीत हुई 2-0 से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। दोनों टीमों के बीच ज़्यादा अंतर, मतलब कि ज़मीन आसमान का अंतर कह सकते हैं। यूएसए प्रहार पे प्रहार करता जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया को झेलना पड़ा अंत तक, और अंततः यूएसए 2 ऑस्ट्रेलिया 0। यूएसए के लिए एक प्रथम ओन गोल के बाद फ्रीमैन ने एकदम फ्री होकर, मुक्त होकर खेल के 43rd मिनट पर दूसरा गोल स्कोर करके यूएसए को क्वालिफाइड कर दिया। दो मैचों में दो जीत हैं। इस प्रकार यूएसए की टीम एकदम मजबूती के साथ वर्तमान विश्व कप 2026 में आगे बढ़ रही है। इसी में वर्ल्ड कप में कल ग्रुप सी में मोरक्को ने कल रात स्कॉटलैंड को 1-0 से परास्त किया। ये मैच इस मैच के दूसरे मिनट पर ही कल सैबारी ने एक और गोल स्कोर किया। पहले मैच में भी सैबारी ने मैच गोल स्कोर किया था ब्राज़ील के विरुद्ध। कल इसी सैबारी ने, इस्माइली सैबारी ने खेल के दूसरे मिनट पर ही एक गोल स्कोर करके मोरक्को को जितवा दिया। स्कॉटलैंड झेलता गया, बस झेलता गया अंत तक, लेकिन उसे मौके भी मिले, कम से कम 4-5 मौके स्कॉटलैंड को मिले तो सही, लेकिन वे कन्वर्ट नहीं कर पाए। इस कारण इस हार के बावजूद स्कॉटलैंड अभी भी क्वालिफाइड हो सकता है गोल डिफरेंस पर या बेस्ट ऑफ 3 में आ सकता है। ये एक गोल, केवल एक गोल कंसीड कर पाया कल, और इस कारण जो आखिरी मैच होगा वो एकदम निर्णायक साबित होगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि बाकी जो ग्रुप हैं उन सब में कितने गोल बरस रहे हैं। स्कॉटलैंड 0 मोरक्को 1, यूएसए 2 ऑस्ट्रेलिया 0, और आज सुबह ब्राज़ील ने हेइटी को 3-0 से परास्त किया। ब्राज़ील के लिए माथेउस कुन्या का एक डबल रहा खेल के 23वें और 36वें मिनट पर, 23rd and 36th मिनट, माथेउस कुन्या ऑन टारगेट। फिर फर्स्ट हाफ की समाप्ति पर विनिसियस जूनियर ने एक तीसरा गोल स्कोर करके ब्राज़ील को 3-0 से जितवा दिया। सेकंड हाफ में कोई भी गोल नहीं बना। ब्राज़ील 3 हेइटी 0 और यूएसए 2 ऑस्ट्रेलिया 0। मोरक्को की जीत हुई 1-0 से स्कॉटलैंड के विरुद्ध। इसी समय जो मैच खेला जा रहा है उसमें टर्की 0 पराग्वे 1। बता दें कि आज रात 9 बजे नेदरलैंड्स का मुकाबला स्वीडन से होगा। फिर रात 12 बजे जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट। दोनों ही टीम 3-3 अंकों के साथ अभी आगे हैं और ये मैच एकदम, इस मैच में धुआं निकलेगा जर्मनी के नेशनल मानचाफ और आइवरी कोस्ट के बीच आज रात 12 बजे। एक बार फिर, आज रात 9 बजे नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन और रात 12 बजे जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट। और वर्ल्ड कप के इन समस्त झमेलों के बीच फुटबॉल का एक नया मेला सामने खड़ा हो पड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 के फिक्चर्स कल ही आम किए गए, सामने आए। इसकी शुरुआत, इस सीजन की शुरुआत शुक्रवार 21 अगस्त को हो रही है, जब चैंपियन टीम आर्सेनल न्यूली प्रमोटेड टीम कोवेंट्री सिटी का स्वागत करेगा। फिर शनिवार 22 अगस्त की शाम 22 अगस्त हल सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर सिटी खेलेगी बोनमुफ के विरुद्ध बिना पेप गार्डियोला के 10 साल बाद, जबकि एंटोनी इराउला का लिवरपूल रविवार 23 अगस्त की रात एवे जाएगा न्यूकासल यूनाइटेड के सेंट जेम्सेस पार्क में। अक्टूबर का महीना लिवरपूल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 10 अक्टूबर को लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, 31 अक्टूबर की रात लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल। किंतु इंग्लिश प्रीमियर लीग का सबसे प्यारा, सबसे खूंखार और सबसे धमाकेदार, धुआंधार मुकाबला शनिवार 21 नवंबर 21 नवंबर को खेला जाएगा, यानी लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड 21 नवंबर, जिसका रिटर्न मैच, रिटर्न लेग ओल्ड ट्राफोर्ड में खेला जाएगा शनिवार 23 जनवरी 23 जनवरी की शाम 6 बजे। सीजन समाप्त।

होगा रविवार 30 मई 2027 की रात। लिवरपूल की बात हुई तो द रेड्स एक जबरदस्त डबल ट्रांसफर पूरा करने की कगार पे हैं। ओसासुना के 22 ईयर ओल्ड स्पैनिश विंगर विक्टर मुनेज को लगभग 40 मिलियन यूरो में साइन करने के बाद लिवरपूल अब आरबी लाइप्ज़िग के इन डिमांड 19 ईयर ओल्ड 19 वर्षीय आइवरी कोस्ट विंगर यान

0: चाहता है। वैसे भी पेरिस सेंट जर्मेन और आर्सेनल भी जुमांडे को साइन करना चाहते हैं, इसलिए पिक्चर अभी बाकी है। बता दें कि विक्टर मुनेज के लिए कई बड़े बड़े क्लब भी उसके पीछे पड़े हुए थे, जिनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड भी था, लेकिन मुनेज ने लिवरपूल को चुना और अब अभी वर्ल्ड कप में शामिल है। लेकिन खबर ये भी है कि वो घायल हो गया है। सो मुनेज 22 साल का है, लिवरपूल में आ गया, क्या जुमांडे आएगा। पर इस बीच इब्राहिमा कोनाते और रियल मैड्रिड के बीच 4 साल के कंट्रैक्ट पर सहमति मिल गई है। कोनाते एक फ्री ट्रांसफर डील पर जा रहा है वहाँ, जहाँ उसका साथी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड क्रैश कर चुका है। इस बीच टोटेनहम हॉटस्पर ने ब्राइटन एवं नेदरलैंड्स के 26 वर्षीय 26 ईयर ओल्ड डिफेंडर यान वन हेके को 52 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया है। टोटेनहम में अपने पुराने कोच रोबर्टो दे ज़ेरबी के साथ पुनः काम करने का मौका तो मिलेगा ही। यान वन हेके अपने इंटरनेशनल टीममेट मिकी वान दे वान और क्साबी साइमंस के साथ भी खेलेगा। तीनों फिलहाल नेदरलैंड्स के लिए वर्ल्ड कप में धूम मचा रहे हैं। आज रात 9 बजे नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन। और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है, मुनोज घायल है, अलेक्जेंडर इसाक भी अभी चोटिल अवस्था में है आज यूजुअल। बुकायो साका बताया जा रहा है कि वो भी घायल हो गए हैं, शायद कल वो गाना के विरुद्ध इंग्लैंड के साथ नहीं खेल पाएगा। क्रोएशिया के खिलाफ उसको हल्की चोट लगी थी, सो बुकायो साका खेलेगा नहीं खेलेगा, देखते रहिए और सुनते रहिए। फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप का अगला ग्रां प्री रेस 26 जून से ऑस्ट्रिया के रेड बुल रेस सर्किट में लगने वाली है। मर्सिडीज का किमी एंटोनेली फिलहाल जनरल रैंकिंग में पहले स्थान पे है विद 156 पॉइंट्स, 156 अंक लिए, किंतु फेरारी में सवारी करते हुए ब्रिटेन का लेविस हैमिल्टन उससे केवल 41 अंक दूर है, इसलिए सावधान। क्रिकेट में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में यदि भारत की महिला टीम कल संडे की शाम दक्षिण अफ्रीकी लेडीज का सामना करेंगी, तो भारत की पुरुष टीम आज ही अफगानिस्तान के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी वनडे मुकाबला खेलेगी। उल्लेखनीय है कि एक टेस्ट मैच और एक वनडे में भारतीय टीम अफगानिस्तान को हरा चुकी है। लोकल स्पोर्ट्स की बात करें तो सरकार देश में स्पोर्ट्स और एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए युवा और खेल मंत्रालय के लिए इस वर्तमान बजट में 1.2 बिलियन रुपए का प्रावधान कर रही है। एथलीटों के प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग पर बल दिया जाएगा और मूल ढांचे मजबूत किए जाएंगे। ये भी कल सुनने को मिला कि प्रधानमंत्री ने कल थियोले और सेंट्रल फ्लैक में 2 स्विमिंग पूल के निर्माण का ऐलान किया और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। सो फाइनली वर्ल्ड कप में कल ब्राजील की जीत हुई 3-0 से, यूएसए 2 ऑस्ट्रेलिया 0 इसी समय, और कल मोरक्को की भी जीत हुई 1-0 से स्कॉटलैंड के विरुद्ध। इस समय पराग्वे टर्की को 1-0 से हरा रहा है, मैच अभी जारी है। पराग्वे और टर्की के बीच 1-0 से पराग्वे अभी जीत रही है। खेल का ये 40वां मिनट चल रहा है। सो आज रात 9 बजे नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन, रात 12 बजे जर्मनी का मुकाबला आइवरी कोस्ट से। सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: मेगा प्रोमो कोड क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपे सेल्स लो ग्रानिट क्वार्ट्ज, विकास लो लावो ला लिनिया मॉडर्न प्रिसोक।

0: Shameless तड़का
1: RM2
2: रात का नशा सच में उतरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि फुटबॉल का जुनून अभी भी जारी है और अभी भी विकास जी अपडेट देकर गए हैं, तो कॉफी या चाय रेडी रखिए क्योंकि वर्ल्ड कप का फीवर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दूसरे पहर में डिटेल्स में हमें अरविंद जी फिर से अपडेट देंगे। अभी के लिए

0: कि आप बस एंजॉय कीजिए अमेजिंग म्यूजिक को जो चल रहा है अभी आपके टाइमलेस तड़का में.
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का.

0: listening to Radio Masti. The time is brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Masti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: सुबह के 8 बजे है. नमस्ते. भोजपुरी में समाचार सुना जा. बजट 2026-2027 के मुताबिक जो नजना 31 दिसंबर 2026 ले बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीओपी के पास रहियन जाओ और उनकरा प्राप्त करते रहियन जाओ उनकरा नवा स्टेट एज पेंशन एसएपी के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त हो. एसएपी के भुगतान सरकार ने घोषित मीन्स टेस्ट यानी आय परीक्षण के आधार पर करा जाए. एसएपी के राशि को तय मानक के मुताबिक निर्धारित करा जाए जिकर बाद में मीन्स टेस्ट लागू करा जाए. सरकार ये भी स्पष्ट कर लन कि मौजूदा बीओपी लाभार्थी की पेंशन पहल का जनवरी 2027 से एसएपी के होइला पर अपन आप बंद नहीं हो. Budget 2026-2027 qui bat la Confédération des travailleurs du secteur privé CTSP open pratiquia vyakta karlan CTSP bolan ki I budget am janta ke vastavik zarurat se dur bate union kaskar ki pension reform aur means test par apatti jatailan bolan ki I buzurg log ki pension pawe khatin apan arthik sthiti sabit kare के परी जन उनकर मुताबिक सही नए बातें सीटीएसपी एक बजाय यूनिवर्सल पेंशन की जारी रखे के और उच्च आय होला जना पर तनिजस्ती टैक्स लगावे के सुझाव देलन. सीटीएसपी के प्रवक्ता रियाज चतु ई बात के ऐलान करलन जा. यही क्रम में बजट 2026-2027 के बाद सरकार की सदस्य को प्रेस कॉन्फ्रेंस करलन जेकर में उ घोषित फैसला पर अपन अपन प्रतिक्रिया देलन. इ मौका पर

0: Deputy Prime Minister Ariana Van Mari aur German Tri Patrick Asia Vaden aur Ushik Shamantri Mahen Ganga Prasad bhi maujood rahlanja Ariana Van Mari bolan ki vit mantralay ki bhejal kar unkar sab prastav ki swikar kar le li baatein Deputy Prime Minister aur Gender Equality Mantri Khatin budget kai go prathamik mudda ki mahatvapurna badhava di li baatein jekar mein domestic abuse bill shamil baatein ekar sangi adoption se jural nawa pravdhan bhi bahut jald mantrimandal ke samne rakhal jaye o maternity leave ke go baris le badhave par bhi apan santushti jatailan मंत्री पत्रिक आसियावादन बोलन के ऊर्जा बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता बाते घर में सोलर एनर्जी की बढ़ावा देवी खातिर हर परिवार की अपन छत घर के छत पर सोलर पैनल्स लगाओ भी खातिर ₹75,000 की सहायता देवल जाए और शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद बोलन के शिक्षा के क्षेत्र में बजट के मुख्य ध्यान समावेशन पर बाते घोषित प्रावधान में स्पेशल एजुकेशन नीड स्कूल के जस्ती मजबूत करे के कदम भी शामिल बातें कर संगी स्कूल में उत्पीड़न यानी बुलिंग के खिलाफ अभियान की तेज करी खातिर ₹10 मिलियन की राशि रखल गल बातें बजट 2026-2027 पर आसिम के अध्यक्ष जयंत चेलम बोलन के कई गो कदम से उपभोक्ता पर बोझ कमती हो सकेला किंतु उनकर मुताबिक अंतिम निष्कर्ष नए निकावल जा सके कहे कि बजट दस्तावेज के विस्तार से अध्ययन करे के परी जिमें सब घोषित कदम और उनकर उपभोक्ता पर वास्तविक प्रभाव के जस्ती निमन से समझल जा सकी विदेश में शुक्रवार 19 जून के ईरान और अमेरिका के बीच लंबा समय से मौजूद विवाद के खत्म करके शांति समझौता पर आखिरी मुहर लगकर बातें एकर संगे इसराइल और हिजबुल्ला के लेके भी बड़ा खबर सामने आल बाते प्राप्त खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी बोलन के कल सांज के इसराइल और हिजबुल्ला भी युद्ध विराम खाते अपन सहमति दिलन जा तो यह रहा भोजपुरी में समाचार आप लोग के ध्यान का धन्यवाद
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Continue with it.

0: सुनते हैं वेदर अपडेट्स टीना से।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ऑन इट टू स्विनर्स।
3: मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे सक्रिय बादलों के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर बाद के समय देश के पूर्वी इलाकों और सेंट्रल बातों पर बादल घिरे रहेंगे। रह रहकर वर्षा भी होगी और अन्य जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे और रात के समय भी देश के दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा हो सकती है और कुछ जगहों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी और जो जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में। दो समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी जाती है क्योंकि लहरें और भी ऊंची हो सकती है। सूर्योदय आज 6:44 पर और सूर्यास्त शाम के 5:38 पर।
1: Your weather forecast on RM2
4: Radio Musti.
5: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés. Les 250 grammes de croquettes samoussa, spring rose, poulet ou poisson, Mariga Jack à 84 95 et toute la gamme de déodorants Axe 24 heures à 138 95 et à l'achat de 400 roupies de la gamme Axe, recevez un déo Axe FIFA en cadeau. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
6: On est tous winners!
1: Timeless Tadka!
4: RM2
1: Timeless Tadka!

0: एस तड़का
1: RM2।
2: कहते हैं जब अल्फाज कम पड़ जाते हैं तब म्यूजिक बोलता है, और कुछ गाने तो ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी हमें वही यादें, वही एहसास और वही मुस्कान दे जाते हैं। एंड कल तो म्यूजिक डे है, वर्ल्ड म्यूजिक डे है, तो आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं उसको। एंड आपको बता दें कि आज 20 जून को केंद्रा मॉल लसैपिया में 10:30 से लेकर 1 बजे तक आपके लिए म्यूजिक डे सेलिब्रेशन होने वाला है RM2 टीम के साथ। एंड कल भी 21 जून को सेंटर पॉइंट 11 से लेकर 2 बजे तक आप मिल पाएंगे RM2 टीम के साथ, तो ज्वाइन इन कीजिएगा जरूर। अभी के लिए गानों को जारी रखते हैं आपके टाइमलेस हिट्स के साथ।
1: RM2 रेडियो मस्ती फील।

0: Avant tout défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: सैटरडे है मेरे प्यारे दोस्त, अलार्म से नहीं अपने दिल की सुनो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा एंजॉय करो और जिंदगी को स्लो मोशन में जियो। अगर वीकडेज पर सेल्फ केयर करने का टाइम नहीं मिला तो वीकेंड पर ही सही।
0: Avant tout défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2.
3: Radio Musti.

0: ये टीम्स 104 मैचेस रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको
2: रेडियो मस्ती के साथ
0: वर्ल्ड कप मैगजीन
3: वर्ल्ड कप स्पेशल इन RM2। सो ब्राजील का वर्ल्ड कप अब शुरू हुआ। फर्स्ट हाफ में 3 गोल, मार्चुस कुन्हा का डबल, विनिसियस जूनियर का 1 गोल। सेकंड हाफ में जैसे गोल स्कोर करना भूल गए, आईसी की टीम वर्ल्ड कप से एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बनी और इसी ग्रुप में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। सो ब्राजील और मोरक्को के पास है 4-4 अंक, स्कॉटलैंड के पास 3 अंक, मतलब स्कॉटलैंड की उम्मीदें अभी तक हैं क्योंकि उसका आखिरी मैच ब्राजील के खिलाफ होगा, जबकि मोरक्को के सामने होगी आईसी की टीम जो पहले से ही एलिमिनेटेड है। सो कहा जा सकता है कि ज्यादा चांसेस अभी मोरक्को के हैं, जबकि ब्राजील के लिए स्कॉटलैंड जैसी मोटी हड्डी होगी। यूएसए की टीम ही क्वालिफाई 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराकर मेक्सिको के बाद दूसरी होस्ट नेशन क्वालिफाई होने के लिए, और इसी समय पाराग्वे टर्की को 1-0 से हरा रहा है। सेकंड हाफ चल रहा है इसी समय, चाय के साथ वर्ल्ड कप देख रहे हैं सभी लोग। सो आज के फिक्स्चर्स, नेदरलैंड्स स्वीडन रात्रि के 9 बजे, फिर ग्रुप ई में जर्मनी आइवरी कोस्ट, ये मिडनाइट किक ऑफ होगा। कल सुबह 4 बजे इक्वाडोर कुआसाओ ग्रुप ई वाला मैच, टूनिसिया जापान 8 बजे ये कल होगा, और ग्रुप एच में 9 बजे स्पेन वर्सेस सऊदी अरेबिया, 11 बजे बेल्जियम वर्सेस ईरान, ये कल के फिक्स्चर्स हैं। वैसे फीफा ने कुछ नए रूल्स लागू किए हैं, जैसे मुंह कवर करके प्रोटेस्ट के दौरान रेफरी को कुछ कहना, और इसका पहला शिकार बना अभी पाराग्वे का खिलाड़ी अल्मेरन, जिसे रेड कार्ड दिया गया। और फीफा यूएफए की तरह टेबल्स में भी कुछ बदलाव ला रहा है, यानी गोल डिफरेंस काम नहीं आएगा, हेड टू हेड क्या हुआ वो देखा जाएगा, तब क्वालिफिकेशन डिसाइड किया जाएगा। ये यूएफए पहले से ही लागू कर चुका है। सो वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हो रहा है, हमारा साथ देते रहिए। अभी थोड़ी देर बाद आपको फाइनल रिजल्ट देंगे, ये मैच जो भी चल रहा है पाराग्वे और टर्की के बीच। भूलेगा नहीं, टर्की की अगर हार हुई गया काम से। सो देखेंगे अभी आगे क्या होगा।
0: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

0: को और ताज़ा बनाने के लिए अगर अभी आप काम पर हो या ऑन द वे है बूंको गाइस टू यू कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ ठंड है सो वार्म वाटर पीते रहिए क्योंकि फिक्र होती है आपकी बीमार नहीं होना है बहुत कुछ करना है कल गाना भी तो है इट्स वर्ल्ड म्यूजिक डे तो आवाज़ को इंटैक्ट रखते हैं नेक्स्ट वन डेडिकेट करते हैं टू ऑल दोज जो अभी कनेक्टेड है हमारे साथ आरएमजू रेडियो मस्ती पर इट्स लेमनी फॉर यू
1: Timeless Tarka.
2: RM2.
1: Timeless Tarka.

0: Ramirez, तड़का
1: RM2।
2: और इसी ही टाइम बीत गया है इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, आपका दिन सुरीला रहे, मुस्कुराहट से भरा रहे और याद रखिए कि जिंदगी में म्यूजिक हो तो हर पल खास बन जाता है। और हाँ, RM2 टीम के साथ म्यूजिक डे सेलिब्रेशंस में जरूर जरूर शामिल होइएगा। आज सैटरडे 20 जून को केंद्रा मॉल सैम्पिया 10:30 बजे से शुरू हो रहा है और कल 21 जून को संडे को सेंटर पॉइंट 11 से लेकर 2 बजे तक हम आपका इंतजार करेंगे ढेर सारी म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट के साथ। एंड आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, सुरों में रहिए और सुनते रहिए RM2, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली है पूनम बॉली ब्रंच के साथ।
1: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ, संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। Happy Music Day from MBC Radio.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: ठीक 9 बजे हैं और संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी है टीना। नमस्कार टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। बजट 2026-2027 के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीओबी के पात्र होंगे और उसे प्राप्त कर रहे होंगे, वे नई स्टेट एज पेंशन एसएपी के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। एसएपी का भुगतान सरकार द्वारा घोषित मीन्स टेस्ट यानी आय परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। एसएपी की राशि एक तय मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें बाद में मीन्स टेस्ट लागू किया जाएगा। और सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान बीओपी लाभार्थियों की पेंशन 1 जनवरी 2027 से एसएपी लागू होने पर अपने आप बंद नहीं होगी। Budget 2026-2027 que bat, Confédération des travailleurs du secteur privé, CTSP, ne durant pratiquera dit hai. CTSP ka kehna hai ki ye budget aam logon ki vastavik zaruraton se dur hai. Union ne khas taur par pension reform aur means test par aapatti jatai hai. Unka kehna hai ki isse buzurgon ko pension paane ke liye apni aarthik sthiti sabit karni padegi, jo unke anusar sahi nahi hai. CTSP ne iske bajaye universal पेंशन को जारी रखने और उच्च आय वालों पर थोड़ा अतिरिक्त टैक्स लगाने पर सुझाव दिया है। इसी क्रम में बजट 2026-2027 के बाद सरकार के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषित फैसलों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आर्याना वामारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के अनुसार बजट ने कई प्राथमिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जिनमें डोमेस्टिक अब्यूज बिल शामिल है। साथ ही आरक्षण से जुड़े नए प्रावधान भी जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने रखे जाएंगे। और मंत्री पत्रिका सेवादन ने कहा कि ऊर्जा भी इस बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है।

0: घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हर परिवार को अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और शिक्षा मंत्री के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में इस बजट का मुख्य ध्यान समावेशन पर है। घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्कूल को और मजबूत करना शामिल है। साथ ही स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है। असीम के अध्यक्ष जयंत चिलम ने कहा कि कुछ कदमों से उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सकता है, हालांकि उनका मानना है कि अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। पिछले हफ्ते में 63 साल की एक महिला कल शाम अपने घर में मृत पाई गई। उनकी भतीजी जो सियांगन में ऊपर रहती है ने पुलिस को बताया कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति महिला के साथ दिखाई दिया जो उससे बात कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में फाउल प्ले की आशंका जताई है। मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए आज सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। और आज की चर्चा कार्यक्रम में आज सड़क सुरक्षा और सड़क संबंधी नियम पर चर्चा की जाएगी। किरण जानकी के मेहमान होंगे SI बुधन। तो 9 बजे के इन समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मिर्चिस पर। विदेश में कल शुक्रवार दोपहर लंदन के उत्तर में दो ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 50 लोग घायल हो गए हैं। टक्कर वाली जगह पर इमरजेंसी सर्विस की टीमें तुरंत पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम यहाँ ग्यारह जी नमस्कार।
1: Volley Branch RM2 Radio Masti.

0: Polly Branch RM2 Radio Masti.
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, 9:09 हो चुके हैं और ये है आपका फेवरेट बॉलीवुड ब्रंच और मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो आज का म्यूजिक आपके मूड को बनाएगा और फुल ऑन फन और एनर्जेटिक बनाने वाला है। वैसे तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की धूम पूरे मॉरिशस में, कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चल रही है। और आजकल जो एक मज़ेदार चीज़ देखने को मिल रही है, हमारे यहाँ पर क्रिकेट चलता है तो फुटबॉल लवर्स भी देखते हैं, और जब फुटबॉल है तो भाई फीवर चढ़ा हुआ है क्रिकेट लवर्स को, और सभी को चाहिए सिर्फ फुटबॉल। तो इन्जॉय कर रहे हैं आप भी, मुझे पता है इस टाइम जो है सभी की नज़रें जो हैं सिर्फ टीवी की ओर हैं, और एक कान सिर्फ जो मदर्स होंगी या वो लोग क्या कर रहे होंगे कि बस रेडियो की तरफ जा रहे होंगे। तो चाहे टीम कोई भी हो, आपको किसी का तो फैन होना चाहिए, क्योंकि इंजॉय करना है आपको फुटबॉल भी और साथ में हमारा रेडियो भी, यानी कि बॉली ब्रंच। तो इंजॉय करते हैं आपके गानों को और साथ में इंजॉय करते हैं थोड़ी देर के बाद आपके स्कोर्स को।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 9:18 हो चुके हैं, क्या बात है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की धूम चारों तरफ चल रही है भाई। कल के मैचेस में यूएसए मोरक्को और ब्राजील की धमाकेदार जीत हुई और होस्ट टीम यूएस ने अपनी दूसरी जीत हासिल की, यानी कि वो अब क्वालिफाई हो गए हैं और ब्राजील और उनका इंतज़ार करना होगा अभी थोड़ा सा। और आखिरी मैच होगा स्कॉटलैंड के खिलाफ और टर्की वर्सेज पैराग्वे का जो मैच अभी चल रहा था, बस जीता है किसने, पैराग्वे ने 1-0 से। और आज रात के लिए तैयार हो जाइए, रात 9 बजे नीदरलैंड वर्सेस स्वीडन और उसके बाद रात को 2 बजे जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट चलेगा भाई, क्या बात है। और ये एक मज़ेदार बात जो है कि आज कल मुंह ढक कर बात करने से रेड कार्ड मिलता है, तो चलिए भाई सावधान हो जाइए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 पूरे जोश और पूरे मज़े में है और आपको भी पूरे मज़े आने चाहिए। मुझे पता है बहुत लोगों को अभी थकान हो जाएगी भाई, अपना ये हंसती खेलते खेलते उसके बाद बोलेंगे चलो चाय बनाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, उसके बाद सबने सो जाना है, क्योंकि भाई सैटरडे है, ठीक है रेस्ट करो। आप लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया है अपने मैचेस को, अपनी मस्ती को करने के लिए, पर हम इतना जरूर बोलेंगे खाने पीने से साथ साथ हमको मैसेज भी कर दो 5499124 पर, क्या चल रहा है मूड हमें भी बताया जाए भी। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमें भी पता चलेगा कि आप लोग कितने जोश और उसमें मस्ती में है। तो चलिए मैसेज कीजिए और तब तक इंजॉय कीजिए अपना ये गाना।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.
2: We on the top.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: नमस्कार, 26 मिनट हो चुके हैं और कहते हैं ना कि एवी कुछ नहीं होता भाई, एवी कहाँ से हो जाएगा। बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है गाइस, क्योंकि एक्चुअली आज हम लोग करने जा रहे हैं म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट होने वाला है आपके साथ। और 20 जून को मिलिए केंद्र मॉल में, यानी कि सैम्पियर में, 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। तो आपको भाई मिलने वाली है बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स और मस्ती के साथ में, कहते हैं ना कि स्टॉक में हमने रखा हुआ है। हमने बोला कि आज भाई कल है म्यूजिक डे, तो आज से ही तैयार करते हैं और आज से ही प्लानिंग कुछ करना शुरू करते हैं। और कल भी होगा म्यूजिक डे पे सेलिब्रेशन स्पेशल, जो कि होगा सेंटर पॉइंट थ्रियानो में 11 बजे से लेके 2 बजे तक। और इसमें सब स्पेशल पता है क्या खास है कि यहाँ पर पूरी एमबीसी टीम आपको दोनों जगह मिलेगी, जहाँ पे आप आरजे से मिल सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने कोई अभी तक प्लानिंग नहीं की है अपने बच्चों को लेके जाने के लिए, तो बस ये सबसे बेस्ट मोमेंट है। और अगर कोई

0: कपल हैं जो कि ओल्ड हैं, वो भी आराम से जाके हमारे साथ मस्ती कर सकते हैं, आ सकते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा मूड चेंज करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट वीक को बहुत ही प्लानिंग देगा। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई आपको क्यों घर में बैठना है, बिल्कुल मत बैठिए, आराम से निकलिए ना, घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा घूमिए, आज सैंपियर जाइए और कल सेंटर पॉइंट, और तब तक इंजॉय कीजिए आपके गाने। और अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो भेज सकते हैं 5499-1294 पर। मैं हूँ यहाँ पर आपके साथ पूनम।
1: Body Branch RM2 Radio Masti।
2: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ, संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। Happy Music Day from MBC Radio।

0: ऑलिव ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या बात है भाई, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए तो फिर चार छुट्टियां मिल जाती है। क्या ऐसा हो सकता, काश ऐसा हो सकता, पर नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, हमें तो बस थोड़ी सी कुछ मस्ती चाहिए ना, उस मस्ती के लिए बर्थडे भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो चलिए भाई, हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं अविनाश जी और विश कर रहे हैं एक गाना जो कि अपनी वाइफ संध्या और अर्णव और रियांश अपने बेटे दोनों बेटों को सुनाना चाहते हैं। तो भाई हम बिल्कुल चलाएंगे उनके लिए एक स्पेशल गाना और हम कहेंगे भाई घर में थोड़ी सी सफाई भी होनी चाहिए, चलो भाई से काम कराया जाए। तो चलिए भी आज बर्थडे है और हमारे साथ आज है बर्थडे निखिल का, जो कि नेफ्यू हैं ज्योति और ब्रदर लोविश के, और उनको बहुत सारी विशेस कर रहे हैं और बर्थडे विशेस के साथ में ये कह रहे हैं कि शाम को हम तेरे घर आ रहे हैं और एक स्पेशल पार्टी लेने के लिए, तो अगर तैयारी है तो बस हमें बुला ले, बस फ़ोन कर ले। तो मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए, स्पेशल इन्विटेशन, ये अगर कोई ना बुलाए ना तो बस उसको एक बर्थडे विश हमारी तरफ से यहाँ से करवाओ और उनके घर चले जाओ, क्यों बात क्या हो, ऐसा होना चाहिए ना। तो चलिए हैप्पी बर्थडे 11 इयर्स ओल्ड, बट उसके बाद उन्होंने नाम ही लिखना भूल गए। भाई बर्थडे किसका है ये तो बता देते, पर हमें इस क्यूटी पाई का नाम नहीं पता। हमारे फिर भी हम भी विश करेंगे उनको कि विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, इंजॉय कीजिएगा। और ये है मॉम पूजा, डैड अंतिश एंड ब्रदर आयुष की तरफ से, और उन्होंने यही कह रहे हैं कि देखा यही सरप्राइज था, हमने तेरा नाम नहीं दिया क्योंकि हमें पता है कि तू हमारे को प्यार कितना करता है, और अगर प्यार करता है तो हमारे लिए एक छोटी सी पार्टी रख दे। पेरेंट्स बोल रहे हैं और वो सोच रहा होगा काश शायद मुझे सरप्राइज देंगे, कोई बात नहीं, जो भी पार्टी दे, मस्ती करो, इंजॉय करो, केक कट

पॉइंट जहाँ पे म्यूजिक डे होने वाला है, तो ये भी चलता है. बच्चे हैं, 11 इयर्स का बच्चा है हमारा, तो क्यों ना उनकी उनकी पार्टी कराई जाए. तो साथ में हम भी पूरी एमबीसी की टीम की तरफ से आप सभी को विश करना चाहते हैं जिनका भी आज बर्थडे है, ये हम सब की तरफ से.

0: from Radio Musti.
1: Body Brunch, RM2, Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: नमस्कार, 46 मिनट हो चुके हैं और जानते हैं स्टार आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आज सुनते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले
2: बॉडी ब्रांच RM2 Radio Musti।
3: एरीज मेष राशि,
1: आज आपकी स्पीड और स्पिरिट दोनों हाई रहेगी। जो ठान लेंगे उसे पूरा करने का दम रहेगा। नई शुरुआत लकी साबित हो सकती है। दिन पावरफुल एंड पैक्ड रहेगा। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 1।
3: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज पेशेंस आपका सुपर पावर बनेगा। काम धीरे सही लेकिन परफेक्ट होने वाला है। कंफर्ट जोन में खुशी मिलेगी आपको। दिन स्ट्रांग और स्टेबल रहेगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
3: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपका चार्म सब पर छा सकता है। वर्ड्स आपका मैजिक बनेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज नॉक कर रही हैं आपके दरवाजे पर, तो दिन फास्ट और एक्साइटिंग रहेगा। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
3: कैंसर कर्क राशि,
1: आज इमोशंस आपके स्ट्रेंथ बनेंगे। अपनों का सपोर्ट मिलने वाला है और फुल इसीलिए आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं। दिल से लिया फैसला सही बैठेगा। दिन वार्म एंड पावरफुल रहेगा। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
3: लियो सिंह राशि,
1: आज स्पॉटलाइट आप पर रहने वाली है। लीडरशिप नेचुरली बाहर आएगी। लोग आपकी प्रेजेंस फील करेंगे। दिन रॉयल रहने वाला है एंड लॉयल होने वाले हैं आप खुद अपने आप से, तो लकी कलर बनेगा गोल्ड, लकी नंबर है 9।
3: वर्गो कन्या राशि,
1: आज स्मार्ट मूव्स फायदा देंगे। डिटेल्स पर ध्यान आपको आगे चल के देना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। थोड़े से पेंडिंग जो काम आपने इतने टाइम से रखे हुए थे उसमें तेजी आने वाली है। दिन ओवरऑल प्रोडक्टिव रहने वाला है। लकी कलर बनेगा स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
3: लिब्रा तुला राशि,
1: आज बैलेंस आपकी जीत बनेगा। रिश्तों में वार्म्थ बढ़ेगी। आपकी स्माइल लोगों का मूड बदल सकती है। दिन ब्राइट रहने वाला है तो बस स्माइल कीजिए। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 4।
3: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,

0: आज इनर फायर स्ट्रांग रहने वाली है, फोकस शार्प रहेगा, बिग डिसीजन के लिए अच्छा समय है, दिन इम्पैक्टफुल रहेगा। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज एडवेंचरस मूड ऑन रहेगा, कुछ नया करने की इच्छा बढ़ सकती है, गुड न्यूज सरप्राइज दे सकती है, दिन थ्रिलिंग रहेगा। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज डिसिप्लिन आपको जीत दिला सकती है, मेहनत का असर साफ दिखने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो स्कूल और कॉलेजेस में हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए बिल्कुल फोकस्ड होके, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी क्योंकि आपको पढ़ाई अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। दिन ओवरऑल सॉलिड रहने वाला है। लकी कलर है ब्राउन, लकी नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आइडियाज की बारिश हो रही है, क्या बात है, क्रिएटिव सोच आपका आपको और सबको इम्प्रेस करने वाली है, खुद ही आपको एहसास नहीं होगा कि ये काम आपने कर दिया, तो कुछ यूनिक करने का चांस मिलने वाला है। दिन डायनामिक रहेगा, लकी कलर बनेगा इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, दिल जो कहे उसे सुनिए, पॉजिटिव वाइब्स आपका साथ दे रही है, दिन मैजिकल फील होने वाला है। लकी कलर है सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो ये था आपका भाई राशि फल, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए, अपने कामों पर पूरा ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए। ये था, एंजॉय करना चाहिए आपको बस अब गाना। तो ये है आपका राशि फल आज का।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. टीना से. टीना, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. बजट 2026-2027 के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीओपी के पात्र होंगे और उसे प्राप्त कर रहे होंगे, वे नए स्टेट एज पेंशन के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे. एसएपी का भुगतान सरकार द्वारा घोषित मींस टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. एसएपी की राशि एक तय मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें बाद में मींस टेस्ट लागू किया जाएगा. Le budget 2026-2027 qui bat Confédération des travailleurs du secteur privé, CTSP, ne tourne pas de créa dit hein. CTSP ka kehna hai ki ye budget aam logon ki vastavik zaruraton se door hai. Union ne khas taur par pension reform aur means test par aapatti jatayi hai. Unka kehna hai ki isse buzurgon ko pension paane ke liye apni aarthik sthiti sabit karni padegi, jo unke anusar sahi nahi hai. और बजट 2026-2027 को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी है. एफएमपी की सदस्य ज्वाना बिहांजे ने घोषित कदमों पर निराशा जताई है. उन्होंने इसे बजट बादबाती कहा है और कहा कि इसमें विजन की कमी है तथा ये बढ़ती जीवन यापन यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत से जूझ रही जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता. GWF के अध्यक्ष क्लैंसी बीबी का कहना है कि बजट में कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण कदम शामिल है. उनके अनुसार इन क्षेत्रों में की गई घोषणाएं काफ़ी सीमित है और उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए था. निजी क्षेत्र का मानना है कि इस बजट की समग्र दिशा उन प्रमुख मुद्दों का समाधान करती है जिन्हें उसने सरकार के सामने रखा था. कल बजट भाषण के केवल डेढ़ घंटे बाद ही बिजनेस मॉरिशस की प्रतिक्रिया सामने आई. निजी निवेश के आधार पर आर्थिक विकास की वकालत करने वाले इस संगठन ने कई घोषणाओं का स्वागत किया है. में मॉरिशस को एआई का केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र बनाने की योजना, पर्यटन क्षेत्र में विविधता लाने के उपाय तथा विदेशी कामगारों की भर्ती को और आसान बनाने वाले कदम शामिल है. पश्चिम अफ्रीका में 63 साल की एक महिला कल शाम अपने घर में मृत पाई गई. उनकी भतीजी जो उसी आंगन में ऊपर रहती है ने पुलिस को बताया कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति महिला के साथ दिखाई दिया जो उससे बात कर रहा था. पुलिस ने इस मामले में फाउल प्ले की आशंका जताई है. मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए आज सुबह

0: पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और विदेश में कल दोपहर लंदन के उत्तर में दो ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। टक्कर वाली जगह पर इमरजेंसी सर्विस की टीमें तुरंत पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
1: Volley Branch RM2 Radio Masti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: क्या बात है, क्या बात है भाई। ये ऐसे गाने चलते हैं ना तो दिल करता है स्टूडियो में ही डांस करने का, पर मैं अकेले कैसे

0: करूं, सारे जने तो पहुंच गए हैं भाई केंद्रा मॉल सैम्पियर, जहां पर होने वाला है पूरी एमबीसी की टीम के साथ मस्ती, क्योंकि हमने आपको देने हैं बहुत सारे गिफ्ट और वाउचर्स। और हम क्या करेंगे अकेले अपने पास रख के, हम तो सोच रहे हैं कि भाई आप भी आ जाएं, यहां पर बहुत ही मस्ती होने वाली है। 10:30 बजे से 1:30 बजे तक इंजॉय कर पाएंगे। और साथ में अगर आपने कोई प्लानिंग आज की नहीं की है तो 2 दिन हमारे नाम पे कर दीजिए, आज का दिन और कल का नाम, कल का दिन क्योंकि कल है म्यूजिक डे, और म्यूजिक डे पे अगर म्यूजिक ना हो और आप सबका साथ ना हो तो कैसे बनेगा भाई, बिल्कुल नहीं बनने वाला। इसलिए आ जाइए, अभी भी बहुत सारा टाइम पड़ा है आपके पास, आधा घंटा पड़ा है, आधे घंटे में तो भैया दुनिया जीत ली जाती है। तो बस प्लान कीजिए और आइए सैंपिए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक इंजॉय करते हैं आपके गाने।
1: Body Branch RM2 Radio Masti
2: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ, संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। Happy Music Day from MBC Radio।

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है, 10:28 हो चुके हैं और बात चल रही है फैशन टिप की। यस, फाइव स्मार्ट बनना है तो फैशन टिप तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आप हमें यहाँ से सुन रहे हैं तो हमको आपको एक प्यारी सी बात बताते हैं, एक टिप देते हैं कि जो लोग बेल्ट पहनते हैं, जैसे कि आप ट्राउजर्स के ऊपर बेल्ट पहनते हैं तो क्या कहते हैं, और साथ में शूज़ भी डालते ही हैं क्योंकि नॉर्मली एक कलर होता है बहुत ही प्यारा सबके पास, ब्लैक या ब्राउन। नॉर्मली हम लोग इसी पे ही शफल करते रहते हैं। अगर पॉसिबल हो तो बेल्ट और शूज़ का कलर मैच कर दीजिए। जैसे कि अगर आपके पास ब्लैक शूज़ है तो ब्लैक बेल्ट डाल दीजिए, ब्राउन शूज़ है तो ब्राउन ही बेल्ट डालिए। और जैसे गर्ल्स हैं तो कई बार वो क्या कहते हैं, उनके पास तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शंस होते हैं और बेज कलर होता है, पिंक कलर होता है, मूव कलर, बहुत सारे उनके शूज़ होते हैं। पर अगर आप भी लेडीज़ या गर्ल्स जिन्हें कह सकते हैं, वो अगर आपकी बेल्ट सेम होगी और कलर की होगी और सेम शूज़ होंगे तो बिलीव मी, सुनने से एक छोटी सी बात लगती है पर आपकी ये जो छोटी सी डिटेल है वो आपको स्टाइलिंग भी बनाती है और नेक्स्ट लेवल पर आपको इंजॉय कराती है, क्योंकि आपको खुद लगता है कि सच में हमने बहुत कुछ अच्छा सा कपड़ा पहना है या बहुत सी अच्छी सी स्टाइलिंग की हुई है और हमारी ब्यूटी जो है कि और ग्लो करती है और कहते हैं कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो एक बार ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए आपके गाने।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: क्या आवाज़ है जुबिन, कहते हैं जुबिन की हो या जुबिन की हो, दोनों की ही आवाज़ बहुत ही खास है। और कहते हैं ना कि साथ में जब वो ये गाने जुड़ जाते हैं और उसके साथ में उनकी एक्टिंग जुड़ जाती है और साथ में वो एक मस्ती से करते हैं अपने स्टाइल, उसके बाद तो हमारा भी दिल करता है झूमने का। तो चलो भैया, झूमने के साथ साथ हम शाम टुल्लू जी को थैंक यू बोलेंगे और उनको बोलेंगे कि आपने बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है और आपने जो फरमाइश किया उसको भी हमने चला दी है। तो आज यश का बर्थडे है, मॉम डैड बर्थडे विश कर रहे हैं और उनके ब्रदर विश कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं छोटे तेरा बर्थडे आया, और उसको कह रहे हैं कि बस आज शाम को थोड़ा सा पार्टी शार्टी करते हैं। तो चलिए भाई, इंजॉय कीजिएगा हमारी तरफ से भी। और साथ में आज बर्थडे है ट्विंस डॉटर्स का, साइश एंड साइश का, आई डोंट नो डॉटर्स हैं या बॉयज़ हैं, बट जिनका भी है हम तो यही कहेंगे विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। सुजीत सीता एंड सिवेश, विद्या एंड रानी विदेशी फैमिली की तरफ से उनको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं हमेशा खुश रहो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो बस थैंक यू सो मच आपका भी। अनिता प्रताप जी जुड़ी हुई हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को, साथ में प्रकाशवंती जी जो कि बेल्जियम से जुड़ी हुई हैं साथ, और कह रही हैं हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना हो गया। तो सच में बताऊँ हमारे यहाँ पर भी बहुत सुहाना हो गया, थोड़ा सा ठंड हो गई है, हमने अपने स्वेटर्स जैकेट्स ब्लैंकेट्स सब निकाल लिए है। तो साथ में यलेश जी भी जुड़े हुए हैं और मस्ती के मूड में हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारा सा ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया और इन्जॉय कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम्स को। तो हम भी आपको कहेंगे कि बिल्कुल देर मत कीजिए, 10:30 बजे से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर, यानी कि केंद्रा मॉल में सैफियर में, और वहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है। तो बस आपकी ही देर है, बस पहुँच जाइए फटाफट से और अपने गिफ्ट्स और बहुत सारे वाउचर्स जीतने का मौका है आपको, तो क्यों ना हो आपके लिए ये स्पेशल डे है, क्योंकि कल है म्यूजिक डे, तो क्यों ना इन्जॉय किया जाए। इन्जॉय कीजिए यहाँ पर अभी गाने और उसके बाद आपको लेके चलेंगे स्टूडियो से बाहर जहाँ पर होंगी गिनीशा।
1: Body Branch RM2 Radio Masti।
2: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ, संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। Happy Music Day from MBC Radio।

0: 101.2 रेडियो मस्ती
1: 10:44 हो चुके हैं, चलते हैं भाई स्टूडियो से बाहर जहां मौजूद हैं हमारी प्यूरी एमबीसी की टीम और साथ में है हमारी प्यारी सी आरजे गिनीशा और जो इस समय है केंद्रा मॉल सैंपियर में। तो चलिए सीधा चलते हैं उनके पास और जानते हैं वहां क्या चल रहा है। हेलो गिनीशा,
2: वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूनम जी, गुड मॉर्निंग टू
1: वेरी गुड मॉर्निंग
2: जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। अभी हम स्टूडियो से बाहर हैं, वी आर एट केंद्रा सैंपियर, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वेल, जैसे कि आपको पता है कि नाउडेज द फीवर ऑफ एमबीसी प्ले जो है 1.0 इट्स ऑन, तो हम सभी स्पेशली जो फुटबॉल लवर्स हैं, सबसे बड़ा जो जश्न शुरू हो चुका है ना वर्ल्ड कप का, और अगर आप भी एक मैच जो है मिस नहीं चाहते हो तो आज ही हम सभी लोगों को कहना चाहेंगे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, सो प्लीज यू कैन डाउनलोड एमबीसी 1.0 का जो ऐप है आज ही, सिर्फ 300 रुपए में वर्ल्ड कप के हर रोमांचक जो मैच है ना उसके लुत्फ उठा सकते हैं, और वो भी अपने मोबाइल पर। कैन यू जस्ट इमेजिन हैविंग वर्ल्ड कप मैच एवरीवेयर, जहां पे भी आप जाओगे आपके पॉकेट में है। जी हाँ, कहीं पे भी और कहीं पे भी। वैसे और भी जो फुटबॉल मैच के अलावा अगर आप चाहते हो तो आप बहुत सारी जो मूवीज़ हैं, एंटरटेनमेंट मूवीज़ भी हैं, जो ब्लॉकबस्टर कलेक्शन है वो भी आप देख पाएंगे एमबीसी 1.0 का जो ऐप है। और अगर आप डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड इट, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे करें, इट्स वेरी इजी, आप यहां पे आ सकते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी फ्रेंडली जो टीम है आपकी मदद के लिए केंद्रा सैंपिया में मौजूद है, तो आप यहां पे आइए। तो देरी किस बात की, आज आप आइए, एमबीसी 1.0 डाउनलोड कर लीजिए और एंटरटेनमेंट का मजा दुगनी हो जाएगी, ट्रस्ट में। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है काम पे जाते हैं एंड बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं कहीं पे भी जाते हैं तो दे हैव टू रश बैक होम जल्दी जल्दी, क्योंकि मैच देखने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि घर पे आपके टीवी आपके रूम में नहीं है, आपकी टीवी आपके ड्राइंग रूम में है और आपको उतना पड़ रहा है जाके देखने के लिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू गेट इट ऑन योर मोबाइल। लेटे लेटे आप घर पे भी हर मज़े ले सकते हो, कहीं पे भी अगर काम पे हो, कहीं पे भी अगर आपको मैच देखनी है, कोई ऑड आवर्स के ऐसे पे मैच हो रहे हैं जहाँ पे आप काम पे हो, सो व्हाई नॉट, यू कैन enjoy each and every match जो MBC Play 1.0 पे आप देख पाएंगे। तो जल्दी से अगर आपको हमें मिलना है, आपको हमारे टीम से मिलना है, आपको हमारी मदद की जरूरत है, so you just have to come here at Kendra Sampia, we are just waiting for you right now.
3: RM2 Radio Musti.

0: RM2 Radio Masti.
1: वल जी थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर एम टू रेडियो मस्ती. थैंक यू सो सो मच हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं आज कैन रॉस पे हम लोगों से मिलने के लिए. तो दोस्तों वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट हर दिल में है और हर गोल में, वैसे हर सेलिब्रेशन और हर मैच में होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल पर. लेकिन वो कैसे हो सकता है? इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. यू आर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे. आप डाउनलोड कर सकते हैं MBC 1.0 का जो ऐप है. बिल्कुल, बस डाउनलोड कीजिए MBC 1.0 ऐप और सिर्फ 300 रुपये में वर्ल्ड कप के सभी मैचेस देखिए लाइव. साथ ही एंजॉय कीजिए ढेर सारी हिट मूवीज, फैमिली एंटरटेनमेंट और नॉनस्टॉप फन. अगर आप सोच रहे हैं कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हमारी जो टीम है यहाँ पे, वी आर वेटिंग फॉर यू एट कैनरा सैंपिया. यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का. तो आप आ जाइए, अपने ऐप इंस्टॉल करवा दीजिए और पूरी मदद आपको मिल रही है हमारी पूरी टीम से. MBC 1.0 एक ऐप अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है जहाँ पे आपको सब चीजें मिल सकती हैं. अभी फिलहाल टेंशन क्यों लेते हो कि मैच चल रही है, इट्स वर्ल्ड कप. अरे इतने सालों के बाद ये वापस आ गया है, लेकिन कैसे देखना है? हम तो काम पे होंगे, हम तो यहाँ पे होंगे, वहां पे होंगे. अरे बिल्कुल टेंशन ना लीजिए. यू कैन कैरी योर वर्ल्ड कप मैच इन योर पॉकेट. इट्स वेरी इजी. सो डाउनलोड करने के लिए आप बस, अगर आपको मदद की ज़रूरत है, यहाँ पे आइए एंड यू कैन जस्ट गेट ऑल द मैचेस ओनली इन 300 रुपीज. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर यू द एंटायर टीम ऑफ MBC RM2 रेडियो मस्ती और जो MBC ऐप डाउनलोड करने का जो टीम है, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेलकमिंग यू. सो आप यहाँ पे आ सकते हैं एट कैनरा सैंपिया.
0: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। टीना, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। बजट 2026-2027 के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीआरपी के पात्र होंगे और उसे प्राप्त कर रहे होंगे, वे नई स्टेट एज पेंशन के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। एसएपी का भुगतान सरकार द्वारा घोषित मीन्स टेस्ट यानी आय परीक्षण के आधार पर किया जाएगा और एसएपी की राशि एक तय मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें बाद में मीन्स टेस्ट लागू किया जाएगा। बजट 2026-2027 के बाद सरकार के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषित फैसलों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आर्यन नवामहरी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के अनुसार बजट ने कई प्राथमिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जिनमें डोमेस्टिक अब्यूज बिल शामिल है। साथ ही अडॉप्शन असिले से जुड़े नए प्रावधान भी जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक वर्ष किए जाने पर भी संतोष व्यक्त किया। और मंत्री पत्रकासिया वादन ने घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हर परिवार को अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए 75,000 रुपये की सहायता की सराहना की। और शिक्षा मंत्री के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में इस बजट का मुख्य ध्यान समावेशन पर है। घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्कूल को और मजबूत करना शामिल है। साथ ही स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है। एफपीएसओयू के अध्यक्ष और एमटीयूसी के उपाध्यक्ष विजय देव बंदन का कहना है कि ये बजट पिछले साल के बजट जैसा ही प्रतीत होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बदलावों और उनके कामकाजी दुनिया पर प्रभाव को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है। उनके अनुसार आने वाले बदलावों के लिए श्रमिकों को तैयार करने के लिए और अधिक ठोस कदमों की आवश्यकता थी। और आसीम के अध्यक्ष जयन चिलम ने कहा कि कुछ कदमों से उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सकता है, हालांकि उनका मानना है कि अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उनके अनुसार बजट दस्तावेज का विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है ताकि सभी घोषित कदमों और उनके उपभोक्ताओं पर वास्तविक प्रभाव को ठोस से ठीक से समझा जा सके। और विश्व कप के बीते मुकाबले में कल रात मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पराजित किया। ब्राज़ील ने आज हैती को 3-0 से पराजित कर मैच अपने नाम किया। आज ही पराग्वे ने तुर्की को 1-0 से हराया। अन्य निर्धारित मैचों में नेदरलैंड्स स्वीडन के बीच मैच आज रात 9 बजे के लिए निर्धारित है और आज रात है 12 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। विदेश में कैरेबियाई देश डोमिनिकन गणराज्य के बाया हुए में एक लग्जरी रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई।

0: इसमें एक इटली के एक पर्यटक की मौत हो गई। लगभग 1700 मेहमानों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम यहाँ क्या टीचर, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: तो चलिए जी चेक योर टाइम, हमारी घड़ी में एग्जैक्टली 11:08 हो चुके हैं. सो विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर लवली लिसनर्स. हैप्पी सैटरडे टू यू. इट्स ऑलरेडी सैटरडे. एक्चुअली देखा जाए दिन इतने जल्दी जल्दी बीता चला जा रहा है और वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुकी है. तो दोस्तों फुटबॉल का जो जुनून है, एंटरटेनमेंट है, उसका डबल धमाका लेकर आ गया है ऑन MBC 1.0 ऐप पर. यानी कि यू कैन वॉच ऑल द मैचेस एनीवेयर एवरीवेयर. हाँ जी, सिर्फ 300 रुपये में वर्ल्ड कप के मैच का लाइव एक्शन देखिए और जब फुटबॉल खत्म हो जाए तब एंजॉय कीजिए ब्लॉकबस्टर मूवीज का शानदार कलेक्शन. बिल्कुल. और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो बस एक छोटी सी विजिट कीजिए. राइट नाउ आवर टीम वी आर एट केंद्रा स्नैपिया, जहां हमारी हेल्पफुल टीम आपके मोबाइल में MBC 1.0 जो ऐप है इंस्टॉल करने के लिए मौजूद है. तो मिस मत कीजिए ये शानदार मौका. जो MBC 1.0 है उसके साथ हर दिन बनाइए एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट. और वैसे बहुत सारे जो हमारे फुटबॉल लवर्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, दे आर सो हैप्पी, बोलते हैं कि हाँ जी ये आप काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हम कहीं पे भी होते हैं तो हम अपना मैच देख पा रहे हैं, क्योंकि और आवर्स में भी बहुत सारे मैचेस होते हैं. एक्चुअली इट्स अ क्रेज, यू नो, जब वर्ल्ड कप आता है इतने सालों के बाद तो आप अपने फैमिली के साथ, अपनों के साथ ये एंजॉय करना पसंद करोगे. सो जस्ट इमेजिन इफ यू आर एट वर्क और आप सोच रहे हो कि मैं ये मैच कैसे मिस करूँ, और इट्स योर फेवरेट टीम, योर फेवरेट कंट्री प्लेइंग, तो आप सोचेंगे कि कैसे मैच हम देख सकते हैं. इट्स वेरी इजी, 300 रुपये में आप हर मैच का मजा ले सकते हैं. और उसके बाद बहुत सारे एंटरटेनमेंट, बहुत सारे और भी फीचर्स हैं हमारे ये जो MBC 1.0 का जो ऐप है. और उससे ज़्यादा ये भी है, बहुत सारे लोग जो होते हैं बोलते हैं कि हाउ वी कैन लिसन टू योर रेडियो ऑनलाइन. सो MBC 1.0 का जो ऐप है, अगर आप वो डाउनलोड कर लेंगे सो इट्स गोना बी वेरी इजी. यू कैन कैरी ईच एंड एवरी चैनल इन योर पॉकेट. सो इट्स एन ओकेजन नॉट टू मिस. यहाँ पर हमारे सारे टीम्स जो है मौजूद हैं, आप आ सकते हैं. यू कैन मीट अस राइट नाउ एंड गेट योर ऐप राइट नाउ ऑन योर मोबाइल. सो जल्दी से डू जॉइन अस एट केंद्रा सेंट पियर.
1: यू आर लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: बहुत ही खूबसूरत गाने तराने के साथ हमेशा हम आपका साथ देते रहते हैं ऑन आवर रिम टू रेडियो मस्ती। जी हां दोस्तों, आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली एंजॉयिंग दीस लवली लवली गाने जो स्पेशली आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, फिलहाल के लिए इट्स मी निशान द माइक, वी आर आउटसाइड द स्टूडियो, वी आर राइट नाउ एट केंद्रा सेंट पियर। अरे मेरी जान, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? इट्स वेरी इजी, वी आर हेल्पिंग ईच एंड एवरी लिसनर्स जो जिनको प्रॉब्लम हो रही है अपने ऐप को डाउनलोड करने के लिए। कौन सी ऐप? वेरी वेरी इजी, ये MBC 1.0 जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। यू हैव टू गेट इट ऑन योर मोबाइल राइट नाउ राइट अवे सो दैट यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी मैच ऑफ वर्ल्ड कप। सो यस, हमने तो बोल दिया है जो फुटबॉल लवर्स हैं वो तो अपने आप के यहाँ पे आ जाएंगे हम लोगों से मिलने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक भी गोल मिस हुआ तो दोस्तों की बातों में पीछे रह जाओगे, सोचो इस बारे में। तो इसीलिए आज ही डाउनलोड कीजिए MBC 1.0 का जो ऐप है और सिर्फ ओनली 300 रुपीज में आप देखिए वर्ल्ड कप की सारे मैचेस। कुछ तो हो चुके हैं, अभी तो शुरुआत है मेरी जान, बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। तो और फुटबॉल के बाद एंटरटेनमेंट का डोज भी आप कंटिन्यू कर रखिए ब्लॉकबस्टर्स मूवीज के साथ। और डाउनलोड में अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारी जितने भी टीम है, वी आर राइट नाउ एट केंद्रा सेंट पियर, वी आर वेटिंग फॉर यू, आपके इंतजार में बैठे हैं। आज ही आइए और MBC 1.0 फैमिली का हिस्सा बन जाइए एंड यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी मूवीज एंड मैचेस ऑन MBC 1.0 का जो ऐप है। और वैसे ही आपको तो पता है कि कल तो म्यूजिक डे है और आई नो हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, हमेशा हमें सुनते रहते हैं 24 घंटे। और कभी कभी ऐसी जगहों पर आप जाते हैं जहाँ पर आप अपने रेडियो को तो ऑन नहीं कर सकते हो, तो क्या करें, आप अपने मोबाइल में भी हमें सुन सकते हो, यानी कि MBC का जो 1.0 ऐप है उसके ऊपर भी यू कैन लिसन टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड एवरी चैनल। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं सो दिस इज द इजीएस्ट वे। तो जल्दी से आप आइएगा जरूर, वी आर वेटिंग फॉर यू एट केंद्रा सेंट पियर।
0: RM2 रेडियो मस्ती

0: RM2
1: Radio must be.
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल खूबसूरत म्यूजिक के साथ हम हमेशा आप लोगों का साथ देते रहते हैं। टुमारो वी गोना सेलिब्रेट म्यूजिक डे, तो आप सभी लोगों को हमारी पूरी म्यूजिक यानी कि RM2 मस्ती टीम की तरफ से आई जस्ट वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ हैप्पी म्यूजिक डे। जी हाँ दोस्तों, और म्यूजिक के साथ साथ आपको तो पता है कि एंटरटेनमेंट को लेकर हम हमेशा आप लोगों का साथ देते रहते हैं, एंड नॉट ओनली ऑन रेडियो MBC, इट्स फॉर TV एज वेल। और अगर TV की बात कर रही हैं, अगर आप हम लोगों को अपने पॉकेट में कैरी करना पसंद करोगे, सो इट्स वेरी easy, you just have to download the app, जी हाँ MBC 1.0। यानी कि आज के लिए actually I have a खास invitation मॉरिशस के सभी फुटबॉल लवर्स के लिए। आइए आप हम लोगों से मिलिए, हमारी जो टीम है वी आर एट केंद्रा सैंपिया, और हमारी जो टीम है मिलकर अपने मोबाइल आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करवा सकते हैं MBC 1.0 का जो ऐप है, डाउनलोड करवा दीजिए अभी के अभी। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ईजी स्टेप है। वैसे अगर कोई भी अगर आपको परेशानी हो रही है, so you can join the team right now, जहाँ पे हम आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आइए right now आज के अंदर सैपिया और हमारी टीम से मिलिए, सिर्फ ₹300 में वर्ल्ड कप की सभी मैचेस का लाइव मजा उठाइए, और साथ ही एंजॉय कीजिए एक शानदार मूवी लाइब्रेरी। येस यू हर्ड मी राइट, एंड इवन यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी चैनल ऑफ आवर म्यूजिक यानी कि रेडियो चैनल्स भी ऑन आवर MBC 1.0 का जो ऐप है। हम आपकी मदद के लिए यहीं पर मौजूद हैं, बस मोबाइल लीजिए और आ जाइए। वैसे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे पेमेंट होगी ₹300 की। यू कैन पे बाय जूस, यू कैन पे बाय योर डेबिट कार्ड, यू कैन पे बाय ब्लिंक। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप यूज कर सकते हैं टू पे फॉर योर ₹300 एंड गेट ऑल योर मैचेस। सो MBC प्ले 1.0 डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से आप अपने सारे वर्ल्ड कप मैचेस देख पाएंगे कहीं पे भी। वेल यू कैन बी एट वर्क, यू कैन बी हियर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, बस में बैठे बैठे, मेट्रो में बैठे बैठे, अगर टैक्सी में बैठे हो आप सोच रहे हो कि ओ हो मैंने तो मैच मिस कर ली, मुझे देरी हो गई घर पहुंचने में, यू जस्ट हैव नॉट टू वरी, यू हैव टू जस्ट गेट इट ऑन योर मोबाइल MBC प्ले 1.0। तो MBC हियर प्ले 1.0, फुटबॉल भी, मूवीज भी, एंटरटेनमेंट भी, सब कुछ मिलेगा आपको वहीं पे। सो इट्स एन ओकेजन नॉट टू मिस। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने के लिए, वी हैव द एंटायर टीम वेटिंग फॉर यू राइट नाउ एट केंद्रा सैंपिया।
1: You're listening to RM2, a radio must see.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: तो शैली जी, आज मौसम काफी सुहाना है. द सन इज शाइनिंग सो ब्राइट एंड यस, वी हैव गॉट यू द सनशाइन म्यूजिक राइट नाउ ऑन RM2 रेडियो मस्ती. सो आई जस्ट विश कि एवरीवन इज फीलिंग गुड एंड इस खूबसूरत दिन का आप फुल ऑन मजा ले रहे हैं. क्यों ना लें, क्योंकि ऑन RM2 रेडियो मस्ती हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे वाले म्यूजिक जो आपको वीकेंड वाली वाइब जरूर दिलाते हैं. और अगर वीकेंड की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, अगर आप कहीं ऐसे आप घर से निकल के कहीं पर जा रहे हो या ऑलरेडी यू आर ऑन द रोड, आप यहाँ पर आ सकते हैं. Join us, the RM2 Radio Masti ka jo team hai and MBC team hai at Kendra Saint-Pierre. Yes, we are here right now kyunki hum aap logon ki madad mein madad ke liye baithe hain. Why? And just to remind you ki MBC Play 1.0 ka jo app hai wo launch ho chuki hai aur bahut sare logon ne already download kar liya hai aur bahut sare log jo hai abhi bhi ye download karna baki hai. Download kar lijiye and enjoy kar lijiye bahut sare hit movies, bahut sare aapko isme वर्ल्ड कप के मैचेस भी दिखेंगे. बिल्कुल, तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वर्ल्ड कप का जो एक्साइटमेंट है ना, वो डबल हो चुका है, क्योंकि यू कैन कैरी योर मैचेस विद यू इन योर पॉकेट. MBC Play 1.0 का जो ऐप है डाउनलोड कर लीजिए और सिर्फ ओनली 300 रुपीज़ में हर मैच लाइव आप देख पाओगे. और जब फुटबॉल का एक्शन ख़त्म हो तब एंजॉय कीजिए नॉनस्टॉप मूवीज़ और एंटरटेनमेंट भी. हमारी टीम जो है वो आज केंद्र सैपिया, यस हम यहाँ पे है आप लोगों की हेल्प करने के लिए ताकि आप डाउनलोड कर पाए. बहुत सारे लोग जो हैं आ रहे हैं बोल रहे हैं कि दे आर हैविंग सम इश्यूज कि कैसे डाउनलोड करें. अरे इट्स वेरी इजी, आप बस अपने मोबाइल के साथ यहाँ पे पहुँच जाइए. वी हैव अवर टीम जो हेल्प कर रहे हैं डाउनलोड करवाने में. एंड पेमेंट कैसे होगी, 300 रुपये जो आप हर मैचेस को देख सकते हैं. इट्स वेरी इजी, आप जूस यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ ब्लिंक, यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड्स एंड ऑल. तो चलिए जी, जल्दी जल्दी कीजिए फुटबॉल का मजा, सिर्फ देखिए नहीं जिए हमारे साथ MBC Play 1.0 की साथ. अरे दोस्तों, अगर आप मोबाइल में MBC है प्ले 1.0 ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, सो जस्ट कम हियर एट केंद्र सैंपियर, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर यू. और पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे आएंगे तो अच्छे अच्छे म्यूजिक का मज़ा भी ले सकते हैं. यू कैन मीट आवर टीम एंड एन्जॉय एंड हैव अ गुड टाइम विद अस. सो वी आर वेटिंग फॉर यू राइट नाउ एट केंद्र सैंपियर.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: मानो या ना मानो हम तो फुल ऑन मजा ले रहे हैं ऐसे खूबसूरत गानों का जो हम आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग। यस माय डियर लवली पीपल, जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे आप काम पे हो, घर पे हो, बस में हो, टैक्सी में हो, मेट्रो में हो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो तो फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। वैसे क्या आप वर्ल्ड कप का जो एक जो मैचेस हैं एक भी मैच नहीं मिस करना चाहते हो तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। बिल्कुल, अगर वर्ल्ड कप के एक

0: कभी मैच मिस हो गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, स्पेशली फुटबॉल लवर्स के लिए। क्या आप चाहते हैं कि हर गोल, हर पेनल्टी और हर सेलिब्रेशन आपके मोबाइल पर हो? तो इट्स वेरी इजी। तो आज ही जुड़ जाइए mbcplay.1.0 के साथ, सिर्फ 300 रुपए में आप वर्ल्ड कप के सभी मैचेस का मजा उठा सकते हैं, जहां चाहे जब भी चाहे। बिल्कुल जी, यू हैड इट राइट, एनीवेयर यू कैन जस्ट एंजॉय योर मैचेस ऑन योर मोबाइल, सो यू कैन कैरी वर्ल्ड कप इन योर पॉकेट। तो आज ही जुड़ जाइए mbcplay1.0 के साथ। और सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, फुटबॉल ही क्यों, हम तो कहते हैं कि एमबीसी जो प्ले है 1.0 पर आपको मिलेगा ढेर सारी ब्लॉकबस्टर्स मूवी भी, फैमिली मूवीज, एक्शन, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट का पूरा खजाना है मेरी जान। तो अगर आपको ऐप जो है डाउनलोड करने में थोड़ी सी मदद चाहिए, कुछ परेशानियां आपको हो रही है कि कैसे करें, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट वेल, सो इट्स वेरी इजी, वी हैव अ डेडिकेटेड टीम राइट नाउ वेटिंग फॉर यू एट केंद्रा सैंपिया। देखा जाए तो एक्चुअली पर वीक हमारे जो टीम है, हम मॉरिशस के कोने कोने में जा रहे हैं ताकि सभी लोगों को ये मदद हम दें और आप लोगों के मोबाइल तक पहुँचा दें mbcplay.1.0। तो आप आइए फिलहाल के लिए, आज तो वी आर एट केंद्रा सैंपिया राइट नाउ और आपका इंतजार है, आप अपना मोबाइल लेकर आइए और हम आपके लिए ऐप इंस्टॉल करेंगे और सारी जानकारी भी आपको दे देंगे। इस वर्ल्ड कप सीजन एंटरटेनमेंट को बनाइए और भी खास, सिर्फ एमबीसी के प्ले 1.0 के साथ। यस, वी आर राइट नाउ एट केंद्रा सैंपिया।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

आप लोगों का साथ देने के लिए जस्ट बिकॉज हम आप लोगों की मदद करना चाहते हैं. यस, आपको तो पता ही है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्त, और आप पीछे क्यों रह जाए. हम तो चाहते हैं कि आप भी अपग्रेड हो जाए लाइफ में, और आप डाउनलोड कर लीजिए हमारा जो ऐप वेरी वेरी गुड ऐप, जो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं. इट्स एमबीसी अप्ले 1.0. सो फुटबॉल के जो लवर्स हैं, यस, मॉरिशस के जो फुटबॉल लवर्स हैं, एक्चुअली ये मैसेज फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है. वर्ल्ड कप का जो माहौल है ना, वो चारों तरफ है और हर मैच एक्साइटमेंट से भरा हुआ है. ऐसे में एक भी मैच मिस करना मतलब बहुत कुछ मिस करना होता है. ये सिर्फ जो फुटबॉल लवर्स हैं वो ही समझ सकते हैं इस बात को. लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप एक भी मैच मिस नहीं करोगे अगर आप एमबीसी प्ले 1.0 को डाउनलोड करोगे. जी हाँ दोस्तों, बस 300 रुपये में आप डाउनलोड कीजिए जो एमबीसी 1.0 है, एमबीसी प्ले 1.0, और

0: वर्ल्ड कप के सभी मैचेस देखे अपने मोबाइल पर, और बाकी तो एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारी ब्लॉकबस्टर्स मूवी हैं, अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इवन यू कैन लिसन टू रेडियो लाइव ऑन दिस ऐप। तो चलिए दोस्तों, और जब फुटबॉल ख़त्म हो जाए तब भी एंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि MBC प्ले 1.0 पर आपके लिए है एक ज़बरदस्त मूवी लाइब्रेरी, जहाँ हर मूड के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो और आपको थोड़ी सी मुश्किलें हो रही हैं, आप अपने आप कोशिश कर रहे हो बट स्टिल यू कांट गेट इट, तो फिकर की कोई बात नहीं है। हमारी टीम जो है अभी के लिए वी आर प्रेजेंट एट केंद्रा सैंपिया, और एक्चुअली हम मौजूद हैं और आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आइए MBC प्ले 1.0 डाउनलोड कर लीजिए और एंटरटेनमेंट को अपने साथ घर ले जाइए अपनी पॉकेट में। कोई भी मैच हो, कोई भी मैच एनी टाइम, आधी रात को या पूरे जैसे दिन दहाड़े अगर आप काम कर रहे हो या एट योर वर्क प्लेस एंड यू वुड लव टू वॉच द मैच एंड चेक ऑन द स्कोर्स एंड ऑल, इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू। तो जल्दी से आएगा ज़रूर। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, आप डाउनलोड करवा रहे हो हमारे टीम से, सो वी हैव सो मेनी गिफ्ट्स एज वेल टू गिव अवे टू यू। सो जस्ट गेट MBC प्ले 1.0 ऑन योर मोबाइल एंड यू कैन विन लॉट ऑफ गिफ्ट्स एज वेल। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल। और साथ में हम आपको बस इतना कहेंगे कि इट्स अ रेंडेवू नॉट टू मिस, द एंटायर टीम ऑफ MBC एंड इवन ऑल टू रेडियो मर्सी, वी आर वेटिंग फॉर यू एट केंद्रा सैंपियर।
1: यू आर लिसनिंग टू RM2 रेडियो मर्सी।

0: brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Masti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं टीना से संक्षिप्त समाचार. टीना, आपको नमस्कार.
7: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. पेंशन सुधार प्रणाली लगातार पर रही है. विशेषज्ञ आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पहले ही स्टीयरिंग कमेटी को सौंप दी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कर रहे हैं. 2026-2027 के बजट प्रस्तुति में सरकार प्रमुख ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन SAP रखा जाएगा. विशेषज्ञ आयोग की शुरुआती सिफारिशों के विपरीत अब नौकरी होना पात्रता की शर्त नहीं होगी. जिन लोगों की मासिक आय 14,000 से कम है, उन्हें पूरा स्टेट एज पेंशन मिलेगी. इस सीमा से ऊपर आय होने पर भी लाभार्थियों को पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन उसका स्तर धीरे धीरे कम किया जाएगा. ये कटौती 50,000 तक की आय तक लागू होगी. इस सुधार पर प्रतिक्रिया देते हुए जनरल वर्कर्स फेडरेशन के प्रतिनिधि अश्विन गुदाय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्थिति को सही किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस योजना के लागू होने और इसके लंबे समय के असर पर नजर रखेंगे. और बजट 2026-2027 के बाद सरकार के सदस्यों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषित फैसलों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी. आर्याना वामारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेंडर इक्वालिटी मंत्री के अनुसार बजट ने कई प्राथमिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जिनमें डोमेस्टिक अब्यूज बिल भी शामिल है. और मंत्री पात्रिक कासियावादन ने कहा कि ऊर्जा भी इस बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है. घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हर परिवार को अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. और शिक्षा मंत्री के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में इस बजट का मुख्य ध्यान समावेशन पर है. घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन ने स्कूल को और मजबूत करना शामिल है. साथ ही स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है. जबकि बजट 2026-2027 के बाद कॉन्फेडरेशन डी ट्रैवलर्स डू सेक्टर प्राइवेट CTSP ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. CTSP का कहना है कि ये बजट आम लोगों की वास्तविक जरूरतों से दूर है. यूनियन ने खास तौर पर पेंशन रिफॉर्म और मीन्स टेस्ट पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि इससे बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति साबित करनी पड़ेगी, जो उनके अनुसार सही नहीं है. पिछले में 63 साल की एक महिला कल शाम अपने घर में मृत पाई गई. उनकी भतीजी, जो सियांगन में ऊपर रहती है, ने पुलिस को बताया कि घर में CCTV कैमरे लगे हैं. फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति महिला के साथ दिखाई दिया, जो उससे बात कर रहा था. पुलिस ने इस मामले में फाउल प्ले की आशंका जताई है. मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है. और विदेश में कैरेबियाई देश डोमिनिकन गणराज्य के बाया हीवे में एक लग्जरी रिसोर्ट में भीषण आग लग गई, जिसमें इटली के एक पर्यटक की मौत हो गई. लगभग 1700 मेहमानों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया. विश्व कप के बीते मुकाबले में कल रात मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पराजित किया. ब्राजील ने आज हैती को 3-0 से पराजित कर मैच अपने नाम किया. और आज ही पराग्वे ने तुर्की को 1-0 से हराया. अन्य निर्धारित मैचों में नेदरलैंड्स स्वीडन आज रात 9 बजे खेला जाएगा. और आज रात 12 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. हमें आगे आ दीजिए. नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
8: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज़.

हंसी हो या गम ये रहता है साथ, संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Wishing all music lovers a happy music day. कल हम मनाएंगे music day. जी हाँ दोस्तों, music ही सब कुछ है. music जीवन देता है. music आपकी बेरंग सी जिंदगी में रंग भी भर देता है. yes, music is life. music हो तो सब कुछ है. and on RM2 Radio Masti हम आप लोगों के लिए हमेशा according to all choices every kind of music play करते हैं. so फिलहाल के लिए just check your time. 12:10 हो चुके हैं. wishing all of you once again a very good afternoon. नमस्कार जी, की निशा का प्रणाम. you are welcome on RM2 Radio Masti. फिलहाल के लिए हम स्टूडियो के बाहर हैं. वी आर एट सेंट पियर केंद्रा. यस, केंद्रा सेंट पियर में अभी के लिए वी आर वेलकमिंग ऑल आवर लिसनर्स, ऑल आवर लवली पीपल जो हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं. इट्स वेरी इजी. अगर आपसे नहीं हो रहा है, यू जस्ट हैव टू कम हियर एंड गेट योर ऐप ऑन योर फोन. इट्स MBC प्ले 1.0. जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल के दीवानों तैयार हो जाइए, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है शुरू हो चुकी है. लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैच इतने बजे कैसे देखेंगे? अगर दिन में हो तो हम काम पे होंगे, आधी रात को होंगे तो उठ के जाना पड़ेगा टीवी देखने के लिए. ड्राइंग रूम में ठंड का मौसम है, ब्लैंकेट के नीचे से निकलना पड़ेगा. अरे ये इतना टेंशन आप क्यों ले रहे हो? हम लोग हैं ना आप लोगों के लिए, आपकी भलाई सोचने के लिए. सो वॉट यू हैव टू डू, जस्ट गेट योर ऐप यानी कि MBC प्ले 1.0 ऑन योर मोबाइल. वर्ल्ड कप का असली मज़ा तभी है जब हर मैच आप लाइव देख पाते हैं, अपनी फेवरेट टीम, अपने फेवरेट कंट्री को हर पल सपोर्ट करने के लिए. जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज ही MBC प्ले

0: 1.0 डाउनलोड कर लीजिए और सिर्फ 300 रुपीज में यू कैन वॉच बाकी के जितने भी ये मैचेस हैं एंड आप आनंद ले सकते हैं सारे मैचेस का आराम से। बिल्कुल जी, और जब फुटबॉल का एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाए उसके बाद तब एमबीसी प्ले 1.0 पर अवेलेबल शानदार मूवीज के साथ अपना एंटरटेनमेंट जारी रखिए। सो डाउनलोड करना नहीं आता है, इट्स वेरी इजी, आप यहाँ पे आ जाइए अगर आसपास में हो। यू कैन हियर अस राइट नाउ, सो जस्ट जॉइन अस एट केंद्रा सेंट पियर। यस, हम और जो हमारी टीम है आपके स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मोबाइल लेकर आइए और कुछ ही पलों में यू कैन गेट, कुछ ही स्टेप्स में यू कैन गेट एमबीसी प्ले 1.0 की दुनिया से आप जुड़ सकते हैं। सो फुटबॉल का जुनून, मूवीज का मजा और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही जगह पर, इट्स एमबीसी प्ले 1.0 पर। सो जल्दी से जस्ट जॉइन अस एट केंद्रा सेंट पियर।
1: You're listening to RM2 or Radio Masti.

खूबसूरत गाने तराने के साथ हम हाजिर हैं आज केंद्रा सैपिया। जी हाँ दोस्तों, सच अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ सैटरडे आफ्टरनून एंड वी हैव सो मेनी पीपल हु आर प्रेजेंट राइट नाउ एट केंद्रा सैपिया। एक्चुअली हमारे जो टीम है आज हम यहाँ पे आ गई है क्या करने के लिए, जस्ट टू हेल्प ईच एंड एवरीवन टू हैव एमबीसी प्ले 1.0 ऑन देयर मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद की बात ये है कि अगर आपके मोबाइल पे आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0 और आप नहीं कर पा रहे हो, सो वी हैव द एंटायर टीम टू हेल्प यू राइट नाउ राइट अवे। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए जब पूरी दुनिया फुटबॉल के रंग में रंग चुके हो और आप सोच रहे हैं कि मैं पीछे रह गया हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं काम पे हूँ, मैं मैचेस नहीं देख पा रहा हूँ एंड आई एम नॉट बीइंग एबल यू नो टू हैव दिस कनेक्शन विद माय कजन्स माय फैमिली, या हो सकता है आपकी बीवी को भी फुटबॉल देखना अच्छा लगता है। सो एक्चुअली क्या होता है, जब मैचेस होते हैं तो बैटिंग होते हैं ना एक दूसरे के बीच में कि हाँ अभी हम मैच देख रहे हैं, देखो गोल हमारे ही कंट्री जीतेंगे, ये सारी चीज़ें, ये जितने भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होते हैं ना, ये फीलिंग तभी आप ले पाओगे जब आप देखेंगे मैच को। लेकिन काम पे भी तो जाना है, काम भी करना है, सब कुछ करना है, तो कैसे करोगे। इसलिए हम आप लोगों के लिए एमबीसी प्ले 1.0 लेकर आए हैं। जब भी आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आप सिर्फ 300 रुपीज पे करो और जी हाँ यू कैन वॉच द एंटायर वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं ऑन योर मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, बस एमबीसी प्ले 1.0 ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 300 रुपीज में वर्ल्ड कप के सभी मैचेस का आप मजा ले सकते हो। और एंटरटेनमेंट यही खत्म नहीं होता है, जैसे कि आपको पता है आप लोग तो म्यूजिक लवर्स हैं, सो यू कैन गेट ऑल योर रेडियो स्टेशन द

0: channels, even on MBC Play 1.0, and you can even watch a lot of movies. Dekha jaye to usme bahut sare segments hain, bahut sare entertainment segments hain, and you can enjoy each and everything. Ji haan dosto, download karne mein agar aapko help chahiye, so you just have to join us right now at Kendra Saint Pierre. वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे MBC का जो टीम है, थ्रू आउट द होल वीक वी आर गोइंग अराउंड द मॉरिशस आप लोगों की मदद करने के लिए, सो दैट कोई पीछे ना रह जाए, कि ये ना बोले कि मेरे मोबाइल में तो ऐप नहीं है. अगर आपसे ऐप डाउनलोड हो रही है तो आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए. अगर नहीं हो रहा है सो आप हमारी मदद ले सकते हैं. और डाउनलोड करने के लिए सीधी सी बात है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन योर ऐप स्टोर एंड डाउनलोड कर लीजिए MBC Play 1.0. तो हमारी जो टीम है फिलहाल के लिए, हम प्रेजेंट है एट केंद्र सेंट पियर एंड इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों का. आइए हम बस आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करेंगे और आप तुरंत एंटरटेनमेंट की दुनिया का हिस्सा बन जाओगे. MBC Play 1.0 हर दिल का एंटरटेनमेंट पार्टनर है हम, और ये हम लोगों ने साबित भी कर लिया है. तो जल्दी से आ जाइए. और बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं कि पेमेंट कैसे करना है. इट्स वेरी इजी. यू कैन यूज़ जूस, यू कैन यूज़ ब्लिंक, यू कैन यूज़ योर कार्ड. ये बहुत सारे वेज हैं सो दैट यू कैन डू योर पेमेंट एंड गेट योर ऐप राइट नाउ ऑन योर मोबाइल. तो चलिए जी, एक और चीज़ फिलहाल के लिए हम सभी को इनवाइट करना चाहेंगे जो अभी हमें सुन रहे हैं राइट नाउ इन द शॉपिंग मॉल. जी हाँ, टू एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर इन द शॉपिंग मॉल, जो फोर सबसे चार पहले लोग आएंगे हमारे पास और हमें ये दिखाएंगे कि उनके मोबाइल में ऑलरेडी उन्होंने डाउनलोड कर लिया है, यू ऑलरेडी हैव द MBC Play 1.0 का जो ऐप है. अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, यू हैव टू शो इट टू मी राइट नाउ ऑन योर मोबाइल, एंड ऑफ कोर्स यू गोना गेट अ गिफ्ट. वी हैव अ गुडी बैग टू गिव अवे टू यू माय डियर. तो जल्दी से आप आइएगा और हमें दिखाइएगा कि आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है ये ऐप अपने मोबाइल में, MBC Play 1.0, and you can be the lucky winner, and you're gonna win a goodie bag offered to you by MBC. So thank you so much. Our bus aayega zarur at Kendra Saint Pierre to join us right now.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Colorim 2.
1: Radio Musti.
2: I can really hear, feel the good vibes on RM2 Radio Musti Johano. So thank you so much for choosing us as your radio partner. Good, good music is at Ginesha or MBC team. We are here right now at Kendra Saint-Pierre. Yes, about sare log aare pooch rahe ki aare aap log yahan pe kya kar rahe ho. Actually, we are here to help you to get your app on your mobile. Kis app ki baat hum kar rahe? It's MBC Play 1.0. Johano, so agar football ka junoon ho ya weekend movie marathon, MBC Play 1.0 के साथ एंटरटेनमेंट कभी रुकता नहीं है. सिर्फ 300 रुपए में वर्ल्ड कप के सभी मैचेस आप देख सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं और ढेर सारे हिट मूवीज भी. जी हाँ, और सबसे बड़ी बात तो है, अगर आप डाउनलोड करना नहीं आता या कुछ मुश्किलें यू आर फेसिंग, तो सीधा केंद्रा सैंपिया आ जाइए. हमारी टीम आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करेंगे और हर सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा. तो इंतज़ार किस बात का मेरी जान, आप यहाँ पे आ जाइए. आज ही एमबीसी प्ले 1.0 डाउनलोड कीजिए और दुनिया भर के एंटरटेनमेंट अपनी उंगलियों पर लीजिए. दीज लवली मूवीज को भी आप एंजॉय कर सकते हैं ऑन योर ऐप. और फिलहाल के लिए चलिए जी, टू ऑल दोज लवली पीपल जो यहाँ के अंदर सैंपिया में हैं, हेलो हाय हेलो, आप कहाँ जा रहे हो? एक मिनट, नहीं आपको गिफ्ट नहीं चाहिए? I can give you a gift. Do you have MBC Play on your mobile? Aapka naam kya hai? What's your name?
3: I'm Andy.
2: Andy, do you have MBC Play on your mobile? Do you know we have an app?
3: Yes, I have.
2: Show me. If you show me right now, I'm going to give you the gift. The goodie bag is all yours, bro. And yes, if you have your MBC Play on your mobile, exactly, he got MBC Play and this is for you. Congratulations and thank you so much, and keep on watching us and following us. And yes, you can watch your World Cup matches as well. And of course, if we have other people who would love to have their MBC Play on their mobile, aap aayega zarur. We have our team here right now at Kendra Saint-Pierre welcoming you and helping you to get your app right now, right away on your mobile. So do join us, hamari puri team RM2 Radio Musti ka jo team hai aapka intezar kar rahe hain. We are at Kendra Saint-Pierre.
1: You're listening to RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Wish you all a very good afternoon. I want to check your time. It's 1 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ आपको नमस्कार
4: नमस्कार 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का बजट 2026-2027 में सरकार ने पेंशन व्यवस्था में नए बदलावों की घोषणा की कल 1 जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन रखा जाएगा सरकार के अनुसार 14,000 रुपए से कम मासिक आय वाले लोगों को पूरी पेंशन मिलेगी इससे अधिक आय वालों को पेंशन मिलती रहेगी लेकिन उसकी राशि आय के अनुसार धीरे धीरे कम होगी वर्तमान लाभार्थियों में से 90% से अधिक लोग योजना के दायरे में बने रहेंगे बजट में प्रस्तावित पेंशन सुधारों को लेकर सिटी एसपी ने अपनी चिंता व्यक्त की है संगठन का मानना है कि आय के आधार पर पेंशन तय करने की व्यवस्था बुजुर्गों के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है सिटी एसपी ने सार्वभौमिक पेंशन व्यवस्था को बनाए रखने की मांग दोहराई है और उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव भी दिया है बजट के बाद आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में सरकार के मंत्रियों ने विभिन्न कदमों का स्वागत किया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओयान नावामाही ने कहा कि महिलाओं और परिवारों से जुड़ी कई प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया गया है वहीं ऊर्जा मंत्री पैट्रिक असियावदन ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजनाओं का उल्लेख किया शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने शिक्षा सेक्टर में समावेशन और स्कूलों में उत्पीड़न के खिलाफ कदमों पर जोर दिया असीम के अध्यक्ष जयंत चलब ने बजट के कुछ उपभोक्ता अनुकूल घोषणाओं का स्वागत किया हालांकि उनका कहना है कि बजट का विस्तृत अध्ययन किए बिना अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी और जुआना बिहोशी ने बजट पर निराशा व्यक्त की है उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई से जूझ रही आबादी की अपेक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त कदम नहीं प्रदान किए गए हैं और कई घोषणाएं उम्मीद से बेहद कम हैं बिजनेस मॉरिशस ने बजट की प्रमुख आर्थिक कदमों का किया स्वागत संगठन का मानना है कि सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास सकारात्मक दिशा में हैं और साथ ही उसने बजट के कदमों को प्रभावी रूप से लागू किए जाने का के महत्व पर भी जोर दिया है बजट में महिलाओं से जुड़े नए कदमों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है विशेष रूप से मासिक धर्म अवकाश और मैटरनिटी लीव को 1 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को महिलाओं के कल्याण और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जेंडर लिंक्स ने बजट में महिलाओं और लैंगिक समानता से संबंधित कदमों का स्वागत किया संगठन का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा से निपटने के लिए घोषित कदम उत्साहजनक है विदेश स्तर पर मध्य पूर्व युद्ध की समाप्ति पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं इसराइल और हिजबुल्ला ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: मकान बुआशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंस्टांस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: RM2 Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: वेल गाइस चेक योर टाइम, हमारी घड़ी में 1:12 हो चुके हैं. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती ऑन दिस ब्यूटीफुल सैटरडे आफ्टरनून. वी आर राइट नाउ ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम केंद्रा सेंट पियर विद द होल एमबीसी टीम. एक्चुअली वी आर हियर टू हेल्प यू माय डियर लवली पीपल टू गेट योर एमबीसी प्ले 1.0 का जो ऐप है आपके मोबाइल पे. एक्चुअली इफ यू आर अ फुटबॉल लवर, आपको मूवीज भी देखना अच्छा लगता है, सो व्हाई नॉट यू कैन जस्ट कैरी एवरीथिंग आपके साथ इन योर पॉकेट. इट्स सो ईजी. इतने सारे मैचेस, वर्ल्ड कप चल रहा है और यू कैन गेट एवरीथिंग एनी टाइम एनी वेयर जस्ट इन योर पॉकेट. यानी कि अगर आप डाउनलोड करोगे इस ऐप को एंड यू वुड लव टू वॉच ऑल द मैचेस लाइव फ्रॉम योर वर्क प्लेस, अगर शादी में जा रहे हो, जैसे शादी का सीजन चल रहा है, अगर आप शादी में जा रहे हो, सो यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग. आप अपने वर्ल्ड कप मैचेस ले जा सकते हो अपने जेब में एंड यू कैन वॉच इट एनी टाइम विथ योर फ्रेंड्स योर फैमिलीज. तो चलिए जी, जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए ये ऐप एमबीसी प्ले 1.0 एंड आप पे कर सकते हो 300 rupees ओनली टू वॉच ऑल द मैचेस. सिर्फ 300 rupees में आप पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस देख सकते हैं. शुरुआत तो हो चुकी है, ये जुनून जारी रहेगा और अगर आपको देखना है सो व्हाई नॉट डू गेट इट राइट नाउ ऑन योर मोबाइल. और साथ में आपको याद दिला दे, वी हैव अ फुल लाइब्रेरी ऑफ एंटरटेनमेंट मूवीज. यानी कि अगर आपको ड्रामा देखना है, आपको लव स्टोरीज रोमांस स्टोरीज देखना है, रोमांटिक वाले मूवीज देखना है, बॉलीवुड हो या वेस्टर्न मूवीज देखना है, कुछ भी एनीथिंग यू कैन जस्ट गेट इट ऑन योर मोबाइल एंड यू आर जस्ट वन स्टेप अवे. आप ज़्यादा दूर नहीं है. अगर आपको डाउनलोड करना आता है तो डाउनलोड कर लीजिए. वैसे अगर आपको दिक्कत हो रही है, यू डोंट नो हाउ टू जस्ट गेट इट ऑन योर मोबाइल, दिस इज़ वाई वी आर हियर. ये जो एमबीसी टीम है, हमारे RM2 रेडियो मस्ती का जो टीम है, हम पूरे मॉरिशस में थ्रू आउट द होल वीक जगह जगह पे जाते हैं सो दैट वी कैन मेक इट ईजियर फॉर यू टू गेट योर ऐप ऑन योर फोन. तो आइएगा ज़रूर. अभी फिलहाल के लिए जस्ट मीट अस at Kendra Saint Pierre, jahan pe we have the entire team waiting for you to help you to get your app on your phone. Yani ki aap download kar sakte hain MBC Play 1.0. Thank you so much for saath dene ke liye on RM2 Radio Masti and the good music continues.
0: RM2 Radio Masti.

0: रेडियो मस्ती।
1: What a beautiful song जी हाँ दोस्तों, जितने भी खूबसूरत प्लेलिस्ट आज हम प्ले कर रहे हैं आप लोगों के लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती, इट्स ऑल डेडिकेटेड टू ऑल अवर ट्रू एंड लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं। और जैसे अगर आपको याद ही होगा कि कल हम मना रहे हैं म्यूजिक डे। एक्चुअली देखा जाए तो एवरी डे वी डू सेलिब्रेट म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती, लेकिन कल एक खास दिन है। लेकिन प्लीज आप ऐसा मत सोचेगा कि आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको RM2 रेडियो मस्ती सुनने के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी के लिए वीव गॉट यू द ऑल फैसिलिटीज़ कि आप कहीं पे जाएगा, अपने दोस्तों के घर, अपने फैमिली के घर, काम पे हो, कहीं पे भी हो, अगर बस में भी ट्रैवल कर रहे हो, सो इट्स ईजी फॉर यू नाउ टू लिसन टू अस लाइव। और जो भी चैनल्स आपको अच्छा लगता है MBC का, अगर मूवीज़ देखना है तो इट्स वेरी ईजी, यू कैन जस्ट कैरी अस एवरीवेयर। कहीं पर भी आप जाओगे हम आपके साथ साथ चलेंगे। यानी कैसे? इट्स Easy, आपको डाउनलोड करना है हमारे जो ऐप है MBC Play 1.0। Yes, it's easy. You are just one step away from all the entertainment channels. यानी कि आप डाउनलोड करोगे और कहीं जहां जहां आप जाओगे हम लोग तो पीछे पीछे आएंगे, यानी कि आपके जेब में, आपके बैग में, आपके मोबाइल में। सो जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए MBC Play का जो ऐप है MBC Play 1.0। और जल्दी से जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, अरे आपको ख्याल आया कि पूरी दुनिया तो मजा ले रहे हैं इस वर्ल्ड कप का, हम पीछे क्यों रह जाए? आप बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि यू हैव द फैसिलिटी टू वॉच ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप मैचेस ऑन योर फोन। कैसे? यू जस्ट हैव टू पे 300।

0: रुपीज़, 300 रुपये में सिर्फ आप ये सारे मैचेस देख पाओगे। और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि पेमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें वी डू हैव अ टीम टू एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ व्हाट कैन द सम पिया, दिक्कत हो रही है कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पे करना है। यू कैन पे बाय ब्लिंक, यू कैन पे बाय जूस या अपने कार्ड के जरिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास टू गेट योर वर्ल्ड कप जस्ट इन योर पॉकेट। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए अगर कुछ दिक्कत है कि कैसे डाउनलोड करना है आपसे नहीं हो रहा है, आप हमारे टीम से मिल सकते हो राइट नाउ एट केंद्रा सैंपिया। वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू सर्व यू, सो दैट्स व्हाई आप सभी लोगों को हम बस इनवाइट कर रहे हैं। मौसम सुहाना है, गाने बज रहे हैं और द एंटायर लवली टीम ऑफ आवर एमटी रेडियो मस्तियान एमबीसी, वी आर हियर टू वेलकम यू एट केंद्रा सैंपिया। फिलहाल के लिए तो हम केंद्रा सैंपिया में है, लेकिन आफ्टरनून में 3 बजे यस, जितने भी हमारे लिसनर्स नॉर्थ में हमारा साथ दे रहे हैं, नॉर्थ साइड वालों, हम आएंगे इवनिंग में 3 बजे एट La Croisette, Grand B. So just get ready to get your app in your pocket. Yannicky MBC Play 1.0.
1: RM2, Radio Mastery.

0: Radio Masti.
1: Well guys, this is what I really call the Saturday vibes. RM2 के साथ बिल्कुल जी RM2 Radio Masti का जो टीम है, एक्चुअली हम लेकर आते हैं ढेर सारी खुशियां इन खूबसूरत गानों के जरिए. We are celebrating Music Day tomorrow, तो आपको तो पता है कि 365 दिन we do celebrate Music Day आप लोगों के साथ. आपके मनपसंद गानों को लेकर हमेशा हम आ जाते हैं आपका दिल खुश करने के लिए. और फिलहाल के लिए आपके लिए दुगनी खुशी की बात यह है दैट वी हैव अ स्पेशल ऐप आप लोगों के लिए, सारे मॉरिशियस लोगों के लिए, यानी कि यू कैन गेट MBC Play 1.0 on your mobile, movies देखने के लिए and even to watch all your World Cup matches. बिल्कुल दोस्तों, इतने सारे matches हैं, आप किसको support कर रहे हो, आपका favorite player कौन है, ये सारी बातें आप enjoy कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप share कर सकते हैं अपनों के साथ. So why not, if अगर अभी तक आपने download नहीं किया है, so this is the right time to do download the app MBC Play 1.0. Pay 300 rupees only to watch the rest of the matches. Yes, World Cup matches. आप किसको follow करेंगे कि आप बस enjoy कर सकते हैं आराम से. काम पे हो, गाड़ी में हो, बस में बैठो, कहीं से भी अगर आपको लगता है कि कोई मैच आपने मिस कर लिया, अरे ये गोल हमने मिस कर लिया, so we are not going to let that happen because we got you the facility to have everything just in your pocket. So download कीजिए ये app, आप लोगों के लिए ही हैं the entire Mauritian people, यानी कि MBC Play 1.0, you can get it on your mobile right now, right away. फिलहाल के लिए we are broadcasting live from Kendra Snapia, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी जो टीम है, MBC टीम है, we are heading to the north, यानी कि we are going to Grand Bay. अरे यहाँ हम सेंटर में ही थे तो नॉर्थ वाले पीछे क्यों रह जाए, उनके पास भी तो होना चाहिए ना MBC Play 1.0. So we are heading to the north, we are going to La Croisette, Grand Bay, and you're going to catch our team there, जहाँ पे आप की मदद के लिए आ रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट MBC Play 1.0 ऑन योर मोबाइल. और ये सिर्फ यही बात नहीं है, डाउनलोड करने पर आपको गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं. सो व्हाई नॉट, यू कैन बी हियर द लकी विनर टू गेट टू विन मोर अमेजिंग प्राइजेस जस्ट बाय डाउनलोडिंग द ऐप MBC Play 1.0. फिलहाल के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूनम का, जो थोड़ी देर पहले स्टूडियो में थी ऑन द टेक्निक, एंड एज वेल अवी हियर जो हमारे साथ हैं एट द टेक्निकल हियर, एंड ऑफ कोर्स we are thanking Hansini as well, jo bade time se hamara saath de rahe hain. So Hansini, back to you to the studio. Thank you so much, and guys, happy Music Day in advance from Ganesha.
0: RM2
2: Radio Masti,
0: feel the Masti.

हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: लाउंज, इश्क मोहब्बत लव लाउंज,
1: ये प्यार, ये हंसी मजाक, ये खुशियाँ बस उनको मेंटेन हम रखेंगे ऑन ओरिएंटल रेडियो मस्ती. दैट वाज स्पेशली मनिका वाला गाना और ये खास तौर पे हमने चलाया है अभिजीत जी के लिए, अपनी प्यारी से मनिका के लिए. दैट वाज फन, दैट वाज सुवेनियर, राइट? विशिंग यू अ ग्रेट डे अहेड. यहाँ पर शुरुआत हो गई है फॉर लव लाउंज एंड स्पेशल थैंक यू टू आवर लवली गिनेशा जो थी लाइव फ्रॉम केंद्रा सेंट पियर for the MBC play campaign. और अब तक अगर आपने register नहीं किया है अपने आप को, so बस आप कर लीजिए जल्द से जल्द, ताकि जो matches होने वाले हैं you don't miss them. तो यहाँ पर सेलिब्रेशन चारों ओर है, जहाँ पर भी हम जा रहे हैं शॉपिंग मॉल्स में, बस that ambiance तो बस छा गया है, क्योंकि आज और कल जो संगीत का जो जश्न है उसी में हम शामिल होने वाले हैं, जस्ट टू एंजॉय म्यूज़िक डे. हम और इसके लिए, आप सुनने वालों के लिए, तो रोज़ाना म्यूज़िक डे होता है ना, चाहे हम म्यूज़िक को एंजॉय कर लेते हैं, म्यूज़िक को सुनते हैं, म्यूज़िक को हम पढ़ाते हैं, म्यूज़िक को हम सीखते हैं. म्यूज़िक वो दौर है जो सबको बांध लेता है. सो अगर आप सिंगर हो, टीचर हो, या फिर लिसनर हो, एनी हाउ म्यूज़िक इज़ हेयर टू कनेक्ट आवर सेल्व्स, राइट? तो उसी संदर्भ में हम हैं आपके साथ, जो मेक इट मोर एंड मोर स्पेशल, क्योंकि हमारा ये मानना है संगीत वो भाषा है जो दिल से दिल को जोड़ती है. संगीत जीवन में खुशियों के रंग भरता है. तो आइए इस जश्न में हम भी शामिल होंगे एंड विल बी हियर टुगेदर अपटिल 2 PM. एंड जहां पर भी आपका साथ जारी हो गया है, यहां पर हंसनी है जो आपके साथ बिल्कुल है ऑन आवर रेडियो मस्ती
0: लव लाउंज.
2: RM2
0: लव लाउंज.

सो क्वेश्चन ये है कि डू आई नो, यस आई नो. इस समय आप कनेक्टेड हो ऑन रेडियो मस्ती एंड एंजॉय कर रहे हो आज का ये म्यूजिकल शो. तो यहाँ पर इशारा है कि कुछ पल में हम बढ़ेंगे शॉन डिमास सपोर्ट रेस से जहाँ पे लगने वाला है द नेक्स्ट रेस.

0: Love Lounge.
1: RM2.
0: Love Lounge.
2: राइट म्यूजिक फॉर एवरीवन ऑन रेडियो मस्ती. एंड फिलहाल हम एंजॉय कर रही हैं सम ब्यूटीफुल सुवेनियर्स टू गेट बैक ऑफ कोर्स टू मेक इट मोर स्पेशल. दिन को मत मिस बनाने के लिए हमेशा आपके साथ आपका रेडियो मस्ती 24/7 आपके साथ ही रहता है. और जितने भी हमारे दोस्त इस समय काम कर रहे हैं, अजी बोन कुराज टू यू. एनर्जी थोड़ा सा ड्रेन आउट हो गया है, कोई बात नहीं, हम तो है टू बूस्ट अप योर एनर्जी लेवल. स्टे वेल कनेक्टेड. आज हम सुनी विद यू ऑन रेडियो मस्ती.

स्टे वेल ट्यून्ड ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर ठीक 2 बजे हम सुनेंगे समाचार और इसके बाद आएगी परी लेकर आज का प्लग एंड प्ले शो. यहाँ पर मुलाकातें तो होती रहती है, होती रहेगी. एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट म्यूजिक डे आप लोगों के साथ. सो विशिंग यू अ सुपर्ब एंड वंडरफुल इवेंट. म्यूजिक डे को सेलिब्रेट करें एंड स्टे म्यूजिकल एंड स्टे वेल कनेक्टेड एज ऑलवेज ऑन आवर रेडियो मस्ती.

0: RM2 Radio Misty.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check 2 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. बजट 2026-2027 में सरकार ने पेंशन व्यवस्था में नए बदलावों की घोषणा की है. पहले

0: 1 जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन रखा जाएगा। सरकार के अनुसार 14,000 रुपए से कम मासिक आय वाले लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा। इससे अधिक आय वालों को भी पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन उसकी राशि आय के अनुसार धीरे धीरे कम होगी। वर्तमान लाभार्थियों में से 90% से अधिक लोग योजना के दायरे में बने रहेंगे। पानी के सेक्टर के लिए बजट में की गई घोषणाओं का सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने किया स्वागत। सरकार ने अगले 3 वर्षों में जल के विकास के लिए 6.4 बिलियन रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। योजना में जल भंडारण, फिल्ट्रेशन और नए बोहोल्स जैसे कई प्रावधान शामिल हैं। बजट के बाद आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में सरकार के मंत्रियों ने कल विभिन्न कदमों का स्वागत किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओयान नवोमाही ने कहा कि महिलाओं और परिवारों से जुड़ी कई प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री पत्रिक आसियावादन ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजनाओं का उल्लेख किया। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने शिक्षा सेक्टर में समावेशन और स्कूलों में उत्पीड़न के खिलाफ कदमों पर जोर दिया। बिजनेस मोशस ने बजट की प्रमुख आर्थिक घोषणाओं का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई किए गए प्रयास सकारात्मक साबित होंगे। बजट में महिलाओं से जुड़े कई कदमों का ऐलान किया गया है और इसे सकारात्मक बताया जा रहा है। विशेष रूप से मासिक धर्म अवकाश और मैटरनिटी लीव को 1 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को महिलाओं के कल्याण और नौकरी स्थल पर उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। एक अमरीकी अधिकारी के अनुसार यह समझौता दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों और सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बाद हुआ है। हालिया झड़पों में लेबनान में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। फुटबॉल में 2 मैच 2 जीत और अब राउंड ऑफ 16 का टिकट पक्का। मेजबान यूएसए ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना शानदार अभियान जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। इस मुकाबले में टीम यूएसए ने शुरुआत से ही तेज और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
3: लड़की बड़ी अनजानी है।
4: Radio Musti, all the way.
5: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

So well friends, it's time for your plug and play, जहाँ पर हम लेकर आए हैं कुछ beautiful songs आपके लिए. मैं हूँ परी आपके साथ and it's time कि हम आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे गाने चलाए ताकि आपका ये जो Saturday है ये एकदम मस्त डे बन जाए. वैसे आज मौसम तो एकदम superb है और इस superb मौसम में आपके क्या plans है दोस्तों? आपके जो भी plans हो, not to forget background में हमारे गाने तो चलते रहेंगे क्योंकि आपके दिल को लुभाना, आपको entertain करना, यही तो है हमारा काम. So उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने सैटरडे को एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं. सो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस रहेगा इंतजार 5499-1294 पर. एंड अभी के लिए तो ऐसे ही हम कहेंगे आपको कि अगर आप कहीं से हमारे साथ कनेक्टेड है सो डू लेट अस नो कि आज के आपके क्या प्लान्स है, क्या कुछ हो रहा है प्लान आज के लिए. यानी कि कुछ लोग हैं जो सैटरडे को चिल करना पसंद करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम पर चले जाते हैं. हाफ डे ही सही लेकिन काम तो होता ही होता है. सो नॉट टू फॉरगेट, जहां से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं बस अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिए कि हाउ इज इट गोइंग आपकी साइड पर, सब कुछ ठीक ठाक. और म्यूजिक के जरिए आपके दिल को लुभाने की, आपको एंटरटेन रखने की कोशिश करेंगे हम. एंड अभी के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं फ्रॉम द फिल्म दिल्ली 6 टू गेट यू इन द सैटरडे मूड. एंजॉय दिस वन, दैट्स मसक्कली आपके लिए.

0: So well, friends, that was What Jhumka from the film Rocky Rani ki Prem Kahani. वैसे आप इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं दोस्तों, सबकी कोई ना कोई प्रेम कहानी तो जरूर होती है और हर किसी का कोई ना कोई एक फेवरेट सॉन्ग ऐसा होता ही होता है जिनको सुनकर लगता है, जिसे सुनकर लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल हमारी कहानी बयां करता है। तभी तो हम कहते हैं कि म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी। म्यूजिक आपको हर मोमेंट में साथ देता है। अगर हैप्पी है तो एक हैप्पी गाना आपको और भी हैप्पी फील करवाता है। जब आप सैड होते हैं तो कोई एक गाना ऐसा होता है जो आपके इमोशंस को एकदम परफेक्टली ऐसे खींच के बाहर निकाल देता है, और कभी कभार ये जो इमोशंस है वो आंसू के जरिए छलक भी जाते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। और जैसे हम कहते हैं कि 21st of June ये तो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं म्यूजिक डे, लेकिन RM2 रेडियो मस्ती पर ईच एंड एवरी डे होता है म्यूजिक सेलिब्रेशन, वो भी हमारे स्वीट स्वीट लोगों के साथ, यानी कि हमारे डियर लिसनर्स जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। अभी इस वक्त हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो वी हैव विजया जी, आ गया है आपका स्वीट सा हेलो। सो आई डू होप यू आर एंजॉयिंग योर वीकेंड, योर सैटरडे। गुड विशेस भेजेंगे आपके नाम एंड हैव अ वंडरफुल टाइम हमारे इन गानों के साथ। यहाँ पर हमारा साथ दे रही है माधवी जी और कहती है व्हाट लवली सॉन्ग्स, मूड हो जाता है सेट रेडियो मस्ती के साथ जुड़कर। बस यही तो हम चाहते हैं कि आपका मूड हमेशा ऐसे ही सेट रहे। अभी के लिए लेकर आई है गाना अपने पति प्रेम के नाम, क्या बात है, पति जी का नाम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम जिंदगी में बना रहे ऐसे ही, और आपके लिए आपके पति प्रेम के लिए। साथ ही यहाँ पर आपके जितने भी लव्ड वंस हैं उनके नाम डेडिकेट करेंगे हम ब्यूटीफुल गाना। कविता जी कहती है हेलो मेरी तरफ से भी इस वक्त ऑन द बीच एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग्स। देखिए आप अपना सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, बीच पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो अच्छी बात है कि आप रेडियो मस्ती का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो बस इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिएगा, हमेशा अपने दिल के करीब इसे रखिएगा। एंड यहाँ पर आज से नाल से हमारा साथ दे रही है पल्लवी। आहा, दैट्स सच अ नाइस नेम, पल्लवी। मुझे याद आ गई वो श्रीदेवी फ्रॉम द फिल्म लम्हे, वहां पर उनका नाम भी तो पल्लवी था और उनके पति प्यार से उन्हें पल्लो पल्लो कहते थे। वेल पल्लवी हमारा साथ दे रही है आप, सो हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू जी, अच्छा लगा कि आप इस वक्त हमारा साथ दे रही है। ड्राइव पर निकली है आप और साथ में है समवन वेरी स्पेशल। ओके, चलिए उनके नाम भी होगा एक स्वीट सा गाना। साथ देते रहिए दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ। दैट्स योर प्लग एंड प्ले on the waves of RM2 Radio Masti.
1: You're listening to RM2 Radio Masti.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: So well friends, it's a happy, happy Saturday और happy इसीलिए क्योंकि हमारे dear listeners हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपका प्यार तो ऐसे ही हम तक पहुंच जाता है और इस प्यार को तो हम सर आंखों पर रखते हैं क्योंकि आप हैं तभी तो हम हैं. So thank you so much अभी के लिए सुदेवी जी वाकवा से हमारा साथ दे रही हैं. Good afternoon and enjoying the program. साथ ही आज छोटा वैभव अपना 4th birthday celebrate कर रहे हैं. So वैभव आपके लिए बहुत सारा प्यार and special wishes on your special day. It's your birthday और wishes आपके लिए from Papa Vijayan, Mama Anju, साथ में है भैया वंश, दादी सुनीता, ला रोजा के सभी परिवार, आजी, माँ, मामू और साथ में है कुणाल, मौसी मनीषा, मौसा वरुण, कजिन्स टिया एंड जिया, ऑस्ट्रेलिया से चाचा विमल, चाची वर्षा, उनके कजिन्स निया, वीर, मालिंगा के उनके पुपू अनुषा एंड पुपा किरण, केशनी है, कृषय है, परनीता है एंड सभी राम रतन परिवार एंड राम गुलाम एंड कुवारू परिवार, मोलू परिवार भी है जो लेकर आए हैं की स्पेशल स्पेशल विशेज आपके लिए ऑन योर बर्थडे वैभव. सो गुड विशेज ये है हमारे पूरे टीम की ओर से एंड फ्रॉम मर्सी शेल्स हमारा साथ दे रही है विद्या. आज जो कहती हैं इट्स माय क्लीनिंग डे एंड एंजॉयिंग रेडियो मस्ती के साथ, क्या बात है, सी शेल्स में भी आप हमें सुन रही है, दैट्स रियली नाइस. एंड वेल अभी के लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम चलाएंगे. मेरे महबूब मेरे सनम, हाँ जी वाई नॉट, ये तो है हमारी प्लेलिस्ट में गाना, सो आपके लिए चल पड़ेगा ये गाना. एंड तभी तो हम कहते हैं कि कभी कभार आपके दिल की प्लेलिस्ट और हमारी प्लेलिस्ट मैच कर जाती है. सो गाना होगा आपके नाम, अभी के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना और अपने सैटरडे को एंजॉय कर रही हैं वीना जगिसा हमारे साथ बेलवी मोहल से आई है अपनी स्वीट विशेस लेकर सभी परिवार सभी दोस्तों के नाम एक स्वीट सा डेडिकेशन. एंड यहाँ पर ऋषि विदेशी कहते हैं हैप्पी म्यूजिकल डे टू ऑल RM2 लिसनर्स और आपकी ममा, आपके फादर इन लॉ एंड योर मूडी गर्लफ्रेंड 2 जुलाई को आ रही है. ओके जी ओके, सो काउंट डाउन हैज ऑलरेडी बिगिन. सो अभी के लिए तो हम भी इंतजार करेंगे उनका और जब वो आएंगे आई एम श्योर बहुत सारा प्यार लेकर आएंगी. और कहते हैं ना कि लड़कियों में ये मूडी पना ना होना तो फिर जिंदगी थोड़ी सी बेरंग हो जाती है. सो आई एम दैट ऋषि जी आप भी उनकी ये जो नट खट बातें हैं उन्हें एंजॉय करते होंगे. सो वेल फ्रेंड्स ऐसे ही आपकी स्वीट मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए. फॉर नाउ वी हैव सोहम, आकृति कक्कर, मोनाली की आवाज़ें एंड दिस ब्यूटीफुल गाना आप सभी के नाम जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM.

हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. बजट 2026-2027 में सरकार ने पेंशन प्रणाली में नए बदलावों का ऐलान किया है. पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन रखा जाएगा. सरकार के अनुसार 14,000 रुपए से कम मासिक आय वाले लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा और इससे ज्यादा आय वाले लोगों को भी पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन उसकी राशि आय के अनुसार धीरे धीरे कम होगी. वर्तमान लाभार्थियों में से 90% से अधिक लोग योजना के दायरे में बने रहेंगे. बजट के बाद आयोजित प्रेस सम्मेलन में कल कई मंत्रियों ने विभिन्न कदमों का स्वागत किया. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओयन्ना वोमाही ने कहा कि महिलाओं और परिवारों से जुड़ी कई प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया गया है. वहीं ऊर्जा मंत्री पत्रिक अस्यावादन ने सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजना का उल्लेख किया. शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने शिक्षा सेक्टर में समावेशन और कॉलेजों में स्कूलों में उत्पीड़न के खिलाफ कदमों पर जोर दिया. बिजनेस मोशस ने बजट की प्रमुख

0: घोषणाओं पर खासकर आर्थिक कदमों का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास सकारात्मक दिशा में अच्छे कदम है। साथ ही उसने बजट कदमों के प्रभावी रूप से लागू किए जाने के महत्व पर जोर दिया। बजट 2026-2027 में महिलाओं से जुड़े कई अहम कदमों का ऐलान किया गया है। इसे सकारात्मक बताया जा रहा है, विशेष रूप से मासिक धर्म अवकाश और मैटरनिटी लीव को एक वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को महिलाओं के कल्याण और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फुटबॉल में दो मैच दो जीत और अब राउंड ऑफ 16 का टिकट पक्का। मेजबान यूएसए ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना शानदार अभियान जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। इस मैच में टीम यूएसए ने शुरुआत से ही तेज और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। ये समझौता दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों और सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बाद हुआ है। हालिया झड़पों में लेबनान में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। टेम्पल रोड रिविया जुरान पौ में 70 साल के 70 years old के श्री कांता प्रसाद दुता की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 10:30 उनकी पत्नी माला दुता के मकान रिविया जुरान पौ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरीव रिविया जुरान पौ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

तो चलिए दोस्तों 3:08 सैटरडे आफ्टरनून साथ दे रहे हैं आपका ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती कुछ प्यारे गानों के साथ आपके दिल को लुभा रहे हैं आपके दिल को बहला रहे हैं बिकॉज वीकेंड का टाइम ही तो ऐसा होता है जहां पर कुछ आराम के पल कुछ सुकून के पल आप एंजॉय कर पाते हैं तो इसमें बस हम घोलते हैं थोड़ा सा म्यूजिक ताकि आपका ये जो फन सैटरडे है वो थोड़ा सा म्यूजिकल सैटरडे भी बन जाए और जैसे हमने कहा कि आज तो काफी सारे सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं बिकॉज कल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं म्यूजिक डे लेकिन जैसे हमने कहा कि ईच एंड एवरी डे इट्स अ म्यूजिक सेलिब्रेशन ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती तो चलिए दोस्तों अभी के लिए मैं परी आपके साथ और जैसे हम हमेशा आपको याद दिलाते हैं आपके दिल का हाल आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं रहेगा आपका इंतजार 54991294 54991294 पर आपका इंतजार

एंजली रेडियो मस्ती पर इस वक्त लीना जी हमारा साथ दे रही हैं प्लान द हॉर्स से, कहते हैं गाना हो जाए फॉर लिटिल प्रिंसेस जिया, और इस वक्त आप हॉस्टलों में काम कर रही हैं और रेस्टोरों में सभी आपके जो टीममेट्स हैं जो इस वक्त आपके साथ काम कर रहे हैं इस वक्त रेडियो मस्ती सुन रहे हैं, सो दिस वन गोज आउट फॉर यू, लोड्स ऑफ करेज, एंजॉय योर सैटरडे, और आपके इस वर्क टाइम को हम स्पेशल टाइम बनाएंगे ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल डेडिकेशंस आपके लिए कर और आपके लिए आपकी पूरी टीम के लिए सेंडिंग लोड्स ऑफ गुड विशेज। साथ ही यहाँ पर रोशनी जी हमारा साथ दे रही हैं, कनेक्ट कर लिया है आपने हमारे दिल के साथ और साथ ही हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ, सो दिस वन गोज आउट फॉर यू, बहुत सारा प्यार आपके नाम एंड बहुत सारी गुड विशेस। वी आल्सो हैव चाचा महीन जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, सो बस हम भी आपको याद करते

तो चलिए दोस्तों, इट्स 3:33 और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी पहुंच रहे हैं। सो आज ज्योति अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। विशिंग ज्योति लोड्स ऑफ लव एंड कमिंग फ्रॉम मेधा, मनीष, श्रेया, आर्यन, नील, शीतल, विकी, रतीना, नितिन, संगीता, सभी दयाल परिवार मोंटाई ब्लॉन्ड से उनके लिए लेकर आए हैं प्यार एंड स्पेशल विशेज। एंटी टाइम हो चुका है शुरू, ये है यले शाम ऑफ सुरेराम। यहाँ पर आप इतने वंडरफुल पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, हमें भी लग रही है भूख थोड़ी थोड़ी। तो चलिए, आई विल ऑल्सो टेक माई टी ब्रेक एंड थैंक यू सो मच यलेश, साथ दे रहे हैं आप। सो एंजॉइंग द सॉन्ग्स राइट नाउ एंड ऐसे ही प्यारे गाने आपके नाम एंड गोज आउट फॉर ऑल शाम फैमिली जो हमेशा हमारा साथ देते हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। सो आपका वार्म वेलकम। साथ ही यहाँ पर यहाँ आस्था हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप भी गानों को एंजॉय कर रही हैं। थैंक यू जी, गाना होगा आपके नाम भी एंड वी ऑल्सो हैव भगवत विद देसी। कहते हैं कोई भी गाना हो जाए मेरे नाम, कोई भी क्यों, अच्छा सा गाना चलाएंगे आपके लिए एंड फॉर ऑल योर लव्ड वंस। ऐसे ही साथ देते रहिए, साथ निभाते रहिए और प्यारे प्यारे मैसेजेस हम तक पहुँचाते रहिए। रहेगा आपका इंतजार ऑन 5499-1294। परी का साथ है ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

पाकिस्तान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

तो चलिए दोस्तों, हमारा साथ दे रहे हैं आप, एंड आई डू होप यू एंजॉयिंग योर सैटरडे, क्योंकि हम तो आपकी कंपनी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आपका साथ, आपका प्यार, वही तो बनाता है हमारे इस RM2 रेडियो मस्ती को नंबर 1 बॉलीवुड स्टेशन ऑफ मॉरिशस। सो बस इस प्यार को ऐसे ही हम तक पहुँचाते

रहिए, मैं हूँ परी आपके साथ, साथ रहेगा आपका और मेरा यहाँ पर कुछ और घंटों तक कुछ प्यारे गानों के साथ आपके दिल को बहलाएंगे, आपके सैटरडे को म्यूजिकल बनाएंगे। और अगर आप भी साथ दे रहे हैं तो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर मैं कर रही हूँ आपका इंतजार। फॉर नाउ वी हैव अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, हर्षदीप कौर की आवाज एंड टेकन फ्रॉम द फिल्म रॉकस्टार। एंजॉय दिस वन।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: And well, friends, with this track, लेकर चलेंगे आपको Shaun the Mass for your 7th race. उसके बाद होंगे समाचार, उसके बाद लौट कर आएंगे म्यूजिक टक टका टक, आपका साथ निभाएंगे on the waves of Radio Musti. अभी के लिए we have this one from the film Dhurandhar. Enjoy this one.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 में सरकार ने पेंशन प्रणाली में बदलाव का ऐलान किया। पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन रखा जाएगा। सरकार के अनुसार 14,000 रुपए से कम मासिक आय वाले लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा, जिससे अधिक इससे अधिक आय वाले लोगों को भी पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन उसकी राशि आय के अनुसार धीरे धीरे कम होगी। वर्तमान लोगों में से 90% से अधिक लोग योजना के दायरे में बने रहेंगे। बजट के बाद आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में सरकार के कई मंत्रियों ने विभिन्न बजट के विभिन्न कदमों पर अपनी राय दी और घोषणाओं का उन्होंने स्वागत किया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओया नावा माही ने कहा कि महिलाओं और परिवारों से जुड़ी कई प्राथमिकताओं को इस बजट में शामिल किया गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री पात्रिक आस्यावादन ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजनाओं का उल्लेख किया। शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने शिक्षा सेक्टर में समावेशन और स्कूलों में बुलिंग उत्पीड़न के खिलाफ कदमों पर जोर दिया। बिजनेस समर्शस ने भी बजट के कदमों पर अपनी राय दी है। संगठन ने प्रमुख आर्थिक घोषणाओं का स्वागत किया और कहा कि सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। साथ ही संगठन ने बजट के कदमों के प्रभावी रूप से लागू किए जाने के महत्व पर जोर दिया। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। ये समझौता दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों और सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बाद

0: मुतद हुआ है। हवाई झड़पों में लेबनान में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हिजबुल्ला के हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजरायली सेना ने युद्ध विराम लागू करने की पुष्टि की है, हालांकि उसने तत्काल खबरों के खिलाफ कार्रवाई खतरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात करी। दूसरी ओर हिजबुल्ला ने अभी औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसके महासचिव ने दावा किया है कि संगठन को समाप्त करने की कोशिश विफल रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए हैं। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Music, Dr. Gatta.
3: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। 4:14, मैं हूँ परी आपके साथ। इट्स टाइम फॉर योर म्यूजिक टक टक टक, गुड म्यूजिक आपके लिए, आपके सैटरडे को एकदम मस्त बनाने के लिए। और मस्त इसलिए भी बनेगा क्योंकि इसी आवो में आपके लिए हम कुछ गेम्स भी लेकर आए हैं। तो चलिए यहाँ पर आपसे पूछेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल, और अगर आप हमें देते हैं सही जवाब, आप जीत सकते हैं यहाँ पर शानदार इनाम। सो आपको मिलने वाला है ₹500 का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड। और इसे जीतने के लिए आपका सवाल, आपको हमें बताना है रैंचो का किरदार आमिर खान ने किस फिल्म में निभाया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हमारा ये सवाल। आपको हमें बताना है आमिर खान ने इस फिल्म में रैंचो का किरदार निभाया था। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294 पर आपके सही जवाब, आपके पूरे नाम और पते के साथ। ऑल द बेस्ट।

तो चलिए दोस्तों, आपके सही जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं पूरे नाम और पते के साथ, वरना आपके जवाब कंसिडर नहीं होगा। आपका पूरा नाम पूरा पता हमें भेजिए ऑन 5499-1294। रांचो का किरदार आमिर खान ने किस फिल्म में निभाया था, ये है सवाल आपके लिए। सही जवाब ऑन 5499-1294।

चलिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल पूछा था आपसे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, रैंचो का किरदार आमिर खान ने किस फिल्म में निभाया था? एंड द राइट आंसर इज थ्री इडियट्स। यस, यहाँ पर हमें मिले सारे के सारे सही जवाब, एंड लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गए हमारे लकी विनर। सो वेल, यहाँ पर सही जवाब देकर ये इनाम जीता है राहुल राम सेवक, आप है लियोशे से, सो कांग्रेचुलेशंस। सो वेल राहुल, दिया आपने हमें बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर इज थ्री इडियट्स, एंड यहाँ पर आपने जीता है 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर, 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड। अगर आप कोई परफेक्ट गिफ्ट आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, सो mysticworld.mu डिस्कवर कर सकते हैं आप एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टनिंग होम डेकोर। mysticworld.mu हैज एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। विजिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट आज, या फिर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं on 5880-7652, 5880-7652। आपका जो गिफ्ट वाउचर है वो आप तक पहुंच जाएगा और हमारी एमबीसी

0: एसटी की टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी. सो थैंक यू सो मच राहुल राम सेवक, आपने किया पार्टिसिपेट और बन गए हमारे लकी विनर. कांग्रेचुलेशंस.
1: म्यूजिक टकटकाता
2: RM2 रेडियो मस्ती.
0: तो चलिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में एक और गेम हम आपके साथ खेलने वाले हैं. आप कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड. यह है RM2 रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ शाम के 7 बजे तक.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सैटरडे को आप हमारा साथ दे रहे हैं और आपके सैटरडे को खास एंड स्पेशल बनाने हम तो लेकर आए हैं आपके लिए तोहफे, इनाम, गिफ्ट्स। क्योंकि जब हम आपको कुछ देते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर आप भी इतने प्यार से हमारा साथ देते हैं तो आपके लिए गिफ्ट तो बनता है, लेकिन इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, देना है हमें सही जवाब। सो अभी के लिए वंस अगेन वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जहाँ पर सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय मिस्टेक वर्ल्ड। और उसे जीतने के लिए अगला गाना सुनिए, हमें बताइए कि ये गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन रणबीर

कपूर एंड आलिया भट्ट रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक बस अपनी इस प्रेम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं ये दोनों. सो आपको हमें बताना है गाना सुनने के बाद कि ये गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है. वेटिंग फॉर राइट आंसर्स 5499-1294 पर अपने पूरे नाम और पते के साथ. चल पड़ा ये खूबसूरत सा गाना, बताइए हमें ये कौन सी फिल्म से लिया गया है. ऑल द बेस्ट.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सवाल पूछा था आपसे, जो गाना आपने सुना वाज टेकन फ्रॉम विच फिल्म एंड द राइट आंसर इज ब्रह्मास्त्र। ओ हो हो, यहाँ पर भी बहुत सारे सही जवाब आए, ऑलमोस्ट सारे सही जवाब ही आए। एंड द लकी ड्रॉ के बाद जो नाम सामने आया है, आप है संजीव मंगरा पंचवटी।

ये रिव्य जोहां पासे कांग्रेचुलेशंस। So well, संजीव जी आपने दे दिया हमें बिल्कुल सही जवाब। द राइट आंसर इज ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल सही। और जीता है आपने ₹500 का गिफ्ट वाउचर, ₹500 का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड। अगर आप एक परफेक्ट गिफ्ट आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, mysticworld.mu जहां पर आप डिस्कवर कर सकते हैं उनके एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टनिंग होम डेकोर। mysticworld.mu हैज एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। विजिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट आज या फिर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं ऑन 5880-7652। ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। बात कर रहे हैं हम मिस्टिक वर्ल्ड की, जिन्होंने आपको दिया है ₹500 का गिफ्ट वाउचर। कॉन्ग्रेचुलेशंस।

तो चलिए दोस्तों, कनेक्टेड है आप हमारे साथ ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती, लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, जैसे हमने कहा आपके दिल की प्लेलिस्ट जो बिल्कुल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। दैट्स अ फन सॉन्ग आप सभी के नाम, फ्रॉम द फिल्म व्हाट्स योर राशि। परी का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, मैसेजेस डेडिकेशंस 5499129 पर।

0: to Radio Musti.
1: Ou pe roden travail ou en formation pour développer compétences para Job and Training Fair organisé par Ministère Travail et Relations Industrielles sase di 25 zalan depuis 9h30 grand matin dans municipalité 4 bonnes. Vin zwen ban l'entreprise privée, ban centre de formation et bénéficie ban conseil professionnel pour aider dans ou courrier. L'entrée gratis. Ou plus info, téléphone l'eau 860-03 ou soit visite site web mauritiusjobs.govamu.org.
0: Radio Musti.
2: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम, ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। Happy Music Day from MBC Radio.

फ्रेंड्स एक बार फिर लौट कर आ गए हैं हम गुड म्यूजिक आप तक पहुंचाने. इट्स 4:45. मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर म्यूजिक टक टक टक. साथ रहेगा टिल 7 PM. अभी के लिए इट्स बबल सुप्रियो अलका याग्निक की आवाजें. एंड यहाँ पर हमारे जो लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, भूलिए नहीं आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस. 5499 और 1294 पर हो रहा है आपका इंतजार. अभी के लिए यहाँ पर रेखा जी साथ दे रही हैं पोमोजे से, डेडिकेटिंग गाना फॉर बेटा अंश जो इस वक्त हमारा साथ दे रहा है. साथ ही यहाँ पर जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून, एंजॉय दिस वन.

तो चलिए दोस्तों, यहां पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपके सैटरडे को हम बना रहे हैं खास एंड स्पेशल, हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। और यहां पर विजया जी कह रही हैं गाने तो अच्छे हैं, अगर धुरंधर का कोई गाना चल जाता, मिस कर रही हैं आप धुरंधर के गानों को, चलिए कोशिश करेंगे।

जरूर चलाएं कुछ एक प्यारा सा गाना आपके नाम। एंड यहाँ पर सुरेखा जी कातरकोको से आप भी हमारा साथ दे रही हैं और सभी रामधन परिवार के नाम डेडिकेट कर रहे हैं ये गाना। साथ देने के लिए शुक्रिया। हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। थोड़ी देर में हम बनने वाले हैं टुवर्ड्स योर इंग्लिश फ्लैश न्यूज। परी का साथ रहेगा शाम के 7 बजे तक।

साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सो वेल फ्रेंड्स, 5:17 मैं हूँ परी आपके साथ। क्या हाल चाल ऑन दिस सैटरडे? आई डू होप एवरीथिंग इज मस्त, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हौसला बनाए रखिए आप, क्योंकि कैसे हम कहते हैं कि जिंदगी में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो बस इसीलिए आते हैं ताकि हम जिंदगी को और खुलकर जी पाए। कहते हैं ना कि भाई खुशी आपको तभी महसूस होती है, यानी कि अच्छे पलों की वैल्यू आपको तभी महसूस होती है जब लाइफ में थोड़ा सा गम भी आए, और गम के बाद जब हैप्पी फेज आता है लगता है कि आहा हा जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ फर्स्ट क्लास। और चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो आपकी लाइफ में सब कुछ फर्स्ट क्लास रहे, यही हम दिल से प्रे करते हैं। हमारे डियर लिसनर्स अभी तो हमेशा हमारा साथ देते हैं, तो चलिए अभी के लिए लेकर आए हैं आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर। जाना जी साथ दे रही हैं आप फ्लैग से, काम करते हुए भी आपने साथ नहीं छोड़ा रेडियो मस्ती का, और कहती हैं स्वीट बातें जो है वो काम करने का और हौसला बढ़ा रही है। तो बस काम करते करते गानों को एंजॉय करें, और एक प्यारा सा गाना हम चलाएंगे आपके नाम। इक्वली गोज आउट फॉर शेष्टा, जनिता, अंशनी, सिल्विया, युवी, कृषि, शिवसरन परिवार जो हमेशा साथ देते हैं फ्रॉम फ्लैग, गाना आपके नाम। छोटा वैभव अपना 4th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन की बधाइयां लेकर आए हैं पापा विजयन, मामा अंजू, भैया वंश, दादी सुनीता, साथ में है आजीमा, मामू कुनाल, मौसी मनीषा, मौसा वरुण, उनके कजिन्स टिया एंड जिया, एंड ऑस्ट्रेलिया से है चाचा विमल, चाची वर्षा, उनके कजिन्स, सभी की ओर से प्यार। निया है, वर्षा है और पुपू अनुषा एंड पुपा किरण, कृष्णि, कृषय और परनीता, सभी राम रतन, राम गुलाम, कुआरू एंड मालू फैमिलीज की ओर से प्यार एंड स्पेशल विशेष। साथ ही यहाँ पर कुमार देव चैन साथ दे रहे हैं आप, सी साइड पर भी एंजॉय कर रहे हैं फुल वॉल्यूम पर रेडियो मस्ती, ये हुई ना बात। डेडिकेटिंग गाना आपके नाम। साथ ही होगा फॉर लवली पापा श्याम देवीचंद, उनके लिए भेजा है आपने बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गुड गुड विशेज, एंड यहाँ पर वी हैव अ स्पेशल डेडिकेशन। होगा फॉर प्रवीण थॉमस एंड सागर सेम्पियर से हमारा साथ दे रहे हैं आप, सो एंजॉय दिस वन ब्यूटीफुल ट्रैक, सैयारा टाइटल ट्रैक आपके नाम। हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: FM2
1: Radio Musti.
2: L'hiver a pécosté, mais côte métrique, c'est ban prix qui peut faire frissonner. Avec Wintersale, prix crasé. Jusqu'à les 30 juin, 40% réduction, l'ON grand sélection produit. Lavabo, collas, sanitaire et robinetterie, juste pour un l'hiver plus confortable. Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: सुवेल सैयारा फिल्म का गाना समायरा, दैट्स योर फेवरेट सॉन्ग, और आप भी साथ में गुनगुना रही थी. सो वेल, यहाँ पर स्पेशल शाउट आउट आपके लिए. इक्वली गोज आउट फॉर योर मामा विजया, जो हमेशा साथ देती हैं ऑन रेडियो मस्ती. अब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कुछ और दोस्त. सो ये गाना, इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली. कहते हैं दैट प्ले लिस्ट तो है एकदम मस्त, और एंजॉय कर रहे हैं हम गानों को. बस ऐसे ही एंजॉय करते रहे आप. हमारी प्यारी सी टीना हमारा साथ दे रही हैं. आप सभी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग प्ले कर रहे हैं. आपके नाम आपके लिए भेज रहे हैं गुड विशेस. वेल, यहाँ पर ऐसे ही कुछ प्यारे गाने जो आपके मूड को बनाए रखें. यहाँ पर मिस्टर संजय हमारे साथ कनेक्टेड हैं. आप भी एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, कहते हैं दैट दिल से कनेक्शन तो बन ही जाता है. बिल्कुल कहा आपने सही, और आपसे हमारा दिल का कनेक्शन, हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन से आपका दिल का कनेक्शन, इसे ऐसे ही बनाए रखिएगा. मान यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर लवली वाइफ हेमा कटरबोन से. आप हमारा साथ दे रहे हैं. सो थैंक यू सो मच मिस्टर मान, साथ देने के लिए. और ऐसे ही आपके मैसेज

जिस डेडिकेशन आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294. साथ ही गाना होगा फॉर नाना दीवान एंड नानी सीता कमिंग फ्रॉम ओजस्वी एंड लवीश. साथ दे रहे हैं आप, सो थैंक यू सो मच. इतने प्यार से आप हमारा साथ दे रहे हैं. That's good music आपके लिए on the waves of Radio Masti. मैं हूँ परी आपके साथ शाम के 7 बजे तक. बस फटाफट आपके messages, आपके dedications on 5499-1294. आपके Saturday को बना रही हैं थोड़ा सा special with some beautiful songs. Enjoy this one. Back to 90s.

0: रेडियो मस्ते।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हल्करी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: म्यूजिक टकटकाते
3: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ फैशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो अब अपने आउटफिट को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ छोटी छोटी टिप्स लेकिन बहुत ही यूजफुल टिप्स। जैसे अगर आप एक लूज टॉप पहन रहे हैं तो आपका जो बॉटम है वो हमेशा फिटेड होना चाहिए, तब ये आपके लुक को बहुत ही एनहांस करता है। और अगर आप एक फिटेड टॉप पहन रहे हैं तो फिर वाइड लेग पैंट्स या फिर स्कर्ट्स इस पर बहुत अच्छे लगते हैं। एवरीथिंग ओवरसाइज्ड, आजकल फैशन है ओवरसाइज पहनने का, लेकिन अगर आप लूज पैंट्स, लूज टॉप्स सब कुछ साथ ओवरसाइज टीम अप करेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे हमने आपको बताया, अगर आप लूज टॉप पहन रहे हैं तो आपका बॉटम, उसे थोड़ा फिटेड रखिए। अगर आपका टॉप फिटेड है तो उसे आप वाइड लेग पैंट्स या फिर स्कर्ट्स के साथ टीम अप कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, छोटी लेकिन बहुत ही यूजफुल टिप, ट्राई करें और हमें बताएं कि ये टिप कैसी लगी।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: म्यूजिक टकटका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: So well, that was Arijit Singh, Parampara Thakur ki aawazein, a beautiful song and Pal Pal Dil Ke Paas. So aap bhi rehte hain, yani ki hamare dear listeners. Thank you ji, thank you saath dene ke liye. Aur kal ka din hai khas. Waise to each and every day it's celebration of music. Aap ke liye on Radio Masti. Aur kal ka din isi liye special hai because it's a World Music Day. Aur isi mauke par khas aap ke liye hone wala hai something very special in the studio. So bas aap saath dete rahiyega. टाइम टाइम पर आपके लिए सरप्राइजेस होते रहेंगे हमारे स्टूडियो में जो बिल्कुल आपके दिल तक पहुंचेंगे. तो दोस्तों अभी के लिए तो थोड़ी देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचार बुलेटिन की ओर, उसके बाद लौट कर आएंगे. गुड म्यूजिक कंटिन्यू होता रहेगा 24/7 आपके साथ. ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती. एंड वेल, यहाँ पर आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं ऑन 5499-1294. सो अभी के लिए जो अगला गाना है गोज आउट फॉर लीना, हमारा साथ दे रही हैं आप और कहती हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स डेडिकेटिंग गाना फॉर समवन वेरी स्पेशल. इस वक्त वो भी सुन रहे हैं रेडियो मस्ती को. सो गाना हो उनके नाम, बिल्कुल जी चलाएंगे एक प्यारा सा गाना आपके स्पेशल समवन के नाम. इक्वली गोज आउट फॉर यू. साथ ही हैप्पी सैटरडे विशेज लेकर आए हैं आप.

अखिलेश थैंक यू जी ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं गानों को एंड शुक्रिया आपने ये प्यारा सा मैसेज हम तक पहुंचाया। आराम से ड्राइव करें, डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे और ऐसी गुड गुड बातें आप शेयर करते रहें। एंड वेल कहते हैं नेक्स्ट गाना हो जाए फॉर स्वीट बेबी अंजलि एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम काव्या, उनके लिए भेजा है प्यार एंड स्पेशल विशेस। साथ ही यहाँ पर ज्योति जी कह रही हैं मैं भी तो साथ दे रही हूँ, सो गाना मेरे नाम, साथ में है आंचनी, रेखा, सुरेखा और सभी मध्य परिवार जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, लौट कर आएंगे समाचारों के बाद, गुड म्यूजिक होगा आपके लिए, कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड एंड गानों को सुनते सुनते अपने मैसेजेस डेडिकेशंस मत भूलिए, रहेगा इंतजार ऑन 5499-1294। So that's a beautiful track, Udit Narayan, Alka Yagnik ki awaazein. फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक, बिकॉज एक टाइम था जब ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और पॉपुलर क्या हुआ कि आज भी उस गाने को हम उतने ही दिल से सुनते हैं। सो एवरीवन हु इज कनेक्टेड हमारे साथ, नए हो या पुराने, सब कुछ आपको मिलने वाला है ऑन रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by McDonald's.
4: McDonald's? Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
1: Radio Musti.
5: North. South.
6: 103.5.
5: East. West.
6: 96.4.
5: Center.
6: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. The Musti.
7: शनिवार 20 जून की तारीख 6 बज रही है, समाचार सुनिए। नमस्कार, समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजट 2026-2027 में सरकार ने आर्थिक विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा। पहली जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन लागू होगी और नई प्रणाली के तहत आय संबंधी मापदंड भी लागू किए जाएंगे। महंगाई से राहत देने के लिए प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपए का प्रावधान, साथ ही सैकड़ों नए खाद्य उत्पादों को सब्सिडी योजना में शामिल किया जाएगा। बिजनेस मोशस ने बजट में घोषित कई कदमों का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि व्यापार, एआई प्रशिक्षण और विदेशी विशेषज्ञता से जुड़े कदम निजी सेक्टर की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। पेचिगाफे में 61 वर्षीय शुभावती ओनाचलम जागेसर की हत्या से इलाके में सनसनी। पुलिस हत्या के पीछे लूट की आशंका सहित विभिन्न पहलुओं की जाँच कर रही है। विदेशी स्तर पर इसराइल और हिजबुल्ला के बीच घोषित युद्ध विराम एक दिन भी नहीं टिका। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। बजट 2026-2027 के माध्यम से सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। इस बजट में एक ओर सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने, कर्ज के बोझ को कम करने और कर व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार, कैपेसिटी बिल्डिंग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई कदम भी प्रस्तावित किए गए हैं। शागोस के मुद्दे से लेकर देश के आर्थिक विकास तक, भविष्य तक भी सरकार ने विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। सुमेर अकबर अली।
8: We could have chosen the path of least resistance, but we did not.
9: Nous avons choisi la voie de la réforme la plus difficile pour reconstruire notre économie et société et assurer l'avenir de la prochaine génération. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre en ouverture de son discours du budget 2026-2027.

और कल पेश किए गए बजट 2026-2027 में पेंशन सुधार पर एक नए चरण में प्रवेश कर दिया है। जी हां, पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू की जाएगी। ये पेंशन 60 वर्ष की आयु से दी जाएगी, जबकि नई व्यवस्था में पेंशन के भुगतान के लिए आय संबंधी मापदंड भी लागू किए जाने वाले हैं। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामगी के अनुसार इस नई प्रणाली का उद्देश्य लंबे समय तक पेंशन व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। क्या ये इस नई व्यवस्था की प्राथमिकताएं ये क्या होंगी, हम कल के बुलेटिनों में आपको बताएंगे। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपये का प्रावधान किया है। 1 जुलाई 2026 से 485 नए खाद्य उत्पादों को सब्सिडी के दायरे में लाया जाएगा, जिनमें ट्यूना मछली, कैन ट्यूना, कोन बीफ, मैक्रोनी, दालें, लंचन मीट और बच्चे के लिए आहार शामिल है। ये सूची पहले से सब्सिडी प्राप्त 1930 सामानों के अतिरिक्त होगी, जबकि ग्राहकों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए 1510 सामानों की कीमतों पर नियंत्रण और 700 उत्पादों पर VAT छूट भी जारी रखी जाएगी। राज्यसभा में घोषित कई कदमों का बिजनेस मोर्शस ने स्वागत किया। संगठन का कहना है कि व्यापार को आसान बनाने, AI से जुड़ी प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देने और विदेशी कौशल और विशेषज्ञता तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने जैसे कई कदम उसकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। इन मुद्दों पर बिजनेस मोर्शस ने कल पोटली में एक प्रेस सम्मेलन दिया। हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि बजट 2026-2027 में सांसदों और कुछ बड़े पदों से जुड़ी नई घोषणाएं हुई हैं, कई कदम प्रस्तावित किए गए हैं। अब सांसदों को 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें 65 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा, जैसे दूसरे कर्मचारियों को करना पड़ता है।

बजट 2026-2027 पेश किए जाने के बाद संसद से बाहर निकलते समय कई मंत्रियों, जूनियर मिनिस्टर्स और सांसदों ने बजट की कई प्रमुख घोषणाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पेंशन व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक सेक्टर की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी के गठन की घोषणा की तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के कदम, इन प्रमुख विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में कि एक 61 वर्षीय महिला की अपने ही घर में हत्या से पिछली गफरे में सनसनी फैल गई। शुक्रवार शाम सुभावती अरुणाचलम जागीसर मृत अवस्था में पाई गई। शुरुआती जांच के अनुसार एक नकाबपोश व्यक्ति घर में घुसा और उस पर जानलेवा हमला करने के बाद फरार हो गया। पुलिस हत्या के पीछे लूट की आशंका सहित विभिन्न पहलुओं की जाँच कर रही है। अफ्रीका के भविष्य के लिए तैयार की गई एजेंडा 2063 योजना को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी है। इसी उद्देश्य से विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एपेन के हेनेसी पॉकेटल में एक कार्यशाला आयोजित की थी। इसमें सरकारी और निजी सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ साथ नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यकुशलता में एजेंडा 2023 और

0: सत्र की दूसरी 10 वर्ष का योजना के तहत मॉरिशस के लिए उपलब्ध अवसरों और संभावनाओं पर चर्चा की। हम आपको बता रहे थे कुछ ही देर पहले कि बजट 2026-2027 में सांसदों और देश के कुछ बड़े पदों से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कई कदमों का ऐलान किया था, जैसे खाद्य सामानों के दाम, महिला सशक्तिकरण और पेंशन। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: वी कुड हैव चोजन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बट वी डिड नॉट।
2: वित्त मंत्री ने 7 स्तंभों पर केंद्रित सरकारी स्ट्रेटेजी पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के प्रयोग के अंतर्गत सरकार 3 चरणों के तहत कार्य करेगी, जिनकी बदौलत मॉरिशस गूगल अमेरिका इंडिया कनेक्ट की पहल से लाभ उठा सकेगा और हमारे देश को दक्षिण अफ्रीका, भारत और सिंगापुर के साथ जोड़ने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर पाएगा। मॉरिशस AI के लिए एक सुरक्षित आधार की तरह प्रस्तुत हो पाएगा। इसके अलावा सरकार जनता के लिए निवेश करेगी। कुल 50,000 मॉरिशनों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनमें प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक होंगे, साथ में ग्रेड 9 के छात्र भी और निजी सेक्टर तथा सरकारी विभाग के ऑपरेटर भी। सरकार एक नेशनल AI लर्निंग प्लेटफॉर्म कायम करने के लिए 25 मिलियन रुपए का बजट उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा एक साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी कायम करने के लिए 13 मिलियन रुपए का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। मॉरिशस में स्टार्टअप के लिए भी अहम कदम निर्धारित। कई कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि स्टार्टअप एक्ट तैयार किया जाएगा। कुद्दो में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक हब होगा और EDB की ओर से एक एक्सेलरेटर स्कीम की लॉन्चिंग की जाएगी। एक नया अहम कदम, 10 छात्रों के लिए 5,00,000 रुपए तक का एक इनोवेशन स्कॉलरशिप दिया जाना। स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की बदौलत हमारी अर्थव्यवस्था में SME की अहम भूमिका को मजबूती दी जाएगी। एक SME बिल तैयार किया जाएगा। साथ ही हमारे आर्थिक स्थल का विस्तार किया जाएगा और इसे आधुनिक बनाया जाएगा। कदमों में कुद्दो में एक उच्च टेक्नोलॉजी वाले एक नए इकोनॉमिक जोन कायम करने की बात भी है। बंदरगाह, हवाई अड्डे और हवाई अड्डे को फोबा के साथ जोड़ने के लिए M4 वाटरवे की एक परियोजना भी है। कचरों के राष्ट्रीय संचालन के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 150 मिलियन रुपए की जरूरत होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कृषि, मवेशी पालन और बैंकिंग तथा फाइनेंस सेवा संबंधी सेक्टरों को भी मजबूती प्रदान की जाएगी। पर्यटन सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। 1 मिलियन रुपए के बजट की बदौलत पर्यटन गांव विकसित किए जा सकेंगे और सगाई तोंजीवाल होटल स्कूल को पुनः डिजाइन किया जाएगा।
0: तो बजट 2026-2027 के माध्यम से सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। इस बजट में एक ओर सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने, कर्ज के बोझ को कम करने और टैक्स व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई कदम भी प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि अभी आपने इस रिपोर्ट में रजनी बिकर से सुना। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपए का प्रावधान किया। 1 जुलाई 2026 से 485 नए खाद्य सामानों को सब्सिडी के दायरे में लाया जाएगा, जबकि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए 1,510 सामानों के दामों पर नियंत्रण और 700 सामानों पर VAT पर छूट भी जारी रहेगी। सुनिए।
3: प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्य उत्पादों की सूची को बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत 485 नए उत्पादों को शामिल किया गया है, जिसके लिए 300 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 7 आवश्यक खाद्य पदार्थ शामिल हैं: कंड ट्यूना, कोंड मटन, कोंड बीफ, मैकरोनी, काली दाल, मसूर दाल, लंचन मीट, बेबी फूड। 58 रुपए का कैंड ट्यूना 1 जुलाई से 38 रुपए में बिकेगा। उपभोक्ताओं की राय इस उपाय को लेकर बंटी हुई है।
4: Mon tacos vinou kadi bien rempli, malheureusement maintenant non. Ou gapé pour une supermarché parce que avec le coût de la vie. La journée pensée d'être content, envie manger des affaires, faire des enfants plaisir, mais malheureusement pas capable, trop cher.
5: Le gouvernement il prend une bonne initiative concernant une alimentation pour bébés. Mais je suis aussi content de mettre plus de subventions sur les couches et les enfantiles.
6: Bien positif en tant que consommateur.

0: terre, c'est tout si bon avec subside l'eau, corn, beef, thon, tout cela, pour être bon si bon misère.
1: ये नई सूची पहले से सब्सिडी प्राप्त 1910 उत्पादों से जुड़ेगी जिन पर सरकार 1.7 बिलियन रुपए खर्च कर रही है। घरेलू खर्चों पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए 1510 उत्पादों की कीमतें पहले से ही मैक्सिमम मार्कअप के तहत नियंत्रित हैं, जबकि 700 अन्य उत्पादों को वाट से छूट दी जाती है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मूलभूत सामानों का आयात करके वो रिटेलर्स तक भेजेगा। हम कम दाम वाले उत्पाद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इससे मंडी में कंपटीशन बढ़ेगा। कल ऐलान किया गया कि खाद्य सामानों का पैरेलल इंपोर्ट भी किया जाएगा।
2: Donc nous travaillons là très rapidement et moi penser ça trois items là pour être pour combattre la vie chère.
1: सरकार ने इस योजना के लिए 2 बिलियन रुपए का प्रावधान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की खरीद शक्ति को बरकरार रखना है। रिटेलर्स को नियंत्रित करने वाला एक नया कानूनी ढांचा भी कायम किया जाएगा।
3: कल पेश किए गए बजट 2026-2027 में पेंशन सुधार पर नए चरण में प्रवेश कर गया है। पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू की जाएगी। ये पेंशन 60 वर्ष की आयु से दी जाएगी, जबकि नई व्यवस्था में पेंशन के भुगतान के लिए आय संबंधी मापदंड भी लागू किए जाएंगे।
1: सांसदों के साथ अब सरकारी कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाएगा। वे नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अंशदान करेंगे। वर्तमान में 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद सांसद आयु की परवाह किए बिना पेंशन प्राप्त करने के हकदार थे। अब पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होगी, जो अवकाश की वैध आयु है। एक अन्य कदम, पहली जुलाई से कार्यरत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आय और पूर्व राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों की पेंशन पूरी तरह से कर योग्य यानी टैक्सेबल हो जाएगी। 65 साल की उम्र में सांसदों का पेंशन मॉरिशस लेबर कांग्रेस का सुझाव था। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। नियुक्त सदस्यों को आम कर्मचारियों से ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता है। प्रधानमंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कई पेंशन मिलते थे जिनमें वे अंशदान भी नहीं करते थे। अब से उन्हें ऐसा कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। पहली जुलाई से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, चाहे वर्तमान हो या पूर्व, उनका पेंशन पूर्ण रूप से कर योग्य यानी टैक्सेबल होगा।
4: Le 1er juillet, l'IPU fully taxable. Tout le monde a le même traitement. Ce n'est pas possible qu'il y ait un président de la République ou pas payer taxe. Qui nous ben si travailler, nous payer taxe.
5: Il a envoyé un signal, donc moi, je suis content qu'il écoute.
1: मैं खुश हूँ कि उन्होंने सांसदों की पेंशन को लेकर 65 साल की उम्र के मेरे सुझाव का मान रखा।
5: C'est pas juste symbolique, mais il est aligné avec ce qui est préconisé.
1: अब से एक सांसद को एक कार्यकाल के दौरान केवल एक बार ड्यूटी फ्री वाहन लेने का अधिकार है, जबकि पहले ये सुविधा हर 3 साल में दी जाती थी। हम उदाहरण दे रहे हैं, एक ही ड्यूटी फ्री मिलेगा, ये बड़ा कदम है। श्रमिक संघ के प्रतिनिधि आनिफ बिहन ने भविष्य में अन्य जरूरी कदमों की इच्छा जताई।
4: Ancien vice-président et ancien président de la République.
1: पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सरकारी गाड़ी दी जाती है 24 घंटे के लिए, एक पुलिस अफसर और ईंधन भी दी जाती है। उदाहरण दें और जनता को दिखाएं कि वे भी त्याग कर रहे हैं।
4: Alors, mon pensée c'est là qu'il vient retirer certains privilèges là. Donne l'exemple, montrer la population qui peut faire sacrifice énormément pour joindre les débuts, besoin commencer depuis là-haut.
1: नेशनल असेंबली रिटायरिंग अलाउंसेस एक्ट में सुधार लाया जाएगा ताकि राष्ट्रसभा के सदस्यों के लिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन आधारित अवकाश योजना लागू की जा सके। ये कदम नवंबर 2024 से प्रभावी होगी।
3: तो जैसे कि आपने सुना, याचना मिश्रा के साथ की बजट 2026-2027 में सांसदों और देश के कुछ बड़े पदों से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं। अब सांसदों को 2 कार्यकाल पूरी करने

0: के बाद तुरंत पेंशन नहीं मिलेगा, उन्हें 65 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा जैसे दूसरे कर्मचारियों को करना पड़ता है। संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने का एक माध्यम भी। म्यूजिक डे के अवसर पर एमबीसी के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से अलग हटकर अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कलाकार हो या संगीत प्रेमी, सभी एक बड़े कराओके कार्यक्रम में उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए। प्रतिभा साझेदारी और संगीत के जश्न को समर्पित ये विशेष कार्यक्रम आज रात 8:30 एमबीसी 2 पर प्रसारित किया जाएगा।
1: संगीत के तराने स्टूडियो में गूंज रहे हैं, स्पॉटलाइट्स जगमगा उठी हैं, टेक्नीशियन अंतिम तैयारियों में जुटे हैं और मंच पर कर्मचारी अपने गीतों का लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इस साल भी एमबीसी में उत्साह के साथ संगीत दिवस मनाया जा रहा है। एक खास कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी प्रतिभाएं दर्शाने का मौका मिल रहा है।
2: Et si on laissait la technique, logistique, montage, reportage, réalisation d'émissions, préparation ainsi que présentation d'émissions radio et télé de côté pour prendre le micro?
1: जो कर्मचारी आमतौर पर अपने दफ्तर के पीछे स्टूडियो या कंट्रोल रूम में काम करते हैं, वे एक शाम के लिए कलाकार बने हैं।
3: Souvent, on veut plus résister à un événement hein, qu'autre chose. On veut plus un chanteur de salle de bain et de couloir. Avant tout, c'est vraiment partager sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, l'amour des mots et de la musique.
4: Non, pas chanteuse professionnelle, alors là, pas du tout. C'est juste pour le fun, en fait, pour participer avec les employés et aussi, pourquoi pas, donner du bonheur et transmettre la bonne humeur aux téléspectateurs.
1: सप्ताह भर लगातार रिहर्सल्स का दौर रहा। फ्रेंच, अंग्रेजी, क्रियोल, हिंदुस्तानी गीतों के साथ हर प्रतिभागी अपनी संगीत शैली लेकर मंच पर उतरा।
5: मैं चांटेज, मैं नॉर्टिस, मैं मासिमो पार्टिसिपे, parce que c'est ça un moment que tout réunir et propager l'amour à travers la musique.
6: Nous vivons dans une île côté Natulan, donc me dire mais pourquoi pas nous essayer comme si tackle un petit peu les trois. C'est qui m'a connu bien sûr.
1: कला जुनून संगीत की शाम शनिवार रात 8:30 एमबीसी 2 पर देखना न भूलें।
0: विश्व कप 2026 में मेजबान यूएसए का विजय अभियान जारी है। घरेलू दर्शकों के जोरदार समर्थन के बीच अमेरिकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ यूएसए ने न केवल ग्रुप डी में अपनी स्थिति मजबूत की है बल्कि अंतिम 32 में पहुंचने की दिशा में भी बड़ा कदम बढ़ाया है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए ये हार मुश्किलें बढ़ाने वाली साबित हुई है। प्रतियोगिता के आगे बढ़ने के साथ अब ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन की जंग और भी दिलचस्प होती जा रही है। विश्व कप 2026 में आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है जहां कई टीमें अंतिम 32 में जगह मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स और स्वीडन के बीच होने वाला मुकाबला आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं ग्रुप ई में जर्मनी का सामना आइवरी कोस्ट से होगा जो जीत के साथ अगले दौर की ओर और एक कदम बढ़ाना चाहेगी। दिन के तीसरे मुकाबले में इक्वाडोर और कुराकाओ अपने सामने आमने सामने होंगे जहां दोनों टीमों के लिए हार की गुंजाइश बेहद कम है। ऐसे में विश्व कप के नॉकआउट चरण की दौर अब और भी रोमांचक होती जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें जो सुर्खियों में हैं उनमें इसराइल और हिजबुल्ला के बीच शुक्रवार को घोषित युद्ध विराम ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। शनिवार को दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। लेबनान ने इन हमलों को शांति प्रयासों के लिए खतरा बताया जबकि इसराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच 23 से 25 जून तक वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के बीच वार्ता का 5वां दौर प्रस्तावित है लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद युद्ध विराम का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। चलिए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करिन के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर जारी रहेगा। आज रात को देशभर में मौसम सुहाना रहेगा। देर रात और कल सुबह

के दौरान देश के दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है और धुंध भी छाई रहेगी। दिन के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी और दक्षिण पूर्व की दिशा से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में ऊंची लहरें उठेंगी, 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सहली इलाकों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम अन्य इलाकों पर 18 से 20 अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:38 पर हो गया है और सूर्योदय होगा कल सवेरे 6:44 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव को हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए। टेंपल रोड रिवियर जुरांग पॉमे 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड के कांता प्रसाद दूता की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 10:30 बजे उनकी पत्नी मिसिज माला दूता के मकान रिवियर जुरांग पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उतरी रिवियर जुरांग पॉ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM. Petit Viager, Saint-Pierre, Boisherimé, 77 साल की 77 years old की सीता देवी सीरोज की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें कमला के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनके भाई चंद्र स्वराज सीरोज के मकान पेटी वेजे सैंपिया बॉशरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंस्टांस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो रहोफ पोस्टेन AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Music, Dr. Gatta. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: So well friends, we are back. समाचारों के बाद आ गए हैं एक बार फिर कुछ प्यारे गाने आप तक पहुंचाने. मैं हूं परी आपके साथ शाम के 7 बजे तक. उसके बाद झनकार बीट्स, स्पोर्ट्स जगत की लेटेस्ट अपडेट्स हमारे स्पोर्ट्स गुरु विकास रामधनी के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे. तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए आप. और नॉट टू फॉरगेट, अगर साथ दे रहे हैं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन 5499-1294 पर.
3: पलकों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, बस तुम.

after this beautiful Sufi mashup, it's time कि एक और प्यारा सा गाना हो जाए आप सभी के नाम. शाम का टाइम हमारा साथ दे रहे हैं आप सुदेवी जी वाकवा से, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. चलिए गुड विशेज है आज छोटे वैभव को जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. इट्स हिज फोर्थ बर्थडे, सो प्यार एंड स्पेशल विशेज हमारे पूरे टीम की ओर से. रोशनी यहाँ पर अब भी खुश हो गई हैं गानों के सिलेक्शन को सुनकर. तो बस अभी के लिए ये प्यारा सा गाना उन तमाम लोगों के नाम जो दे रहे हैं साथ ऑन रेडियो मस्ती.

0: Welcome to the world of sports and music.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: वेलकम रात के 7:04 और 48 सेकंड हुए हैं. यू आर ट्यून टू RM2 मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का नंबर वन म्यूजिकल चैनल. सबको नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल. इट्स सैटरडे नाइट, 7 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं झंकार बीट्स स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक प्रोग्राम लाइव रिपोर्टिंग ऑन वॉल स्पोर्ट्स. दुनिया भर में जितने भी खेल समाचार हैं, जितने भी खेल गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, और ख़ास तौर पे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी समाचार, सभी सूचनाएं आपकी झोली में 7 to 9 एवरी सैटरडे इवनिंग, सैटरडे नाइट 7 to 9 तक अगले 2 घंटों के लिए हमारे साथ. विद मी विकास रामधनी, मैं हूँ आपके साथ और आपका स्वागत है पुनः फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स. नंबर वही है 5499-1294-5499-1294. फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल, क्रिकेट, फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप, टेनिस हो या बैडमिंटन हो, जहां पर भी जो भी हो रहा है वहां वहां की खबर आप तक हम लाएंगे और आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन 5499-1294.
2: RM2 Radio Musti
1: झंकार बीट्स.

0: झंकृत करने वाले गाने on RM2 every Saturday from 7 to 9 p.m. रेडियो मस्ती और हमारे साथ झंकार बीट्स स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक प्रोग्राम में हूँ विकास और इट्स टाइम नाउ कुछ खबरें आप तक पहुंचाने के लिए. सो मदहोश जो है अभी ये वर्ड अभी आया था, क्या कमाल का शब्द है मदहोश, यानी लॉस्ट इन लव, लव फॉर फुटबॉल. आजकल बुखार चढ़ा हुआ है फुटबॉल वर्ल्ड का. सो सारी निगाहें जो है ऑल आईज ऑन फीफा वर्ल्ड कप 2026. एक सप्ताह बाद, लगभग 10 दिन बाद, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में फुटबॉल का बुखार चढ़ गया है और ये फीवर जो है दुनिया भर में फैल चुकी है. 48 कंट्रीज, 48 देश, 12 ग्रुप्स, बेस्ट ऑफ टू फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कुल मिलाकर 24 देश, 24 कंट्रीज आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट राउंड में, प्लस बेस्ट ऑफ 8 लास्ट 32 में प्रवेश करने के लिए. सो इट्स हैपनिंग. खासतौर पे जो मेज़बान देश हैं, होस्ट कंट्रीज लाइक यूएसए, कमाल का खेल है यूएसए की ओर से. दो मैचों में, दोनों में उन्होंने जीत हासिल की है. मेक्सिको की भी जीत हुई एंड ऑफकोर्स कनाडा भी जीत पाया, भी अपना जो अभी आखिरी मैच था, दूसरा मैच था, आई थिंक बाय 6-1 अगेंस्ट कतार. सो इट्स हैपनिंग फॉर दिस होस्ट कंट्रीज. और बाकी जो देश हैं लाइक 5-time वर्ल्ड कप विनर ब्राज़ील जो है अभी तक अपना फन दिखा नहीं पाए हैं, बट धीरे धीरे, हौले हौले, ग्रेजुअली उनका फुटबॉल भी देखने का मौका मिलेगा. एंड इंग्लैंड की टीम का क्या कहना है, कमाल का फुटबॉल है. इट्स ए कंप्लीट, ए टोटल चेंज कह सकते हैं फुटबॉल स्टाइल में. एंड द थ्री लायंस आर डूइंग रियली वेल. 4-1 से शायद उनकी जीत हुई थी. एंड या हैरी केन का एक डबल रहा, कप्तान द किंग केन ने फिर से हिट किया. एंड इंग्लैंड की टीम एक हिट अभी साबित हो रही है, पर ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि हर बार ऐसा होता है, पर देखेंगे आगे आगे होता है क्या. आज दो मैच आज के लिए रखे गए हैं. आज रात 9 बजे सबसे पहले नेदरलैंड्स का मुकाबला स्वीडन से होगा, रात 9 बजे. एंड देन रात 12 बजे लाइव ऑन MBC 11 चैनल जर्मनी वर्सेस आइवोरी कोस्ट.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: धीमे धीमे कैसे चलेंगे जब पूरा विश्व पूरी दुनिया जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: थैंक यू RM2 चुनने के लिए और जुड़ने के लिए हमारे साथ. वी आर लाइव ऑन RM2 रेडियो मस्ती हर शनिवार की शाम की रात 7 से 9 के बीच. मैं हूं विकास और हूं आपके साथ रात के 9 तक. सो इट्स फीफा वर्ल्ड कप 2026, 48 कंट्रीज एंड अफ्रीका के जो देश हैं कमाल का खेल प्रदर्शन कर रहे हैं. दे आर प्लेइंग रियल फुटबॉल अनलाइक अफ्रीका, क्योंकि विगत में इन द पास्ट अफ्रीकन फुटबॉल को एक तरह से देखा जाता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है. मोरक्को ने साबित कर दिया कि रियली ए थ्रेट, एक मेनेस है सभी टीमों के लिए. हर हालत में वे तो मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचा था लास्ट वर्ल्ड कप कैटा में. सो इस बार भी अपने 2 मैच मोरक्को एक मैच जीत चुका है. कल उसकी जीत हुई थी 1-0 से मोरक्को वर्सेस स्कॉटलैंड. 1-0 फॉर मोरक्को. सैबारी अगेन ऑन टारगेट, जिसने ब्राजील के खिलाफ भी एक गोल स्कोर किया था शुरुआत में ही. सो ब्राजील ने अपना पहला मैच ड्रॉ किया. सेकंड मैच में कल उसकी जीत हुई 3-0 से अगेंस्ट हैती.

0: Mateus Cunha kayak double, Vinicius Junior also on target. So Morocco doing really well. और बाकी जो African countries हैं, Ivory Coast की भी जीत हुई कल 1-0 से. So जो जितने भी अभी खेल हम देख पाए हैं, it's really great football. So कल के जो मैच हैं, बता दे कि कल यदि कल शाम मॉरिशस में बजट प्रस्तुति थी तो वर्ल्ड कप में गोलों का न कोई बजट था और न कोई बचत थी. गोल तड़ातर बरस रहे थे, बरसते गए. और आज सुबह ही ब्राजील ने हेती को 3-0 से हराया. फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया कल. यूएसए ने दो मैचों में दो दो जीतें हासिल की. दे आर क्वालिफाइड. यूएसए प्लेइंग रियली वेल. ऑस्ट्रेलिया वॉज नो मैच यूएसए के सामने, क्योंकि यूएस जो टीम है दे आर प्लेइंग गुड एंड ग्रेट फुटबॉल. सो यूएसए 2 ऑस्ट्रेलिया 0 एंड ब्राजील की जीत हुई 3-0 से. बता दें कि आज रात 9 बजे नेदरलैंड्स का मुकाबला स्वीडन से होगा. नेदरलैंड ने अपना पहला मैच ड्रॉ किया था 2-2 अगेंस्ट जापान. और आज रात 12 बजे लाइव एमबीसी चैनल 11 पर जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट. 5499-1294-549-9912-94 पे योर टेक्स्ट मैसेजेस.
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्ती.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: साथ बजकर 33 मिनट और 35 सेकंड यू अच्यून टू आर एम टू रेडियो मस्ती। आज शनिवार है और शनिवार की रात 7 से 9 के बीच योर न्यू रेगुलर रेंडेवू ऑन रेडियो मस्ती विद मी विकास रामधनी और आप सुनेंगे झंगार बीट्स लाइव रिपोर्टिंग वर्ल्ड।

न्यूज स्पोर्ट्स जगत को लेकर और आजकल तो फीफा वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है। बता दें कि आज सुबह ही टर्की की हार हुई, पराग्वे ने उसे 1-0 से परास्त किया, स्टनिंग गोल बाय गलाजा और पराग्वे ये मैच जीत गया। और इस मैच में बता दें कि आपको एक खिलाड़ी को, आई थिंक इट्स एल्मिरन जो न्यूकासल यूनाइटेड के साथ खेलता है, उसको रेड कार्ड भी मिला क्योंकि ही कवर्ड हिज फेस और कुछ कहा उसने अपने ओपोनेंट को और रेफरी को जब ये सूचना दी गई देन रेफरी गेव हिम ए रेड कार्ड क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। इट्स ए रूल इज ए रूल और अच्छा भी हुआ। ये वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हो रहा है, शायद अभी मौका मिले तो आपसे हम बताएंगे कि क्या क्या नयापन आया है वर्ल्ड फुटबॉल में। सो इट्स टर्की 0 पराग्वे 1 और यदि पराग्वे ने अपना पराग्वे का एक अभी मैच है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, इफ पराग्वे विंस द मैच इफ द बीट ऑस्ट्रेलिया देन पराग्वे क्वालिफाइड हो सकता है, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बड़ी अच्छी टीम है। हालांकि उसने टर्की को 2-0 से हराया एंड दे लॉस्ट अगेंस्ट यूएसए। ऑस्ट्रेलिया और पराग्वे के बीच जो भी टीम जीतेगी वो आगे बढ़ पाएगी। 5499-1294-549-1294 पर आने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको भी जुड़ने के लिए और चुनने के लिए। ऑन 5499-1294 नाम आपने नहीं बताया, आपको भी गुड इवनिंग। ऋषि है फ्रॉम बॉम्बो, विशेज ए सैटरडे म्यूजिकल फीवर टू ऑल आवर एमटीयू लिसनर्स, फुटबॉल लवर्स एंड योर मूडी गर्लफ्रेंड कम ऑन जर्मनी। थैंक यू जुड़ने के लिए ऋषि। जर्मनी आज रात खेलेगा अगेंस्ट आइवोरी कोस्ट रात 12 बजे लाइव एमबीसी 3 पर। Say whoa! It's on NBC 11, Germany versus Ivory Coast, live आज रात 12 बजे।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jungar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: तड़प तड़प कर टर्की बाहर हो गई. टर्की की टीम डिस्पाइट बीइंग डोमिनेंट दोनों मैचों में, फिर भी दो मैचों में टू लॉसेस एंड दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. एक आखिरी मैच बस सम्मान के लिए खेलना है. सो इन एंड आउट वर्ल्ड कप 2026 कमाल का वर्ल्ड कप साबित हो रहा है. तीन देशों में आयोजित किया जा रहा है, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको. ये सभी टीमें जो हैं अच्छा फुटबॉल खेल रही हैं और होम मैदान पर खेलना एक एडवांटेज भी है. So, but African football is back. England ki team bhi achha khel rahi hai. What about France? Equipe de France first half mein holle holle khel rahi thi, lekin second half mein Kylian Mbappe jaag utha aur Mbappe ne, I think he scored two goals. 3-1 se Equipe de France ki jeet hui Senegal ke virudh. And jab Mbappe ki baat ho rahi hai, to Qatar 2022 mein jo final khela gaya tha France and Argentina ke beech, wahan par कौन भूल सकता है उसके जो तीन गोल उसने स्कोर किए थे.

and that was really fantastic. हालांकि पेनाल्टी शूटआउट सत्र में अर्जेंटीना की जीत हुई थी एंड मेसी और साथी जीत गए थे कतर 2022, but now it's World Cup 2026 और मेसी अगेन, ही इज वेरी मेसी इन टर्म्स ऑफ गोल, बहुत सारे गोल वो स्कोर कर रहे हैं. ही इज द ओनली वन एट द एज ऑफ 38 या 39

0: He's the GOAT, the greatest of all time, मानना पड़ेगा. Messi at the age of 39, उसने 3 गोल स्कोर किए फिलहाल वर्तमान के लिए. He's the only player who has scored a hat-trick. 2 गोल तो स्कोर किए हैं एम्बापे ने और हालन ने भी, और कुछ और खिलाड़ियों ने 2-2 गोल स्कोर किए, लेकिन 3 गोल पहले मैच में. एंड ही हैज इक्वल्ड द रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल्स. इन सब के बारे में सुनते रहिए ऑन 5499-1294-5499-1294 पे. स्टे ट्यून्ड. और बता दें कि क्रिकेट में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, भारत की फिर जीत हुई आज 9 विकेट से. इन सब पर बात करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड कप, वी हैव इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 इज back.
1: Jhankar Beats RM2 Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix.

0: वादा है कि इरादा सच्चा है और पक्का भी है. लियोनेल मेसी इज द न्यू वर्ल्ड कप ऑल टाइम टॉप स्कोरर विद 16 गोल्स. मिरोस्लाव क्लोजे के साथ वो अब टॉप पोजीशन पे आ गया है.
1: RM2 Radio Musti
2: Hit Music Only.
0: You are tuned to Radio Musti. मैं विकास और रात नौ तक
3: की तरह हम भी तोड़े हैं गए
0: हम साथ साथ हैं.

0: झंकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: तो बात कर रहे थे लियोनेल मेसी की, जिसने एक हैट्रिक स्कोर कर अब वो वर्ल्ड कप ऑल टाइम टॉप स्कोर की लिस्ट में आ गया है टॉप पोजीशन पे विद 16 गोल्स। मिरोस्लाव क्लोजे के पास अब तक ये रिकॉर्ड था, उसने भी 16 गोल स्कोर किए हैं। वी टॉकिंग अबाउट फाइनल यानी कि वर्ल्ड कप में ही, नॉट अबाउट प्ले ऑफ या फिर जो क्वालिफाइंग राउंड है, नहीं, ये फाइनल की बात हम कर रहे हैं। सो मेसी के पास है 16 गोल, क्लोजे के पास भी 16 गोल एंड रोनाल्डो विद 15 गोल्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40-41 साल का हो गया है, उसने उसका पहला मैच उतना अच्छा नहीं था, बट एक टॉप खिलाड़ी टॉप परफॉर्मेंस ज़रूर देगा, आज नहीं तो कल। सो वी आर वेटिंग फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। उसके पास है 15 गोल, गेरड म्यूलर 14 गोल से, किलियान एम्बापे 14 गोलों के साथ वो तीसरे पोजीशन पर, चौथे पोजीशन पर आ रहे हैं। सो 14 फॉर एम्बापे, 16 फॉर मेसी, मेसी और क्लोजे 16, यानी कि किलियान एम्बापे इज़ वेरी क्लोज, ओनली 2 गोल डिफरेंस, और एम्बापे के सामने बहुत सारे और वर्ल्ड कप पड़े हुए हैं, कम से कम 2 और वर्ल्ड कप वो खेल सकता है या 3 वर्ल्ड कप भी। सो एम्बापे ये पड़ाव पार कर सकता है। सो अभी के लिए मेसी को हार्दिक बधाई विद ए हैट्रिक। बात कर रहे थे और क्रिकेट की भी, जस्ट वन न्यूज, इंडिया बीट अफगानिस्तान बाय 9 विकेट्स। आज ये मैच खेला गया, सो जयसवाल ने 110 रन बनाए इस वनडे मैच में। पहले वनडे में भी इंडिया की जीत हुई थी, पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया की जीत हुई, एंड सेकंड वनडे में बाय 9 विकेट जयसवाल के रहे 110 रन नॉट आउट। रोहित शर्मा 79 और श्रेयस अय्यर ने 20 रन बनाए। सो इट्स ओवर दिस टू बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। सो वर्ल्ड कप इज ऑन, बात करेंगे ऑन 5499-1294-549-9912-4 पे टेक्स्ट करते रहिए।
0: झंकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: झंकार बीट्स।

0: कुछ ज्यादा ही इंग्लिश फुटबॉल और फीफा वर्ल्ड कप 2026 से
1: Ladies and gentlemen, you are listening to
2: Jhumka Beats. RM2, Radio Musti.
0: टाइम जोन खतरनाक है यूएसए मेक्सिको और कनाडा को लेकर फिर भी जितना हो सके उतने सभी मैच हम सब देख पा रहे हैं मॉरिशियन फुटबॉल प्रेमी जो है हैट्स ऑफ टू यू कुछ मैच रात 12 बजे आज ही एक मैच खेला जाएगा बिटवीन जर्मनी एंड आइवरी कोस्ट ये मैच आज रात 12 बजे ग्रुप ई में लाइव दिखाया जाएगा एमबीसी 11 पर इससे पहले रात 9 बजे आज ही नेदरलैंड्स का मुकाबला स्वीडन से यानी कि अभी से लगभग 50 मिनट बाद ये मैच शुरू होगा ग्रुप एफ में और बता दें कि कल संडे की जो सुबह है सुबह भी आपको बता दें कि संडे को आप संडेज और फंडेज इसलिए जल्दी उठकर आप 4 बजे या कल सुबह 4 बजे इक्वाडो वर्सेस क्यूरासाओ ये मैच है कल सुबह 4 बजे ही शुरू होगा फिर सुबह कल सुबह 8 बजे या संडे 8 AM चुनीजा वर्सेस जापान ये मैच ग्रुप एफ में खेला जाएगा फिर कल ही रात 8 बजे कल ग्रुप एच का एक मैच होगा कल रात 8 बजे स्पेन वर्सेस सऊदी अरब एंड कल रात 11 बजे ग्रुप जी का एक महामुकाबला बिटवीन बेल्जियम एंड ईरान सो इट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 कमाल के मैच कमाल का खेल और स्कोर पे स्कोर गोल पे गोल And English Premier League में भी it's happening. Premier League new season के जो fixtures है वे आम किए गए public किए गए कल बात करेंगे So we have the likes of Arsenal, the champion team. पहला मैच खेलेगी 22 August की शाम 22nd August को Premier League शुरू हो रही है So we have Arsenal playing against Coventry City, जो एक newly promoted team है. And what about Manchester United, Manchester City and Liverpool, Chelsea, इन सब पर बात करेंगे. सुनते रहिए and text भेजते रहिए on 5499-1294.
1: RM2, Radio Musti.

0: झंकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: झंकार बीट्स।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jungar Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: मस्ती काफ़ी हुई. अब कुछ खबरें भी स्पोर्ट जगत से एंड खासतौर पे वर्ल्ड कप 2026 से. लेकिन बता रहे थे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का नया सीज़न शुरू होने वाला है अगले 22 अगस्त से 22 अगस्त से. कल रात ही ये फिक्स्चर्स पब्लिक किए गए, सामने आए. एंड वी हैव गॉट सम ग्रेट डेट्स, ग्रेट फुटबॉल मैचेस. सेव द डेट एंड द टाइम, खासतौर पर लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड जो सबको आकर्षित करता है. सो पहला मैच जो है शनिवार 22 अगस्त को 22 अगस्त की शाम ये पहला मैच, बल्कि उससे पहले एक दिन पहले 21 अगस्त को शुक्रवार है, फ्राइडे नाइट विल बी हैविंग आर्सेनल वर्सेस न्यूली प्रमोटेड टीम कोवेंट्री सिटी. ये होगा पहला मैच इस सीजन का फ्राइडे नाइट 21 अगस्त. फिर शनिवार की रात, शनिवार 22 अगस्त की शाम हल सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जबकि उसी शाम 22 अगस्त की शाम मैनचेस्टर सिटी खेलेगी बोर्नमुथ के विरुद्ध. एंड दिस टाइम बिना पेप गार्डियोला के आफ्टर 10 ईयर्स, मैन सिटी वर्सेस बोर्नमुथ. जबकि अंजोनी इराउला का लिवरपूल, नए कोच इराउला का लिवरपूल रविवार 23 अगस्त की रात एवे जाएगा न्यूकासल यूनाइटेड के सेंट जेम्सेस पार्क में. सो इट्स गोइंग टू बी न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल संडे की शाम 23 अगस्त की शाम. फिर बता दें कि अक्टूबर का महीना जो है वो लिवरपूल के लिए बड़ा ही निर्णायक, डिसाइसिव और ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, बिकॉज दे हैव सम ग्रेट मैचेस. 10 अक्टूबर को इज गोइंग टू बी लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. फिर 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल. किंतु इंग्लिश प्रीमियर लीग का सबसे धुआंधार, सबसे खूंखार, सबसे धमाकेदार मुकाबला, यू ऑल नो द आर्क राइवल, शनिवार 21 नवंबर को खेला जाएगा, यानी लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. सेव द डेट 21 नवंबर, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसका रिटर्न लेग ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेला जाएगा शनिवार 23 जनवरी की शाम 6 बजे. और सीजन समाप्त होगा संडे 30 मई 2027.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: राइट, नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन मैच शुरू होगा रात 9 बजे, यानी कि अभी से लेकर आधे घंटे बाद एग्जैक्टली इट्स 8:30 PM ऑन रेडियो मस्ती और रात 9 बजे ये मैच शुरू होगा नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन और लाइनअप तैयार हो गई है. वी हैव एन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड टीम नेदरलैंड्स के लिए, एक्सेप्ट जो है रोनाल्ड कोमान ने एक चेंज, मेजर चेंज किया है. समरविल इज नॉट इन इन द फर्स्ट लाइन अप, सो क्रिसेंशियो समरविल ने वो गोल स्कोर किया था अगेंस्ट जापान, लेकिन अभी के लिए वो अभी बेंच पर है. एंड वी हैव द फॉलोइंग प्लेयर्स, वेबरुगन गोल कीपिंग करेगा, डम्फ्रीज, वन हैक जो टोटनहम के लिए साइन कर चुका है, वन डाइक, वन डी वैन, दे योंग, ग्रेवनबर्ग, रेंजर्स, Somerville, Malen and Gakpo. Phir Crescencio Somerville scored a superb goal in that game against Japan, but he makes way for Sunderland's Brian Brobbey. और जहाँ तक स्वीडन का सवाल है, यहाँ पर भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, with the likes of Alexander Isak and Victor Gyökeres, यानी कि एक धमाकेदार मैच होगा. Full attack, full metal, like यानी कि दोनों ओर से लिवरपूल के खिलाड़ी हैं. Gyökeres आर्सेनल की, आर्सेनल में ही है ना, हाँ, Isak from Liverpool, and उधर नेदरलैंड्स में you have Gravenberg and Virgil van Dijk. So स्वीडन की ओर से Nofeld, Lagerbäcke, Hien, Lindelof, Karlström, Brent Hodgson, Nygren, Ayari ने दो गोल स्कोर किए थे और अपनी यारी दिखाई, Gudmundsen, Gyökeres एंड Isak. Ayari के बारे में बता दें कि उसके माता पिता जो हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं फ्रॉम मोरक्को एंड आई थिंक चुनिशिया, लेकिन वो खेलता है स्वीडन के लिए.
2: RM2 Radio Musti
1: Junkyard Beats.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: Yes, Jhankar Beats every Saturday night, evening, रात 7 से 9 के बीच हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात on 5499-1294-5499-1294 पे. You can always text me. और World Cup को लेकर बुखार चढ़ गया है and अभी से लेकर लगभग 20 मिनट बाद Netherlands versus Sweden मैच शुरू होने वाला है. बिल्डअप है और लाइनअप तैयार हो गई है. वी हैव ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स मैदान पे उतर चुके हैं और आज ये जो मैच है स्वीडन में भी ग्रेट अटैकर्स और नेदरलैंड्स भी इज बीइंग टिप्ड एज द टीम टू प्रोबेबली विन द वर्ल्ड कप. शायद इस बार इज द राइट टाइम फॉर नेदरलैंड्स. कई बार कम से कम 3 बार वे फाइनल में पहुँच कर जीत नहीं पाए हैं, सो प्रोबेबली दिस टाइम. लेकिन अभी जो है जो जो टीमें वहाँ पर है एक से बढ़कर एक है. इंग्लैंड की टीम जो है वे कब खेलेंगे बता दे आपको कि इंग्लैंड जो है अभी अगले मंगलवार 23rd June की रात 12 बजे यस इंग्लैंड वर्सेस गाना ट्यूसडे मिडनाइट एग्जैक्टली ये मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस गाना. और हैरी केन इज ऑन फायर, 2 गोल स्कोर कर चुका है. एंड बुकायो साका बताया जा रहा है कि वो घायल है लेकिन शायद इन 2 दिनों में वो ठीक भी हो जाए. और घायलों की बात हुई तो बता दें कि अलेक्जेंडर इसाक को भी घायल बताया जा रहा था लेकिन आज वो खेलने वाला है. एंड मुनोज भी खबरों के मुताबिक वो घायल है. और मुनोज की बात हुई तो मुनोज कौन सा मुनोज है, विक्टर मुनोज जिसे लिवरपूल ने साइन कर लिया है. सो साइनिंग की बात हुई, ट्रांसफर की बात हुई तो बता दें कि द रेड्स एक जबरदस्त डबल ट्रांसफर पूरा करने की कगार पे हैं. द वर्ज ऑफ साइनिंग 2 ग्रेट प्लेयर्स ओसासुना के 20

32-year-old Spanish winger Victor Munez को लगभग 40 मिलियन पाउंड में साइन कर चुका है एंड प्रोबेबली इस मैच के बाद इंग्लैंड के इस मैच के बाद मंगलवार को एंड वेंसडे नेक्स्ट मेडिकल पूरा करके वो लिवरपूल का हो जाएगा. ओनली 22-year-old विक्टर मुनेज एक विंगर है और अब आरबी लाइप्ज़िग के इन डिमांड 19-year-old आइवरी कोस्ट विंगर यान जोमांडे को भी साइन करने के बहुत ही करीब है लिवरपूल. बट

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: Last for the road. रात के 9 बजे है और नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन मैच शुरू होने वाला है. सो एंजॉय दिस मैच. और रात के 12 बजे लाइव ऑन MBC 11 एक और मैच होगा बिटवीन जर्मनी एंड आइवरी कोस्ट लाइव MBC टीवी पर. कल सुबह कुछ और मैच रखे गए हैं. यदि आप अर्ली राइजेस हैं, अर्ली बर्ड हैं, तो बता दें कि आपको कल जो है ये मैच आप देख पाएंगे कल सुबह के लिए. ये संडे 4 बजे तड़के 4 बजे इक्वाडोर वर्सेस क्यूरासाओ. देन सुबह 8 बजे चुनिजा का मुकाबला जापान से होगा. कल रात 8 बजे इट्स गोइंग टू बी स्पेन वर्सेस सऊदी अरेबिया. और कल रात 11 बजे बेल्जियम का मुकाबला ईरान से. लेकिन अभी के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज अभी से लेकर 5 मिनट बाद इट्स गोइंग टू बी नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन ग्रुप एफ का ये मैच. और रात 12 बजे जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट. इतना सब कुछ आपके लिए वर्ल्ड कप के न्यूज़. कल सुबह

0: आपसे हम फिर मिलेंगे विद लॉट्स ऑफ ग्रेट न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज कल सुबह 7:30 यहीं पर इसी चैनल पर आपके साथ फिर मिलेंगे और हर शनिवार रविवार की सुबह हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात एंड एवरी सैटरडे इवनिंग 7 to 9 विद मी विकास रामधनी आपको कहेंगे गुड बाय फिर मिलेंगे शुभ रात्रि सबाल खैर मिलते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मस्ती और MTU 24 hours a day.
1: Jhankar Beats
2: RM2 Radio Musti
1: Jhankar Beats.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: शीशे का समंदर, पानी की दीवार।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: राहुल, तुम नहीं समझोगे। लड़की बड़ी अनजानी
1: है। रेडियो मस्ती ऑल द वे।
2: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते